सुप्रभात। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 800 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 20 अगस्त सन 2026। इस समय सुबह के 5:58.48 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। हिंदी में समाचार अब हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज सिंगापुर में होगा। सम्मेलन के इस चौथे संस्करण में भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। इस बीच विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल सिंगापुर पहुंचने पर सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 13,041

0: 40 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोनों नेता मेक इन इंडिया ढांचे के अंतर्गत समुद्री रक्षा सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने तथा रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आर्मेनिया की अपनी दो दिन की यात्रा संपन्न कर ली है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बातचीत में रक्षा और सैन्य तकनीकी सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। दिल्ली में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के अंतर्गत आवेदन जमा करने की समय सीमा 24 अगस्त तक बढ़ा दी है। प्रारूप मतदाता सूची 31 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। आपत्तियों के समाधान की प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी और 4 नवंबर को अंतिम मतदान सूची प्रकाशित की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम के 7वें चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। 18 से 30 वर्ष के युवा, जिनमें उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी, NSS वॉलंटियर और युवा पेशेवर शामिल हैं, युवा संगम के आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। राजस्व आसूचना निदेशालय ने लखनऊ में हाथी दांत की कलाकृतियों के गैर कानूनी व्यापार में शामिल एक वन्यजीव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। छापेमारी में जब्त 54 नकाशीदार चीजें, जिसमें बैल, हाथी जैसे जानवरों की मूर्तियां शामिल हैं। गिरफ्तार 4 लोगों को आगे की जांच के लिए उत्तर प्रदेश वन विभाग को सौंप दिया गया है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में होगा। इसमें सत्ताधारी दल के सांसद, BNP नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। इंडिया डे फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू हो रहा है। 4 दिन चलने वाले इस महोत्सव में भारत और रूस के लोगों को आपसी संस्कृति और परंपराओं को देखने का अवसर मिलेगा। संस्कृतियों की एकता, लोगों की मित्रता थीम पर आयोजित ये फेस्टिवल मॉस्को की गोस्तनी द्वोर में आयोजित किया जाएगा। और अब खेल खबरें। BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला चीन के खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जापान की जोड़ी से होगा। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो चीन की जोड़ी से खेलेंगी। उधर नीदरलैंड्स के अम्स्टरडेम में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया है। इसके अलावा श्रीलंका के गोल में भारत ने 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को भी 165 रन से मात दी है। भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में देर रात बारिश हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 800 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए विचार मंथन।

श्रोताओं प्रस्तुत है वंदना, भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। हम इस देश कान के साथ दे सलामी तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक तुझ में जान है।

मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये वो पूजा है जिसकी खोज ईश्वर खुद कर लेते हैं।

जीते को संग्राम है, हारे को हरिनाम, जो जीता सो हार गया, हरि को मिल गए राम।

0: पंडित भीमसेन जोशी के स्वर में अभी आपने यह भक्ति रचना सुनी। आज आपने इस कार्यक्रम में सुने ऋचा वाजपेयी, अनुराधा पोडवाल और किशोरी अमोनकर के गाई कुछ भक्ति रचनाएं। इन्हीं भक्ति रचनाओं के संग आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है चिंतन, आलेख डॉक्टर प्रोफेसर शरद नारायण खरे का है, वाचक स्वर हैं माधवी येंडे के।
1: स्वस्थ तन और स्वस्थ मस्तिष्क के लिए संतुलन का होना अनिवार्य है। वैसे संतुलन तो अखिल विश्व ही नहीं अपितु समस्त ब्रह्मांड के लिए भी आवश्यक है। किसी भी ग्रह का लेश मात्र भी संतुलन बिगड़ जाए

0: तो प्रलय हो जाए। इसी प्रकार यदि मनुष्य के मस्तिष्क का संतुलन सही ना रहे तो उसका कुप्रभाव पूरे शरीर और स्वास्थ्य पर पड़ता है। सामान्य रूप से देखा गया है कि जीवन की आपाधापी और तेज दिनचर्या में मन मस्तिष्क का संतुलन बनाए रखना स्वयं में एक गुण है। महानगरों की भागम भाग में वो व्यक्ति सौभाग्यशाली ही होगा जो उच्च रक्तचाप, मस्तिष्क तनाव, हृदय रोग, गुर्दे और जिगर की बीमारियों से मुक्त हो। दूषित आबोहवा से बीमारियां उठ खड़ी होती हैं। इन विकट परिस्थितियों के बीच आपको चाहिए कि आप अपना मस्तिष्क स्वस्थ रखने की हर संभव कोशिश करें और उसे संतुलित रखें। प्रायः जरा जरा सी उलझनों के कारण लोग झुंझला उठते हैं, मानो वो जरा सी उलझन ही उस समय उनके लिए हिमालय से अधिक महान और प्रशांत सागर से अधिक गंभीर हो जाती है। यथार्थ तो ये है कि मुसीबत अथवा संकट के समय ही असली मनुष्य की पहचान होती है। जो मनुष्य परेशानी और उलझनों के बावजूद अपने मन और मस्तिष्क को स्थिर, स्वस्थ और संतुलित बनाए रखते हैं, वे ही अधिकाधिक लाभ में रहते हैं। अच्छे पुरुष की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वो प्रत्येक परिस्थिति में समान रहता है। इससे उसकी सहन शक्ति का सही अनुमान लगता है। वस्तुतः सहन शक्ति से मनुष्य में आत्मसंयम की मात्रा बढ़ती है। आत्मसंयम से मनुष्य बड़े बड़े पराक्रम करने का साहस जुटा लेता है और आत्मविश्वास के कारण ही वो बड़ी सफलता प्राप्त करता है। परंतु इन सभी स्थितियों में मनुष्य के लिए अपना संतुलन बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण शर्त है। जो व्यक्ति ठिठुरती ठंड, झुलसती गर्मी, तेज तूफान या अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों में अपना संतुलन बनाए रखता है और मन को स्थिर बनाए रखने में सफल होता है, वही महान बन पाता है और उसी की महानता के समक्ष लोग नतमस्तक होते हैं। जिनका मन मस्तिष्क अडिग रहता है, वे ही विश्व में बड़े बड़े साहसपूर्ण कार्य संपन्न कर पाते हैं, अनोखे अन्वेषण कर पाते हैं और विशिष्ट उपलब्धियों को हासिल करने वाले विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति बन पाते हैं। यथार्थ तो ये है कि बुद्धिमान और महान व्यक्ति हालातों के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। अतीत की मुर्दाखाल से चिपके रहना उन्हें नहीं सुहाता। सुख दुख, कष्ट आनंद, सफलता असफलता, मिलन विरह, अमीरी गरीबी, सभी परिस्थितियों में जो संतुलन बनाए रखता है वही यश प्राप्ति का अधिकारी होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आलेख प्रोफेसर शरद नारायण खरे का था, वाचक स्वर थे माधवी येंडे के। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान। गायक स्वर महेंद्र कपूर और कविता कृष्णमूर्ति के हैं।

अपनी बहन शूर्पनखा के कटे नाक कान और अपमान का बदला लेने के लिए खरदूषण तथा राक्षसों की सेना श्रीराम लक्ष्मण का वध करने आ पहुंची है। पल भर में हर तरह के आसुरी शस्त्रास्त्र दोनों किशोर तपस्वियों पर बरसने लगते हैं। श्रीराम इन अस्त्रों को तिल के कोमल पौधों की तरह

टुकड़ों में काट देते हैं। जब राक्षसों के वाण सर्पों की भांति फुफकारते हुए आने लगे तो श्रीराम को क्रोध हो आया और उन्होंने अपने तीखे वाणों का प्रयोग किया। आसुरी सेना प्राण बचाने को भागने लगी, किंतु खरदूषण और उनके तीसरे भाई त्रिशिरा की चेतावनी ने उसके पांव बांध दिए। जो कोई भागेगा उसका हम सिर काट देंगे। फिर तो सारा भूखंड राक्षसों के कटे सिर, देह, हाथ पैर तथा रक्त से पट गया, किंतु कटे सिर तथा अन्य अंग कटते और फिर जुड़ जाते। मायावी राक्षसी सेना का संहार प्रभु के मायावी रूप से ही हो सकता था और वही हुआ। खरदूषण समेत राक्षस सेना का विध्वंस देख शूर्पणखा रावण के पास उसे भड़काने पहुंची।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, गायक स्वर महेंद्र कपूर और कविता कृष्णमूर्ति के थे। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। सुबह के 6:45 हुए हैं। लीजिए सुनिए कृषि सामग्री, सोयाबीन फसलों में कीट नियंत्रण, इस विषय पर आइए सुनते हैं हमारी आज की कृषि सामग्री।
1: जिन किसान बहनों भाइयों ने सोयाबीन की फसल ली है, यदि उनकी फसल पे कीट व्याधियां आ रही हैं तो हम कुछ जानकारियां दे रहे हैं, ध्यान से सुने। इसमें तंबाकू की इल्ली, फल्ली छेदक, तना छेदक मक्खी, सफ़ेद मक्खी, गर्डल बीटल और सबसे जो महत्वपूर्ण कीट है जो नुकसान पहुंचाता है वो स्टेम फ्लाई, ये आपको दिख सकता है। तो हम एक एक करके बताते हैं आपको। तंबाकू की इल्ली पहले लेते हैं। यदि ये आपको दिखती है तो इसके नियंत्रण के लिए क्लोरांट्रा नीलीप्रोल 18.5% SC 150 ml प्रति हेक्टेयर या इंडोक्सा कार्ब 15.8% 333 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, या फिर एक दवा और है

स्पाइनोसेड ये 45% की 125 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपयोग करें। इसी प्रकार यदि फल्ली छेदक आपको दिखता है, इसमें भी क्लोरांट्रा निलीप्रोल 18.5% SC 150 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर या

0: मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपयोग करें। सफेद मक्खी ये बहुत ही गंभीर रोग फैलाती है, तो इसके नियंत्रण के लिए थायोमेथोक्साम 30%, 10 किलो प्रति हेक्टेयर या फिर थायोमेथोक्साम 70 WS 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बोनी के पहले उपचारित अवश्य करें। गर्डल बीटल आप सभी जानते हैं, इसके लिए भी दवा के रूप में आपको हम बता रहे हैं क्लोरांट्रा निलीप्रोल 18.5%, 150 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, इंडोक्सा कार्ब 14.5%, 300 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, या इथोफेन प्रॉक्स 10 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें। यदि आपको इसमें जैसिड, एफिड या माइट यानी कि फुदका दिखे, माहो दिखे या फिर मकड़ियां दिखे, तो इथियान दवा 50 EC की दवा आती है, 1.5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं, या फिर हमने जो पहले बताई है दवा थायोमेथोक्साम, ये 25 WG 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर, या फिर इथोफेन प्रॉक्स 10 EC की दवा 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे जैविक कीटनाशकों की, क्योंकि रासायनिक कीटनाशक आप तभी उपयोग करें जबकि बहुत अधिक मात्रा में कीटों का आक्रमण हो और वो जैविक कीटनाशकों के प्रयोग से रुक ना रहा हो। तो जैविक कीटनाशकों में बेवेरिया बेसियाना 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें, इससे पत्ती भक्षक जो इल्लियां होती हैं इस पर नियंत्रण स्वतः ही हो जाता है। फिर HANPV या SINPV इसकी 250 LE प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करने से भी जो पत्ती भक्षक कीट है इनका नियंत्रण हो जाता है। इसके साथ साथ फेरोमोन ट्रैप्स लगाएं जिससे कि वयस्क कीट आकर्षित होकर ट्रैप में गिर जाते हैं। व्यापक स्पेक्ट्रम की कीटनाशकों के न्यूनतम उपयोग के माध्यम से जैविक नियंत्रण जीवों की अधिकतम क्षमता का उपयोग करने के लिए मकड़ियां, लेडीबग्स, टेचिनिड मक्खियों, ड्रैगनफ्लाई, डेम्सेफ्लाई, क्राइसोपरला और घास की टिड्डों का संरक्षण करें। ये क्योंकि सोयाबीन पे आने वाले कीटों को खाते हैं, इसलिए इनको यदि संरक्षित करेंगे तो ये स्वयं ही कीटों को खाकर नष्ट करेंगे। इसके अलावा एस लिटूरा के विरुद्ध टेलिनोमस रेमस को 50,000 प्रति हेक्टेयर की दर से छोड़ दें, ये भी कीटों का नाश कर देता है। सेमीलूपर कॉम्प्लेक्स, गैसोनिया जेमा, ड्राई क्राइसिया और पत्ती खाने वाले कीट के प्रबंधन के लिए बेसिलस थुरिनजिएंसिस वेर सीरोटाइप H39 स्ट्रेन Z52 इसका 0.75 से लेके 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। शुरुआती अवस्था में लार्वा और चूसने वाले कीटों के प्रबंधन के लिए NSKE का 5% घोल का छिड़काव करने से भी कीटों का प्रभाव कम हो जाता है। जैसे कि शुरुआत में हमने कहा था कि स्टैम फ्लाई जो होता है, जब पौधों की ऊपरी त्वचा के नीचे सफेद सुरंग नजर आए और तने को छीलने पर अंदर से लार्वा दिखाई दे और पत्तियां पीली होकर गिरने लगे, तो समझ जाइए कि स्टैम फ्लाई का आक्रमण हुआ है। इसके लिए समय पर बुआई करें, प्रमाणित और उपचारित बीजों का उपयोग करें और जो दवाइयां हमने बताई हैं उसमें आप इमिडाक्लोरपिड और जोड़ सकते हैं, इसका छिड़काव करना होगा, या फिर फ्लोनिकेमिड जैसे कीटनाशकों का छिड़काव करें। यह छिड़काव सुबह या शाम को करना ठीक रहता है। इसके अलावा एक ही खेत में हर साल सोयाबीन की खेती ना करें, फसल चक्र अपनाएं।
1: अभी आप सुन रहे थे सोयाबीन फसल में कीट नियंत्रण विषय पर हमारी आज की कृषि सामायिकी। जानकारी दे रहे थे विपिन यादव। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। श्रोताओं, लीजिए हमारी आज की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के विवरण सुनते हैं।

अब से कुछ ही पलों बाद यानी सुबह 6:55 पर आकाशवाणी दिल्ली से हम अनुप्रसारित करेंगे क्रमशः संस्कृत समाचार, हिंदी समाचार और अंग्रेजी समाचार भी। और आकाशवाणी भोपाल से सुबह 7:10 पर आप सुनते हैं प्रादेशिक समाचार। आकाशवाणी जबलपुर से आप सुनेंगे गुड मॉर्निंग जबलपुर, जहां होगी चर्चा सद्भावना दिवस और विश्व मच्छर उन्मूलन दिवस पर। ठीक 8:00 आप सुनते हैं समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करते हैं। 8:30 पर आज आप सुनेंगे प्रायोजित

कार्यक्रम वतन का राग जिसे हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी भोपाल से। सुबह 9 बजे आप सुनते हैं कार्यक्रम लोक रसधार। यहाँ आज हमारे कलाकार होंगे डॉक्टर सिया शरण ज्योतिषी और अर्जुन सिंह ध्रुवे। 9:30 पर आकाशवाणी भोपाल से आप सुनेंगे नाटक। 10 बजे आप सुनते हैं जिले की चिट्ठी जिसे हम अनुप्रसारित करते हैं आकाशवाणी भोपाल से। 10:05 पर आप सुनेंगे वंदे मातरम गौरव गान की डेढ़ सदी।

10:10 पर आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे विश्व दर्पण और 10:20 पर रोज की तरह आज भी होगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सारंगा। 11 बजे से आप होते हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों के संग।

0: दोपहर में आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों में आप दोपहर 1:33 और 1:45 पर सुन सकते हैं आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति। और शाम 5 बजे हम हमारी दूसरी सभा का आगाज करेंगे कार्यक्रम युववाणी के साथ। यह कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति होगा। 5:33 पर होता है फिल्म संगीत। शाम 6 बजे आप सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। यह NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम है। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे लोक संगीत। लोक संगीत के कार्यक्रम में हमारे आज की कलाकार हैं अन्नपूर्णा शर्मा। सुगम संगीत का कार्यक्रम होता है ठीक 6:45 पर। यहाँ हमारे आज के कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश तिवारी। 7:21 पर आप सुनेंगे चर्चा सद्भावना दिवस पर। और 7:30 पर आकाशवाणी भोपाल से सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी भोपाल से। सुर्खियों में ठीक रात 8 बजे और 8:15 पर फिल्म संगीत। समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे 8:45 पर। और ठीक 9 बजे आप सुनते हैं News@9। 9:15 पर स्पॉटलाइट। 9:30 पर आप सुनेंगे धारावाहिक हंसना मना है। परिकल्पना विमल कांत येंडे की और प्रस्तुत करता है डॉक्टर बैजनाथ गौतम। आलेख है हेमंत कुलकर्णी का। रात 10 बजे आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में उस्ताद विलायत खां का सितार वादक और उस्ताद बिस्मिल्ला खां का शहनाई पर बजाया राग नंद कल्याण। रात 10:30 पर होगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। श्रोताओं, ये थे हमारे आज प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के विवरण। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है, लीजिए सुनिए संस्कृत समाचार।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन ह्यः नवदिल्ल्यां सम्पन्नोपवेशनानन्तरं 13,000 कोटिरूप्यकाधिकाः 5 परियोजनाः अनुमोदिताः। एतासु 4 रेलमार्गसम्बद्धाः, 1 च राजमार्गसम्बद्धा परियोजना अस्ति। सूचनाप्रसारणमन्त्री अश्विनी वैष्णवः उक्तवान् यत् केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलेन पश्चिमबंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश इत्येतेषु 4 राज्येषु रेलमार्गस्य 8 बहुमार्गीय परियोजनाः अनुमोदिताः। असौ उक्तवान् यत् आहत्य 50,4,900,000 कोटिरूप्यकाणां व्ययेन एताः परियोजनाः 30,2,000 वर्षात् 31,2,000 वर्षपर्यन्तं पूर्णाः करिष्यन्ते।
2: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं। और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसाई तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का, टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के

0: बजट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: श्री वैष्णव संसूचितवान यत् मंत्रिमंडलेन बिहार राज्ये मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंडस्य राष्ट्रीय राजमार्ग द्वाविंशति इत्यस्य चतुर्मार्गीय मानकानुसारम् उन्नयनमपि अनुमोदितम्। अस्य व्ययः आहत्य 90.5 लाख 30 हजार करोड़ रुपयाधिकः अस्ति। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः अद्य नवदिल्ल्यां जापानस्य रक्षामंत्रिणा शिंजिरो कोइजुमी इत्यमुना सह द्विपाक्षिकोपवेशनं करिष्यति। अपेक्षते यत् अस्मिन् उपवेशने हिंद प्रशांत क्षेत्रे रणनीतिक विश्वासः सहयोगश्च अधिकं सुदृढौ भविष्यतः तथा स्थिरतायाः सुरक्षायाश्च प्रवर्धनं भविष्यति। उभौ मंत्रिणौ सामुद्रिक सुरक्षा क्षेत्रे गहन सहयोगस्य अथ मेक इन इंडिया इत्यस्य च अंतर्गतं रक्षोपकरणानां प्रौद्योगिक्याश्च क्षेत्रे अधिक निकट सहयोगस्य विषये विचाराणां आदान प्रदानं करिष्यतः। केन्द्रीय मंत्री किरेन रिजिजुः एतत् कथनं निराकृतवान् यत् चीन देशः अरुणाचल प्रदेशे 60 किलोमीटर पर्यन्तं अन्तः प्रविष्टः अस्ति। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे श्री रिजिजुः उक्तवान् यत् बांग्लादेशस्य छायाचित्राणि दृश्यचित्राणि च चीन देशस्य अरुणाचल प्रदेशे प्रवेशं मिथ्यारूपेण प्रदर्शयितुं प्रयोज्यन्ते। असौ उक्तवान् यत् एतादृशानि असत्यानि अभिकथनानि सीमां रक्षतां सैनिकानां मनोबलं न्यूनीकर्तुं शक्नुवन्ति तथा अनावश्यकं भ्रमं जनयितुं शक्नुवन्ति। मंत्री उक्तवान् यत् भारत चीन सीमा सम्बद्धः विषयः गंभीरः अस्ति। सः जनान् आहूतवान् यत् एतादृशे संवेदनशील विषये मिथ्यानि उत वा अप्रमाणितानि कथनानि न कुर्वन्तु। दिल्ल्यां प्रचलितस्य विशेष गहन पुनरीक्षणस्य अन्तर्गतम् आवेदन पत्राणाम् उपस्थापनस्य अन्तिमतिथि अस्य मासस्य 24 दिनांकं यावत् वर्धिता। दिल्ल्याः मुख्य निर्वाचनाधिकारिणः अनुसारम् अधुना प्रारूप मतदातृसूची अस्य मासस्य 31 दिनांके प्रकाशिता भविष्यति। अभ्यर्थनानाम् आक्षेपानां च प्रस्तुतेः अन्तिमतिथिः आगामि मासस्य 30 दिनांकं भविष्यति। बांग्लादेशे अद्य राष्ट्रपति पदाय निर्वाचनं भविष्यति। अस्मिन् निर्वाचने सांसदाः शासनाधिरूढस्य बीएनपी दलस्य वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर तथा एकादश दलात्मकस्य विपक्ष संयुतेः प्रत्याशी कर्नल ओली अहमद इत्येतयोः मध्ये चयनं करिष्यन्ति। 35 वर्षाणाम् अनन्तरं प्रथमवारं राष्ट्रपति पदाय निर्वाचने मतदानं भविष्यति। मतदानम् अद्य अपराह्णे 2 वादनादारभ्य सायं 5 वादनपर्यन्तं संसद भवने भविष्यति इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज सिंगापुर में होगा। सम्मेलन के इस चौथे संस्करण में भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल सिंगापुर पहुंचने पर सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल हैं। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
0: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा एक तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट ने अप्रूव किए।
2: गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्ष

0: अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता मेक इन इंडिया ढांचे के अंतर्गत समुद्री सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने तथा रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। दिल्ली में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के अंतर्गत आवेदन जमा करने की समय सीमा 24 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। प्रारूप मतदाता सूची 31 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। आपत्तियों के समाधान की प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी और 4 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में होगा। इसमें सत्ताधारी दल के सांसद BNP नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। इंडिया डे फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू हो रहा है। 4 दिवसीय इस महोत्सव में भारत और रूस के लोगों को आपसी संस्कृति और परंपराओं को देखने का अवसर मिलेगा। संस्कृतियों की एकता, लोगों की मित्रता विषय पर आयोजित ये फेस्टिवल मॉस्को के गोस्तिनी दौर में आयोजित किया जाएगा। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, केरलम, माहे और तमिलनाडु में बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में कल देर रात बारिश हुई। BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला आज चीन की खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जापान की जोड़ी से होगा। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो चीन की जोड़ी से खेलेंगे। उधर नीदरलैंड्स के अम्स्टरडैम में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया है। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल किए, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत को मजबूत बढ़त दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. The Union Cabinet has approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees, including 4 railway and 1 highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the Union Cabinet has cleared 4 multi-tracking projects of railways covering 8 districts across 4 states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. He said with a total estimated cost of 9,450 crore rupees, the projects are scheduled for completion by 2030-31.
2: Five major decisions have been taken. The first 4 projects are related to the railways, while the 5th is a highway project. The first 4 railway projects include the quadrupling of the Howrah-Chennai main railway route and the quadrupling of the Cuttack-Paradip railway line. The 5th project is the construction of a 4-lane highway from Muzaffarpur via Sitamarhi to Sonbarsa. These projects, with a total cost of 13,041 crore rupees, were approved by the cabinet today.
3: Total 13,041 crore rupees ke projects cabinet ne approve kiye.
1: Mr. Vaishnaw informed that the cabinet has also approved the upgradation of the Muzaffarpur Sitamarhi Sonbarsa section of the National Highway 22 in Bihar to a 4-lane standard at a total capital cost of over 3,590 crore rupees. The Ministry of Education has informed that the last date for online registration for Yuva Sangam

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भव्य, अलौकिक और आपदा मुक्त संघर्ष के लिए तैयार हो रहा उज्जैन। भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज सिंगापुर में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज ग्लोबल स्किल्स पार्क में प्रशिक्षुओं के अभिमुखीकरण समारोह में होंगे शामिल। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कल अपने अंतिम ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 5-3 से हरा कर अगले दौर के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 के भव्य, दिव्य, अलौकिक, आकर्षक और आपदा मुक्त आयोजन के लिए सभी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल उज्जैन को 900

0: 40.20 करोड़ रुपए की लागत से नए एलिवेटेड कॉरिडोर की सौगात दी। ये 5.30 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर सिंहस्थ के दौरान श्रद्धालुओं को सहज आवागमन की सुविधाएं प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कल कालिदास अकादमी में आयोजित होमगार्ड, आपदा मित्र और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम में कहा कि सिंहस्थ धार्मिक पर्यटन का सबसे बड़ा मेला होगा।
1: सिंहस्थ सहित पूरे साल जो हमारे बड़े बड़े मंदिरों के बीच महाकाल मंदिर और महाकाल के साथ काल भैरव, मंगलनाथ और अन्य देवस्थानों के लिए पुराने शहर की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक दो एलिवेटेड रोड का हमने भूमि पूजन किया लगभग 1000 करोड़ की लागत से। साथ ही होमगार्ड की ट्रेनिंग का भी शुभारंभ किया। इतने बड़े प्रबंधन में हमको अपने आपदा मित्रों को भी जोड़ना पड़ेगा, पुलिस बल को, होमगार्ड को, सबको सतर्क करते हुए उनकी ट्रेनिंग की आवश्यकता है।
0: भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन के इस चौथे संस्करण में भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। ये सम्मेलन नए और उभरते क्षेत्रों सहित सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। इसके साथ ही भारत सिंगापुर व्यापारिक गोलमेज सम्मेलन का चौथा संस्करण भी आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल मैहर में 48 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से सांदीपनी विद्यालय, 7 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से ताला में शासकीय महाविद्यालय भवन, 3 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत से अमरपाटन में 30 सीटर बालक छात्रावास तथा आवास का लोकार्पण किया। उन्होंने 21 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण कार्यों तथा 19 करोड़ से अधिक की लागत से जनपद पंचायत मैहर, अमरपाटन और रामनगर में जलगंगा संवर्धन अभियान से जुड़े 1069 विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने 2.51 करोड़ रुपए की लागत से पुलिस कंट्रोल रूम तथा 1.47 करोड़ की लागत से जूरा में नए शासकीय हाईस्कूल भवन और परशुराम धर्मशाला भवन का लोकार्पण भी किया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल मैहर स्थित मां शारदा माता मंदिर पहुंचकर विधि विधान पूर्वक मां शारदा का पूजन अर्चन किया। मुख्यमंत्री ने मां शारदा के दर्शन कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि, खुशहाली और कल्याण की कामना की। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं का अवलोकन करते हुए कहा कि मां शारदा लोक के निर्माण से मैहर में धार्मिक तीर्थाटन में वृद्धि होगी, जिससे जिले में स्थानीय लोगों के लिए रोजगारों का सृजन होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार धार्मिक शहरों में शराबबंदी के लिए कृत संकल्पित है।
2: हमारी सरकार ने पहले नक्सलवादियों को समाप्त किया प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से, और अब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नशा विरोधी अभियान चला रहे हैं। इसलिए सभी धार्मिक नगरों से हमारी सरकार ने 19 नगरों से दारू की दुकानें बंद की है। हमारे अपने परिवार के माध्यम से हम सब संकल्पित हैं। मैहर में भी दारू की दुकानें, शराब की बंद हुई। भविष्य की पीढ़ियों को बचाने के लिए, हर प्रकार से नशे के खिलाफ लड़ने के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है।
0: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क में 550 प्रशिक्षुओं के अभिमुखीकरण समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ग्लोबल स्किल पार्क का भ्रमण करेंगे, इसके साथ ही अकादमिक लैब का अवलोकन कर प्रशिक्षुओं से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव प्रशिक्षण की व्यवस्थाओं, आधुनिक तकनीकी सुविधाओं और युवाओं को दिए जा रहे कौशल प्रशिक्षण की जानकारी लेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव उद्योग जगत के वरिष्ठ प्रतिनिधियों से भेंट और चर्चा करेंगे। इसके साथ ही कौशल प्रशिक्षण और उद्योगों की जरूरत के अनुरूप युवाओं को तैयार करने से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श भी करेंगे। संत शिरोमणि रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज से 10 सितंबर तक समरसता संकल्प अभियान एवं समरसता यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान प्रदेश भर में कलश रथ यात्रा सहित अनेक सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। खंडवा जिले में आज से गांव-गांव और शहरों में विविध कार्यक्रमों का आयोजन होगा। वहीं धार और विदिशा जिले में भी 10 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रम संपन्न होंगे। राजधानी भोपाल के RCVP नरोहना प्रशासन तथा प्रबंधकीय अकादमी में आज विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के सर्वांगीण उत्थान, आजीविका संवर्धन तथा सामाजिक सुरक्षा के लिए एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इसका शुभारंभ पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा गौर करेंगी।

शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम के सातवें चरण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। मंत्रालय ने कहा कि तारीख बढ़ने से देश भर के योग्य युवाओं को इस अनोखे युवा एक्सचेंज प्रोग्राम में रजिस्टर करने और हिस्सा लेने का एक और मौका मिलेगा। 18 से 30 साल तक की उम्र के युवा, जिनमें हायर एजुकेशन संस्थानों के छात्र, वॉलेंटियर और युवा प्रोफेशनल शामिल हैं, युवा संगम के ऑफिशियल पोर्टल के जरिए रजिस्टर कर सकते हैं। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के पूर्वी हिस्सों समेत कई जिलों में तेज बारिश हुई है। छतरपुर के नौगांव में सबसे ज्यादा 45 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि खजुराहो में 33 मिलीमीटर पानी बरसा। मंडला में 35, मलाजखंड में 16 और जबलपुर में 8 मिलीमीटर बारिश हुई। सीधी और टीकमगढ़ में भी 7-7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज पन्ना में बारिश का रेड और सतना, कटनी, दमोह, मैहर और छतरपुर जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में अगले दो दिनों तक रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। अब रुक करते हैं खेल की खबर का। FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड का सामना करेगी। ये मैच एम्स्टलवीन के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। भारत को जीत या ड्रॉ से पूल में शीर्ष स्थान हासिल होगा और वह अगले मैच के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। वहीं मंगलवार को भारत ने दक्षिण अफ्रीका पर 6-1 से जीत दर्ज की थी। इस जीत ने विश्व कप में भारत की पिछली सबसे बड़ी जीत 1974 के उद्घाटन विश्व कप में स्पेन पर 4-1 की जीत को पीछे छोड़ दिया है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कल अपने अंतिम ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अगले दौर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम ने जनपद के सचिवों और रोजगार सहायकों को VBG रामजी से जुड़े कार्यों को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। खंडवा में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत 21 अगस्त को पुनासा विकासखंड के ग्राम अटूट खास में अधिकारियों का दल पहुंचकर ग्रामीणों से संवाद करेगा। डिंडोरी में लगातार बारिश के चलते कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने जोगी टिकरिया स्थित नर्मदा पुल और नर्मदा डैम घाट का निरीक्षण कर सुरक्षा और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने जिले में POP और रासायनिक पदार्थों से मूर्ति निर्माण पर प्रतिबंध का आदेश जारी किया है। दमोह में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत जिले में जल्द ही दमयंती चना प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी। सागर में सागर संभाग क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा बम्होरी रेगुआ ग्राउंड पर क्रिकेटर क्रांति गौड़ और रणजी खिलाड़ी अक्षत रघुवंशी तथा आर्यन पांडे को सम्मानित किया गया। विदिशा में एग्रीस्टेक अभियान के तहत पात्र किसानों की 100% फार्मर ID बनाने के लिए 20 अगस्त से 15 सितंबर तक प्रदेशव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। क्रिएटिव श्योपुर के तहत NRLM KCTC केंद्र में पोषण एवं परंपरा महोत्सव का आयोजन किया गया। नर्मदापुरम के HRC के शासकीय कन्या महाविद्यालय और महात्मा गांधी स्मृति स्नातकोत्तर महाविद्यालय में व्यक्तित्व विकास, रोजगार मार्गदर्शन और पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। और जबलपुर हाईकोर्ट ने लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के OT टेक्नीशियन के 288 पदों पर 31 मार्च 2026 को जारी मेरिट लिस्ट और उससे हुई नियुक्तियों पर अंतरिम रोक लगा दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भव्य, दिव्य, अलौकिक और आपदा मुक्त सिंहस्थ के लिए तैयार हो रहा उज्जैन, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा। भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज सिंगापुर में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज ग्लोबल स्किल्स पार्क में प्रशिक्षुओं के अभिमुखीकरण समारोह में शामिल होंगे। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपने अंतिम ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अगले दौर के लिए क्वालिफाई किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जबलपुर।

गुड मॉर्निंग जबलपुर सुनने वाली सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ मैं आपकी रेडियो सखी शालिनी। और श्रोताओं, कैसा है आज का भीगता हुआ झमझमाता बारिश भरा मौसम? इस मौसम का आनंद आप सभी ले रहे होंगे, भीगते हुए बच्चे जा रहे होंगे अपने स्कूल और आप सभी भी आनंद ले रहे होंगे इस झमझमाती बारिश का। तो श्रोताओं, इस बारिश में एक अच्छा सा गीत तो बनता ही है, तो चलिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जबलपुर की शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

श्रोताओं, हम सभी अलग अलग परिवारों से आते हैं। हमारी सोच अलग हो सकती है, हमारी भाषा, रहन सहन और जीवन जीने का तरीका भी अलग हो सकता है। लेकिन इन सब विविधताओं के बावजूद अगर आपके मन में एक दूसरे के लिए सम्मान

और अपनापन है तो यही है हमारी सद्भावना। यह केवल बड़े अवसरों पर दिखाने वाली भावना नहीं, इसकी असली परीक्षा तो हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में होती है। यह व्यवहार बहुत साधारण हो सकते हैं, जब हम किसी बुजुर्ग की बात को धैर्य से सुन रहे होते हैं या किसी बच्चे की गलती पर उसे प्यार से समझा रहे होते हैं, तब हम सद्भावना को अपने जीवन में उतार रहे होते हैं। और कहते हैं ना, फूलों की खुशबू की तरह होती है सद्भावना, जो खुद भी महकती है और आसपास के वातावरण को भी महका देती है और बांटती है आपस में प्रेम।

0: सो योर प्लेस और माइन।
1: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
0: कॉन्डम? लेकिन हम तो
1: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
0: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
2: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: 5 महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
6: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
5: क्या, कैसे?
6: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
5: वाह, अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
6: mmsky.mp.gov.in पर। MMSky, सीखो भी कमाओ भी।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
7: आकाशवाणी जबलपुर से इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जबलपुर। श्रोताओं, व्यवहार में अपनापन रिश्तों की गर्माहट को सदैव बरकरार रखता है और जीवन में सदैव खुशियों का विस्तार भी करता है। जब हम किसी की बात को समझने की कोशिश करते हैं और बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, तब किसी और की खुशी

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें।

0: या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, स्वस्थ तन और स्वस्थ मन के लिए संतुलन होना बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार यदि मनुष्य के मस्तिष्क का संतुलन थोड़ा भी बिगड़ जाए तो जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस आपाधापी के माहौल में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने मन और मस्तिष्क दोनों पर संतुलन नहीं कर पाते और हो जाते हैं कई शारीरिक बीमारियों के शिकार। संतुलित मनुष्य वही है जो प्रत्येक परिस्थितियों में समान रहता हो और हर परिस्थितियों को आत्मसंयम से पार कर लेता हो। वही व्यक्ति जीवन में कुछ अलग और कुछ विशेष उपलब्धियों को प्राप्त कर सकता है जो आत्मसंयम रखता है। और हम भी आत्मसंयम रखकर आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, कार्यक्रम में इस गीत के साथ।

तेज बारिश के चलते आज का मौसम जो सारे शहर को लबालब भर चुका है और जहां तहां पानी के गड्ढों का भराव हो गया है। श्रोताओं, ऐसे ही समय में मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। मच्छरों से होने वाली बीमारियों की जानकारी आप सभी श्रोताओं को तो होगी ही। जहां डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां तो होती ही हैं, लेकिन चिकनगुनिया जैसी बीमारियां भी हमें अपनी चपेट में ले सकती हैं। इसलिए मच्छरों को अपने आसपास पनपने से बचाएं और एहतियात रखें। ठहरे पानी के स्रोतों पर ध्यान दीजिए और हो सके तो उनमें पानी का निकास अवश्य करें, जिससे मच्छरों से बचा जा सके।

श्रोता, चुनौतियाँ अस्वीकृतियाँ हमें कई बार तोड़ कर रख देती हैं, पर उनसे जूझ कर आगे निकलना, खुद को और तराशना और दुनिया में अपनी जगह बना पाने की जिजीविषा हमें मरने तक जिंदा रखती है। याद रखिए, कंफर्ट जोन से निकले बिना आप कुछ भी खास हासिल नहीं कर सकते। जब तक आप अपने दायरे से आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक वहीं रहेंगे जहां आप थे। तो मन की लगन अपने हाथों में कस कर रखिए। अनुशासन से जरूरी है, क्योंकि इसमें आपको वही करना होगा जो आप करना अक्सर नहीं चाहते, क्योंकि ये करना आपके लिए जरूरी है।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ आज का प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जबलपुर अब यहीं संपन्न होता ही है। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर लिख भेजिए और आनंद रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।

मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है समाचार प्रभात। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन बनाने को भी स्वीकृति दी। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का 4th दौर आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा। ईरान की मदद करने वाले देशों को दी बुरे आर्थिक नतीजे भुगतने की धमकी। और FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एक्सल्टफेन में इंग्लैंड से खेलेगी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे भारतीय रेल के वर्तमान नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि

0: जारी होगी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित परियोजना बिहार के बढ़ते राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जुड़ने के कारण रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
1: ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4-लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंध और मजबूत होंगे, रणनीतिक भरोसा और सहयोग बढ़ेगा तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देश समुद्री सुरक्षा में गहरे सहयोग और मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के तहत रक्षा उपकरणों और तकनीक के क्षेत्र में करीबी सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आर्मेनिया की अपनी 2 दिन की यात्रा पूरी कर ली है। यात्रा के दौरान उन्होंने आर्मेनिया के उप रक्षा मंत्री करेन ब्रुटियान और जनरल स्टाफ प्रमुख एडवर्ड अस्ट्रियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बातचीत में रक्षा और सैन्य तकनीक सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का 4th संस्करण आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। ये सम्मेलन नए और उभरते क्षेत्रों सहित सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। एक रिपोर्ट।
2: सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी। इसके बाद दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई। इन बैठकों में उन्नत विनिर्माण, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा, कौशल विकास तथा स्थिरता पर हुई चर्चाओं से भारत सिंगापुर व्यापक रणनीतिक साझेदारी की रूपरेखा तैयार हुई। इसे पिछले वर्ष सितंबर में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की भारत यात्रा के दौरान लागू किया गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये सम्मेलन दोनों पक्षों के बीच जारी पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी सहयोग को और मजबूत करने के अवसर प्रदान करेगा। इसके साथ ही भारत सिंगापुर व्यापारिक गोलमेज सम्मेलन का 4th संस्करण भी आयोजित किया जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया है। भारत ने कहा है कि परिषद की संरचना और निर्णय लेने की प्रक्रिया वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए और इसमें विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। परिषद में कार्यप्रणाली पर चर्चा में संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि योजना पटेल ने कहा कि सुधारों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। उन्होंने स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की सदस्यता में विस्तार और विकासशील देशों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की भारत की मांग दोहराई।
3: सुरक्षा परिषद में सुधारों पर भारत का रुख स्पष्ट रूप से ज्ञात है। हम ग्लोबल

0: साउथ के लिए अधिक प्रतिनिधित्व के साथ दोनों श्रेणियों में विस्तार चाहते हैं। इसे केवल स्पष्ट रूप से परिभाषित बिंदुओं और वार्ताओं के माध्यम से ही हासिल किया जा सकता है।
1: उन्होंने कहा कि वर्ष 1945 के बाद से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। इंडिया डे फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू हो रहा है। चार दिवसीय इस फेस्टिवल में भारतीय और रूसी समुदायों को संस्कृति, परंपराओं और लोगों के बीच आपसी संबंधों का जश्न देखने को मिलेगा। एक रिपोर्ट।
2: यह फेस्टिवल मॉस्को के गोस्टिनी द्वोर में आयोजित किया जाएगा। संस्कृतियों की एकता, लोगों की दोस्ती थीम पर आयोजित इस फेस्टिवल में कई जगह पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम होंगे। यहाँ बने लगभग 20 खास जोन में आने वाले लोगों को भारतीय संस्कृति के अलग अलग पहलुओं जैसे योग, शतरंज, भारतीय शादियाँ, नृत्य, भारतीय व्यंजन और आयुर्वेद को जानने समझने का मौका मिलेगा। इस फेस्टिवल में पूरे रूस से लगभग 75 योग स्कूल और दूसरे देशों के इंस्ट्रक्टर भी शामिल होंगे। भारतीय नृत्य की विविधता और कलात्मक परंपराओं को दिखाने वाले कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा भारतीय और रूसी डांसर भी हिस्सा लेंगे। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में मतदान होगा। सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए आर्थिक युद्ध की घोषणा की है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने के कई अवसर दिए गए लेकिन वो विफल रहा। एक रिपोर्ट।
0: ट्रंप ने ईरान की मदद करने वाले किसी भी देश को आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कोई भी देश जो अपने वित्तीय संस्थानों, व्यवसायों, हवाई अड्डों या सरकारी एजेंसियों को ईरान को समर्थन देने की अनुमति देता है उसे भी भारी आर्थिक परिणामों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही अपनी चेतावनी को दोहराया कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि बातचीत भविष्य में फिर से शुरू हो सकती है लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि तेहरान को पहले समझौता करने के लिए तैयार होना होगा। इस बीच ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगीर गालिबफ ने कहा कि ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य को तब तक नहीं खोलेगा जब तक अमेरिका 14 सूत्री ज्ञापन के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं कर लेता। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: जी विशाल, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं हॉकी से। FIH विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम का सामना आज इंग्लैंड से होगा। ये मैच एम्स्टलवीन के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। दूसरी ओर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कल अपने अंतिम ग्रुप मैच में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अगले दौर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हरमनप्रीत सिंह और हार्दिक सिंह ने 2-2 गोल किए जबकि अभिषेक ने 1 गोल दागा। और विशाल, अगर बात करें बैडमिंटन की तो BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला चीन की खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जापान की जोड़ी से होगा। अगर बात की जाए मिक्स्ड डबल्स में तो ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो चीन की जोड़ी से खेलेंगे। और अब ले चलते हैं अपने श्रोताओं को क्रिकेट के मैदान की तरफ। तो श्रीलंका के गोल में भारत ने 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हराया है। भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। तो विशाल, ये थी अब तक की कुछ महत्वपूर्ण खेल खबरें।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तरी ओडिशा के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
4: उत्तरी ओडिशा के कई इलाकों में बाढ़ का पानी गंभीर समस्या बना हुआ है। पानी का स्तर अभी भी ऊंचा है और धीरे धीरे कम हो रहा है जिससे कई लोग फंसे हुए हैं। बालेश्वर जिले में बालियापाल सबसे बुरी तरह प्रभावित इलाकों में से एक है जहां खबर है कि 45,000 से ज्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हैं। भद्रक जिले में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद है। सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। राजघाट पर आज सुबह 6 बजे नदी 11.80 मीटर के स्तर पर बह रही थी जबकि खतरे का निशान 10.5

0: मतलब 3-6 मीटर है। सुवर्ण रेखा की बाढ़ से लगभग 2,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। IMD ने इस शनिवार से फिर बारिश का अनुमान जताया है और मयूरभंज, केंद्र और सुंदरगढ़ जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की है, जिससे और ज्यादा बाढ़ आने की चिंता बढ़ गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में बारिश से गर्मी से राहत मिली है, मौसम सुहावना हो गया है, कई इलाकों में कल रात से बारिश हो रही है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद विशाल। जम्मू कश्मीर भारत का महत्वपूर्ण अंग, भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो कोर का ये बयान आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण के अनुसार जम्मू कश्मीर के अपने पहले दौरे में सर्जियो गौर ने कश्मीर को लेकर अमेरिकी रुख में बड़े बदलाव का दिया संकेत। कहा, जम्मू कश्मीर के लिए यात्रा परामर्श की करेंगे समीक्षा। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ छात्र आंदोलन के बीच झारखंड सरकार की बड़ी कार्रवाई दैनिक भास्कर में है। 22 भर्ती परीक्षा रद्द, CID को सौंपी गई जांच। UPSC जैसा सिस्टम क्यों नहीं बनाते, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA से सुप्रीम कोर्ट का ये सवाल नवभारत टाइम्स में है। जेंजी को साधने की मोर्चाबंदी तेज, अमर उजाला लिखता है, भारतीय जनता पार्टी ने विश्वविद्यालयों में युवाओं से संवाद का जिम्मा केंद्रीय मंत्रियों को सौंपा। नए सिम कार्ड के लिए नए नियम सख्त, हिंदुस्तान लिखता है, साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट रोकने के लिए सरकार ने नए CM जारी करने की प्रक्रिया और कठोर की। और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के जरिए तय समय सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन रखने वाले ग्राहकों की जाएगी पहचान।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन बनाने को भी स्वीकृति दी। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का 4था दौर आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा। और FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एम्स्टरडम में इंग्लैंड से खेलेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। The headlines. Union Cabinet approves 4 multi-tracking railway projects covering 8 districts of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. Cabinet also clears 4 laning of Muzaffarpur Sitamarhi Sonbarsa section of NH-22 in Bihar. Union Home Minister Amit Shah to chair Southern Zonal Council meeting at Kovalam in Tamil Nadu this morning. 4th round of India-Singapore Ministerial Roundtable to be held in Singapore today. Bangladesh to go to polls today to elect a new president. US President Donald Trump declares economic warfare against Iran, threatens economic punishment for any country helping Tehran. And Indian women's team to take on England in their final Pool D match of FIH Hockey World Cup in Amstelveen this evening. And now the news in detail. The Union Cabinet has approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees, including 4 railway and 1 highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the Union Cabinet has cleared 4 multi-tracking projects of railways covering 8 districts across 4 states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. He said with total estimated cost of 9,450 crore rupees, the projects are scheduled for completion by 2030-31.
4: Five major decisions have been taken. The first 4 projects are related to the railways, while the 5th is a highway project. The first 4 railway projects include the quadrupling of the Howrah-Chennai main railway route and the quadrupling of the Cuttack-Paradip railway line. The 5th project is the construction of a 4-lane highway from Muzaffarpur via Sitamarhi to Sonbarsa. These projects, with a total cost of 13,041 crore rupees, were approved by the cabinet today.

0: spread across several venues. And now for a look at today's newspapers, it's over to Renu Kataria.
1: Thank you, Anuja. All the dailies have noticed the maiden visit of the present U.S. ambassador to Srinagar. A headline in the Indian Express quoting the U.S. envoy writes, J&K, important part of India, will relook at travel warnings, expressing a strong endorsement of New Delhi's long-standing position on Jammu and Kashmir. Government sharpens Gen Z outreach on social media with One Day, One University, notes the Pioneer along with all other dailies. Modi top social media rankings, adds the Economic Times. A Hindustan Times headline writes about the Supreme Court asking NTA about the progress in exam reforms plan. A headline in the Tribune cites a transformative move launched by India Post to test the feasibility of last mile delivery to the country's most remote and inaccessible corners, which says where the dakya cannot go, a drone can. In its developmental commitment to the state of Palestine, India to build hospital in West Bank seeks to deploy field hospital in Gaza, states the Hindu. On Bangladesh Prime Minister's possible visit to India, Prime Minister Modi assures him of an honorable reception, is another headline in the Tribune. New U.S. immigration rules may mean greater scrutiny for Indians with expanded definition of public charge, reports the Asian Age. And finally, the Times of India refers to a study saying people with no high BP, diabetes or smoking habit lived nearly 13 years longer without dementia than those with all three risk factors. And with that, it's back to you, Anuja.
0: Thank you, Renu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Union Cabinet approves four multi-tracking railway projects covering eight districts of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. Cabinet also clears four-laning of Muzaffarpur Sitamarhi Sonbarsa section of NH-22 in Bihar. Union Home Minister Amit Shah to chair Southern Zonal Council meeting at Kovalam in Tamil Nadu this morning. Fourth round of India-Singapore Ministerial Roundtable to be held in Singapore today. Bangladesh to go to polls today to elect a new president. U.S. President Donald Trump declares economic warfare against Iran threatens economic punishment for any country helping Tehran. And Indian women's team to take on England in their final Pool D match of FIH Hockey World Cup in Amstel Finn this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।
3: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि पिंगली वेंकैया का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 2 अगस्त। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, दिल्ली से रूपा झा और जबलपुर से मनीषा साखरदांडे। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
4: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
5: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
4: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
5: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
4: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

कुछ आवाजें समय के साथ खो नहीं जातीं, वो आने वाली पीढ़ियों के भीतर एक स्मृति दीप बनकर जलती रहती हैं। कुछ जीवन उम्र की लंबाई से नहीं, अपने संकल्प की ऊंचाई से बड़े होते हैं। वो मिट्टी धन्य हो जाती है जहां वो पैदा होते हैं, क्योंकि अपनी मातृभूमि के लिए वो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी थे शहीद बंता सिंह संखवाल। बंता सिंह का जन्म

19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पंजाब के जालंधर जिले के संगवाल नामक गांव में हुआ था। उनका मूल नाम बलवंत सिंह था, लेकिन आगे चलकर वो बंता सिंह के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके पिता सरदार बुधा सिंह एक साधारण किसान थे, लेकिन उनके विचार अत्यंत ऊंचे थे। उनका परिवार अपनी राष्ट्रभक्ति और नैतिक मूल्यों के लिए जाना जाता था। यही कारण है कि बचपन से ही बंता सिंह ने अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना सीख लिया था। माता गुजरी देवी के संस्कारों ने उन्हें गढ़ने का काम किया। बंता सिंह की आरंभिक शिक्षा उनके गांव और पास के प्राथमिक विद्यालय में हुई। वो बचपन से ही अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के थे। इसके साथ ही वो बेहद साहसी और न्यायप्रिय थे। उन दिनों भारत पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। गांव में निर्धनता थी, किसानों पर अत्याचार हो रहे थे और युवाओं के सपने दम तोड़ रहे थे। धीरे धीरे बंता सिंह का बाल मन इन परिस्थितियों को समझने लगा था। जब वो डीएवी स्कूल जालंधर में पढ़ रहे थे, तभी कांगड़ा जिले में भूकंप आया। बंता सिंह घर से जब पढ़ने जाते तो भूकंप पीड़ितों के लिए अनाज की बोरियां ले जाते। धीरे धीरे बंता सिंह युवा हुए और उन्होंने देखा कि उनके अनेक साथी बेहतर जीवन की तलाश में विदेश जा रहे हैं। उन्होंने भी विदेश जाने का निर्णय लिया। आगे की पढ़ाई के लिए वो अमेरिका चले गए। लेकिन ये एक सामान्य यात्रा नहीं थी। ये यात्रा एक योद्धा की यात्रा साबित हुई, जो अपने भीतर एक नए युग का सूर्य लेकर चल पड़ा था। अमेरिका में रहते हुए ही उनके भीतर क्रांति का बीज प्रस्फुटित हुआ।

विदेशी सरजमी पर रहते हुए बंता सिंह ने महसूस किया कि भारतीयों के साथ बहुत भेदभाव किया जा रहा है, उनके आत्मसम्मान को बार बार ठेस पहुंचाई जा रही है। उन्होंने गदरी लहर में कूदने का फैसला कर लिया। गदर पार्टी के प्रधान बाबा सोहन सिंह भकना ने पुस्तक मेरी राम कहानी में लिखा, हमारी सभी विपत्तियों की जड़ हमारी गुलामी है, इसे खत्म करने के लिए हमें शूरवीरों की जरूरत है। उनके इस आह्वान पर सबसे पहले अपना नाम पेश करने वालों में प्रमुख नाम भाई बंता सिंह का था। धीरे धीरे बंता सिंह गदर पार्टी के एक विश्वसनीय कार्यकर्ता बन गए। इसी बीच सन 1914 का साल आया, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ। गदर पार्टी के नेताओं ने इसे स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक अवसर के रूप में देखा। निर्णय हुआ कि सभी क्रांतिकारी भारत लौटेंगे और अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध संघर्ष छेड़ेंगे। बंता सिंह भी अपने साथियों के साथ भारत लौट आए। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि ये युवा क्रांतिकारी कुछ ही समय में भारतीय स्वाधीनता के इतिहास का अमर अध्याय बन जाएगा। अमेरिका से भारत लौटकर बंता सिंह ने आसपास के गांव के लोगों को जगाना शुरू किया। उनके विचारों से प्रभावित होकर कई लोग उनके साथ चल पड़े। उन्होंने संघवाल में पंचायत की स्थापना की और सरकार के विरुद्ध प्रचार आरंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने गांव में एक विद्यालय और पुस्तकालय खोला। गांव में पशुओं का अस्पताल भी खोला गया। गांव की पंचायत में हत्या को छोड़कर सभी मुकदमों का फैसला किया जाता था। गांव में गदर साहित्य छापने के लिए एक प्रिंटिंग प्रेस भी लगाया गया। बंता सिंह ने पूरे जिले का दौरा किया और लोगों के बीच गदर आंदोलन का साहित्य वितरित किया। वो लोगों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करने तथा अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का संदेश देने लगे। अनेक युवा उनके साथ थे। वो विरोध स्वरूप उन्हें रेलवे लाइन से छेड़छाड़ और टेलीफोन के तार काटने जैसी विध्वंसकारी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित करते थे। वो कहा करते थे कि स्वतंत्रता उन्हीं को प्राप्त होती है जो उसके लिए लड़ने का साहस रखते हैं। बंता सिंह को उनके चार अन्य साथियों के साथ गदर पार्टी ने भारत भेजा था। उनका उद्देश्य भारतवर्ष में 1857 की क्रांति की तर्ज पर सशस्त्र क्रांति के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना था। इसके लिए जनता को संगठित करना था। सशस्त्र क्रांति हेतु हथियार और अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी भी वो निभा रहे थे। उनके मन में बस एक ही लगन थी, लगन आजादी की।

इस तरह बंता सिंह लगातार क्रांति गतिविधि में सक्रिय थे। संगवाल में उन्होंने एक मजबूत क्रांतिकारी केंद्र स्थापित कर दिया था। ये दोआबा क्षेत्र का मुख्यालय बन गया था। यहाँ महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस, करतार सिंह सराभा, हरनाम सिंह टुंडीलाट, बीबी गुलाब कौर, बाबा साहेब सिंह और मान सिंह सियालकोटी जैसे क्रांतिकारी अक्सर आया करते थे। बंता सिंह द्वारा स्थापित ये केंद्र पंजाब में गदर आंदोलन की रीढ़ साबित हुआ। बंता सिंह के जीवन का मात्र एक उद्देश्य था, भारत की आज़ादी। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर कपूरथला के शस्त्रागार पर हमला कर दिया और हवलदार भगवान सिंह को अपने साथ मिला लिया। 25 अप्रैल सन 1915 को उन्होंने क्रांतिकारियों के साथ मिलकर नगल कलां होशियारपुर के जेलदार चंदा सिंह की हत्या कर दी। इस घटना के बाद अंग्रेज सरकार तिलमिला उठी। 82 गदर क्रांतिकारियों पर साजिश का पहला केस दर्ज हुआ, लेकिन बंता सिंह फरार हो चुके थे। गदर क्रांतिकारियों ने गुप्त रूप से बैठक की तथा हथियार जुटाने के लिए अमृतसर जिले के मननवाला रेलवे स्टेशन के पास वल्ला पुल पर तैनात सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने की योजना बनाई। इस दल का नेतृत्व बंता सिंह को करना था। 11-12 जून सन 1915 की रात को बंता सिंह ने सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया और 6 सर्विस राइफल्स और 200 कारतूस अपने अधिकार में ले लिए। इस हमले में उन्होंने 2 सिपाहियों फूल सिंह और चतर सिंह को मार दिया। वहीं जेलदार कपूर सिंह की हत्या की कोशिश में भी उनका नाम आया। इस घटना के बाद ब्रिटिश शासन में हड़कंप मच गया। ब्रिटिश सरकार ने बंता सिंह पर भारी इनाम घोषित किया। बंता सिंह को पकड़ने के लिए चारों ओर जाल सा बिछा दिया गया। गांव-गांव में उनकी तलाश शुरू हुई। बंता सिंह उस समय अपने गांव के आसपास गुप्त रूप से रह रहे थे, लेकिन अब भी वो अपने साथियों से संपर्क बनाए हुए थे। वो लगातार भविष्य की योजनाओं पर विचार कर रहे थे, लेकिन उनके एक निकट संबंधी ने धन के लालच में आकर अंग्रेज अधिकारियों को उनकी सूचना दे दी। इस मुखबिर के विश्वासघात का परिणाम हुआ कि बंता सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस के तहत उन पर मुकदमा चलाया गया। उन्हें 2 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया और फांसी की सजा सुनाई गई। पूरे मुकदमे के दौरान बंता सिंह जरा भी घबराए नहीं और पूरी निर्भीकता के साथ अपने क्रांतिकारी विचारों को अदालत के सामने रखा और देश के लिए अपनी निष्ठा जताई। बताया जाता है कि गिरफ्तारी से लेकर फांसी की सजा तक उनका 11 पौंड वजन बढ़ गया था। 12 अगस्त सन 1915 को लाहौर के सेंट्रल जेल में उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। नमन ऐसे अमर बलिदानी को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम किस क्रांतिकारी पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन लें, कार्यक्रम किस क्रांतिकारी पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है WATANKARAAG@gmail.com और RADIO AZAD

hind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। समय है इस घंटे की खास खबरों का।
1: भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज सिंगापुर में होगा। सम्मेलन के इस चौथे संस्करण में भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भाग लेगा। ये सम्मेलन नए और उभरते क्षेत्रों सहित सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क में 550 प्रशिक्षुओं के अभिमुखीकरण समारोह में शामिल होंगे। इसके साथ ही अकादमिक लैब का अवलोकन कर मुख्यमंत्री प्रशिक्षुओं से संवाद भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल मैहर में कहा कि माँ शारदा लोक के निर्माण से मैहर में धार्मिक तीर्थाटन में वृद्धि होगी, जिससे जिले में स्थानीय लोगों के लिए रोजगारों का सृजन होगा। मुख्यमंत्री ने यहां विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। संत शिरोमणि श्री रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज से 10 सितंबर तक समरसता संकल्प अभियान और समरसता यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राजधानी भोपाल के आरसीपीवी नरहुना प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी में आज विमुक्त घुमंतु एवं अर्धघुमंतु समुदायों के सर्वांगीण उत्थान, आजीविका संवर्धन और सामाजिक सुरक्षा के लिए एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम के 7वें चरण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तिथि 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। और FIH विश्व कप में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कल अपने अंतिम ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अगले दौर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है लोक रसधार। लोक संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे डॉक्टर सिया शरण ज्योतिषी और अर्जुन सिंह धुर्वे के गाए बुंदेली लोकगीत। तो लीजिए पहले आपको सुनवाते हैं डॉक्टर सिया शरण ज्योतिषी के गाए बुंदेली लोकगीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: मीडियम वेव पर इस समय आप सुन रहे हैं लोक रसधार।

0: लोक रसधार में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सिया शरण ज्योतिषी के गाए बुंदेली लोकगीत।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: लोक रसधार कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं अर्जुन सिंह धुर्वे की गाए बुंदेली लोकगीत।

इसी लोकगीत के साथ आज का कार्यक्रम लोकरसधार अब यहीं संपन्न होता है। आज इस कार्यक्रम में आपने सुने डॉक्टर सिया शरण ज्योतिषी और अर्जुन सिंह धुर्वे के गाए बुंदेली लोकगीत। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। अगला प्रसारण आकाशवाणी भोपाल से हम रिले करेंगे। कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में होगा।
1: प्रस्तुत है अजीमुद्दीन का लिखा नाटक बुनियाद। प्रस्तुत करता है पुरुषोत्तम श्रीवास।
2: अरे भैया, इस लक्ष्मण को तो जेल में नहीं, अरे किसी लाश के अंदर।
3: अरे रुको रुको, मुंशी जी आ रहे
4: हैं। अरे तुम सब लोग मौज मस्ती बंद करो, जल्दी खाना खा लो, फिर काम पर भी जाना है।
5: ठीक है ठीक है।
4: अरे ओ हरिओम।
6: अरे क्या भैया,
4: तू खाना खाकर लेटा है? चलो एक चलो एक काम पर जा। अरे ओ इमरान, तेरी प्लेट आज वैसी की वैसी रखी है, अरे भूखे मरना है क्या? चल खाना खा, शुरू कर।
7: खा लो।
8: देखा इमरान, जेल में कैदी कितने खुश हैं, और एक तुम हो। जब से जेल आए हो न ठीक से खाते हो न पीते हो, बस उदासी ही उदासी। मुझे अपने बारे में कुछ बताओ।
9: जिम, तुमने किसी नदी या तालाब को देखा है?
8: हाँ हाँ, फिर?
9: सारी नदियां तालाब खुश्क हो गए।
8: कहते रहो इमरान।
9: इन्हीं नदियों और तालाबों की तरह मेरी रूह भी खुश हो गई है, जुर्म करते करते। मगर अब पकड़े जाने के बाद जागते में भी मौत नजर आती है और सोते में भी मौत।
8: क्या फालतू बातें बके जा रहे हो, जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दो।
9: जवाब? जवाब यही है कि मैं ठंडी रेत पर उगा हुआ सिर्फ एक पौधा बनकर रह गया हूं।
8: अब तुम कहोगे कि तुम?
9: हां जिम, मैं रेत पर उगा हुआ फूल हूं जो कभी पनप नहीं सका। मेरे अंदर हजारों कहानियां हैं और हर कहानी में एक दर्द। कहां से शुरू करूं?
8: शुरू तो करो इमरान, सिरा खुद ही खुद मिल जाएगा।
9: तुम मुझे देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो, तो सुनो। मैंने कहा था ना

0: कि रेत पर फूल नहीं उगा करते।
1: यार मैं थक गया हूं, बस बहुत हो गया।
0: हर इंसान एक नर्म गुलाब की कली की तरह पैदा होता है, बच्चे का रुख जिधर मोड़ दो मुड़ जाता है। मैं भी एक नर्म नाजुक जिस्म लेकर पैदा हुआ था, मगर मेरे अपनों ने ही मुझे रेतीला मैदान बना दिया।
2: काकी, ये इमरान मेरे घर से मेरी घड़ी उठा लाया है।
3: क्या बकता है, मेरे इमरान को चोर कहता है?
2: काकी वो देखो मेरी घड़ी, उसके पॉकेट में रखी है।
3: हट झूठे, ये घड़ी तो मैं उसे कल बाजार से दिला कर लाई थी।
4: अरे बहन, ये क्या कह रही हो, ये तो मेरे लड़के की घड़ी है, इसके पापा ने इसके बर्थडे पर इसको दिलाई थी।
3: लो अब ये भी आ गई, मेरे बेटे को चोर कहने वाली। हाँ नहीं तो तुम्हारे बदन पर कीड़े पड़ेंगे। हाँ? जो मेरे सीधे साधे मासूम बच्चे पर चोरी का इल्जाम लगाया।
4: देखो बहन, बच्चे की ऐसी तरफदारी मत करो, बिगड़ जाएगा एक दिन।
3: अरे वाह, मान न मान, मैं तेरा मेहमान, चलो यहाँ से। बड़ी आई मेरे बच्चे पर इल्जाम लगाने वाली।
4: अरे रख लो दूसरे का माल, मैं तो जाती हूँ, मगर देखना एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। चल बेटा।
3: अरे जा जा, चली गई। अरे बेटे इमरान कहाँ है?
5: मैं यहाँ हूँ माँ, कमरे में।
3: अरे बेटे ये क्या है, ये घड़ी, ये सोने की चेन, क्रिकेट का बैट कहाँ से लाया तू?
5: माँ ये सब मेरा है।
3: देख बेटा, सब चीजें मुझे दे दे, छुपा कर रख दूँ, नहीं तो और लोग भी आ जाएंगे अपनी चीजों का दावा करने।
5: ये लो माँ, तुम रख लो।
3: वाह, ये सोने की चेन तो बड़ी अच्छी है, 5-7 हजार की तो होगी। ला मैं छुपा देती हूँ। बेटा तू सुबह से भूखा है, मैंने तेरे लिए दूध की मलाई निकाल के रखी है।
5: हाँ,
3: ले खा ले।
5: हाँ माँ बहुत भूख लगी है।
3: हाँ बेटा ये ले।
1: सच इमरान, माँ की मोहब्बत के कई रूप होते हैं, कहीं ये प्यार है, कहीं शफकत, कहीं ममता, तो कहीं भेजा लाड़ प्यार।
0: हाँ जिम, या ये कहें कि बच्चा जब छोटा होता है तो मोहब्बत के ये दायरे उसे घेरे रहते हैं।
1: इमरान, मगर तुम्हारी माँ की मोहब्बत का ये कौन सा रूप था?
0: मेरी माँ ही नहीं, अक्सर माओं के अंदर ये चीज पाई जाती है कि उनकी औलाद अच्छा करे या बुरा करे, कोई उस पर उंगली ना उठाए।
1: फिर
0: क्या, मैं एक बेनकेल ऊंट की तरह गलत रास्ते पर चलता रहा। मुझे याद है वो दिन, उस दिन मैंने अपनी माँ से कहा, माँ वो मोहल्ले वाली काकी मुझे अपने बच्चे के साथ नहीं खेलने देती, कहती है मैं बुरा लड़का हूं। फिर क्या था, मेरी माँ काकी के घर पहुंच गई और इतनी गालियां बकी। मैं बहुत खुश था, काश मेरी माँ ने मेरा इतना साथ ना दिया होता।
1: इमरान, तुम्हें किसी ने सुधारने की कोशिश नहीं की?
0: कौन सुधारता, बाप जिससे बच्चे को डर होता है वो खुद माँ को छोड़कर चला गया था, कोई रोकने वाला नहीं न टोकने वाला। मैं जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ता रहा, फिर सोसाइटी जो मिली वो मोहल्ले के बदमाश लड़कों की।
1: मगर तुमने वो जुर्म क्यों किया जिसकी तुम्हें यह सजा मिली?
0: जिम, कौन से जुर्म के बारे में पूछ रहे हो, मुझसे तो हजारों जुर्म सरजद हो चुके हैं। मुझे याद है बचपन में एक जीप में कुछ बच्चे बैठे थे, मैं भी उस जीप पर चढ़ गया और ड्राइवर जो हैंड ब्रेक खींच कर गया था उसको हटा दिया, खुद गाड़ी से कूद गया। गाड़ी थाल पर खड़ी थी, जाकर एक दीवार से जा टकराई, कई बच्चे जख्मी हो गए।
1: ओह यू इमरान।
0: उस दिन भी बच्चों की माएं आईं, मगर मेरी माँ बोली, अरे कमबख्त तो इन बच्चों ने शरारत की होगी, मेरा इमरान घर में सुबह से सो रहा था, झूठ बोलते हो। सब अपना मुंह लेकर वापस हो गए। जिम, ये मेरे चेहरे पर उभरता हुआ एक कड़वा सच है।
1: हाँ इमरान, तुम सच कह रहे हो, किसी भी तूफानी नदी के बहाव को बांध बनाकर रोका जा सकता है, मगर जुर्म के बहाव को रोकना बहुत मुश्किल होता है, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है।
0: हाँ मुझे याद आया, एक दिन एक लड़का पतंग उड़ा रहा था, मैंने उससे कहा थोड़ी देर के लिए पतंग मुझे दे दो, उसने मना किया, मैंने एक बड़ा सा पत्थर उसके सर पर दे मारा।
1: ओह लहू लहू।

0: कौन हो गया होगा वो बच्चा?
1: हाँ, वो वहीं बेहोश हो गया था। मुझे पहली बार गरम गरम लहू का एहसास हुआ। कितनी आसानी से ये लहू बदन से निकल जाता है। फिर तभी से मुझे खून की चाहत लग गई। मैं जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ता जा रहा था।
2: माँ, माँ मुझे छुपा लो, माँ पुलिस मेरा पीछा कर रही है।
3: बेटा, अब तो तू जवान हो गया है, ऐसा क्या कर दिया जो पुलिस तेरा पीछा कर रही है?
2: ये जेवरात रख लो माँ, पीली कोठी पर हाथ मारा था, सोने चांदी के जेवर लेकर उतर ही रहा था कि अचानक रात के दरोगा ने देख लिया और मेरे पीछे पड़ गया है।
3: ला ला इधर दे, मैं छुपा देती हूँ।
4: अरे क्यों बड़ी भी, यहाँ कोई लड़का तो नहीं आया?
3: अरे भैया, यहाँ तो कोई नहीं आया, क्यों क्या हो गया?
4: आया तो इधर ही था, न जाने कहाँ गायब हो गया। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, कभी ना कभी तो हंसेगा ही।
2: कैसे अच्छे गहने हैं माँ?
3: बेटा संभल कर रहा कर, मैं कहती हूँ, मुझे तो बड़ा डर लगता है कहीं तुझे कुछ हो ना जाए।
2: अरे नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। माँ खाना दे, बहुत भूख लगी है।
3: जा वहाँ रखा है, खा ले।
2: हाँ माँ।
5: मुबारक हो काकी, गुपचुप तुम्हारे लड़के ने कानपुर जाकर ब्याह रचा लिया और तुमने हमको खबर भी नहीं दी।
3: अरे मेरे तो भाग फूट गए, सब मिट गया, जाने किस लड़की से ब्याह रचा लाया।
5: काकी, इसको कहते हैं हींग लगी ना फिट करी, रंग चोखा आए। आपका कितना अच्छा बेटा है, आपको बहू ढूंढने की मुसीबत से बचा लिया। अरे आपको तो खुश होना चाहिए।
3: उगलो और जहर उगलो। अरे उस कलमुही ने मेरे मासूम बेटे पे डोरे डालकर फंसा लिया, आएगी तो घर में नहीं घुसने दूंगी, कच्चा चाप जाऊंगी उसे।
5: खैर काकी, अब मैं चलती हूँ, वलीमे के दिन हमें भी याद रखना, ठीक है? जाती हूँ।
6: उस्ताद, वो मंगल किराने वाले ने हफ्ता नहीं दिया है।
1: अच्छा, चलो मेरे साथ।
7: चलो
1: चलो
7: चलो।
1: और कोई हो तो सामने आओ। तुम सोचते हो कि तुम्हारी मदद को कोई आएगा? तुम्हारी भूल है। अब आइंदा किसी ने आवाज उठाई तो वो हश्र करूंगा कि सात पीढ़ियां गंजी पैदा होंगी। चल लल्लू।
6: दादा, वो शराब की भट्टी पर दरोगा आया था।
1: क्यों, उसको खोका नहीं पहुंचाया क्या?
6: अरे पहुंचाया था, बोलता है कि आजकल ऊपर का दबाव ज्यादा है, कुछ दिन के लिए भट्टी बंद करनी पड़ेगी।
1: भट्टी बंद करना पड़ेगी? अब आधा खोका और बढ़ा दे, भट्टी बंद नहीं होगी।
6: ठीक है उस्ताद।
8: इमरान, मैं तुम्हारे लिए बड़ी परेशान रहती हूँ।
1: तभी मैं कहता हूँ कि मेरी बुलबुल जाने तमन्ना इतनी उदास क्यों रहती है। हाँ, तो तुम कह रही थी कि तुम्हें मेरी फिक्र रहती है।
8: हाँ।
1: मगर क्यों?
8: इसलिए कि मुझे तुमसे मोहब्बत है।
1: अरे अरे अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो?
8: इमरान, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, मैं अक्सर तुम्हारे लिए परेशान हो जाती हूँ।
1: अरे भाई, आजकल हम जैसे लोगों की जरूरत है बड़े बड़े शरीफजादों को। ये बड़े बड़े सेठ अमीर लोग हमको पालते हैं अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए।
8: मैं अंजाम से डरती हूँ इमरान, मुझे डर लगता है अपनी घुटी घुटी जवानी से, डरी सहमी जिंदगी से जिस पर हर वक्त खौफ और डर के साए मंडराते रहते हैं।
1: तुम ठीक कहती हो, कौन है जो मेरी जिंदगी से खौफ के सायों को निकाल सकता है? मेरी जिंदगी से इनको कौन खुरच सकता है?
8: तुमने कोई ऐसी दुल्हन देखी है जिसकी सुहागरात दहशत और खौफ के साए में हुई हो? उमंगों भरी दुल्हन का दिल नहीं बल्कि खौफ का उन्माद छाया हुआ हो?
1: जिस आदमी की जिंदगी रेत की दीवारों के बीच गुजरी हो, जिसका बचपन जवानी मौसमों की तुंद धूप छांव में बीता हो, जिसका बचपन जुर्मों के साए में बीता हो, उसमें तुम खुशियों की उम्मीद क्यों रखती हो? रहा तुम्हारा, तो जब तक जिंदा हूं तुमसे प्यार करता रहूंगा।

0: जब तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तो फिर तुम ये सारे बुरे धंधे छोड़ क्यों नहीं देते? ये सब धंधे आदमी के लिए दीमक हैं इमरान। मुझसे वादा करो कि गंदे नालों की तरफ अब पलटकर भी नहीं देखोगे।
1: मैं जिस दलदल में फंस गया हूं वहां से वापस आना नामुमकिन है। हेलो। हाँ
2: हेलो, कौन? इमरान बोल रहे हैं?
1: हाँ बोल रहा हूँ।
2: तुम्हारे लिए काम है छगन सेठ का।
1: अच्छा हाँ
2: छह कोके का है, काम हो जाएगा?
1: हो जाएगा।
2: चल ठीक है, रखता हूँ।
1: ओके।
0: किसका फोन था?
1: वो
0: अरे किसका फोन था?
1: छगन सेठ का
0: क्या कह रहा था?
1: कह रहा था, एक आदमी को टपकाना है, छह खोकों का काम है।
0: तुमने क्या कहा? मना कर दिया ना?
1: अरे वो धमकी दे रहा था, छगन सेठ का काम कर दिया तो छह खोके, और इनकार किया तो मौत।
0: तुमने क्या कहा?
1: मैंने कहा ठीक है काम हो जाएगा।
0: अरे ये आप क्या करने जा रहे हैं? मेरा क्या होगा? आपको मेरी कसम मत चाहिए।
1: नहीं तबस्सुम, हमारे धंधे में या तो पैसा है या मौत या जेल, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है।
0: तुम खुद नहीं छोड़ना चाहते हो ये सब?
1: नहीं तबस्सुम, मेरे जख्मों को कुरेद कर मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं जब अपनी पिछली जिंदगी देखता हूं तो मेरे किए हुए पापों का एहसास मेरे जमीर को लहूलुहान कर देता है। मैं भी इस खूनी दलदल से निकलना चाहता हूं, मगर जितना निकलना चाहता हूं और धसता चला जाता हूं, न जी सकता हूं न मर सकता हूं।
0: इमरान, अगर तुम चाहो तो अभी भी ये सब कुछ छोड़कर सिर्फ मेरे बनकर रहो, फिर देखना जिंदगी का कैसा मजा आता है।
1: तबस्सुम, तुम बहुत हसीन हो, मेरे दिल की तस्कीन हो तुम। मिल गई हो तो मुझे जिंदगी जीने का मकसद मिल गया है।
0: हाँ इमरान, मैं भी यही चाहती हूं कि हमारी जिंदगी फूलों की क्यारी बनकर महके, हमारी खुशियों के आंगन में खुशी के बुलबुल की तरह चहके।
1: नहीं तबस्सुम, सांप निकल गया, अब रस्सी पीटने से कोई फायदा नहीं।
0: देखो देखो इमरान, मैं कहती हूं हम इस शहर को छोड़कर चले जाएंगे, एक नई जिंदगी बनाएंगे जहां मैं और तुम बस।
1: तुम और मैं मोहब्बत के गीत गाएंगे,
0: हाँ
1: यही ना?
0: हाँ
1: सपने देखना और बात है, और हकीकत, हकीकत कुछ और ही होती है। छगन सेठ अपने विरोधी को पाताल में ढूंढ लेता है, समझी?
0: मैं कहती हूं कुछ नहीं होगा इमरान।
1: ख्वाब बहुत मीठे होते हैं, मगर उनकी ताबीर बहुत कड़वी होती है। तबस्सुम बहुत कड़वी। मैं जा रहा हूं, मुझे छगन सेठ का काम करना ही होगा।
0: मत जाओ इमरान, खुदा के वास्ते मत जाओ। मेरा क्या होगा इमरान?
1: इतना पैसा छोड़ जा रहा हूं, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम ऐश की जिंदगी गुजार सकती हो।
0: मेरे सरताज, जब तुम ही नहीं हो तो ये धन दौलत सब बेकार है।
1: तबस्सुम, मुझे और कमजोर मत करो, मुझे जाना ही होगा।
0: नहीं इमरान, मैं तुम्हें खुदा का वास्ता देती हूँ, मत जाओ,
1: मुझे जाना ही
0: मत
1: होगा।
0: जाओ इमरान।
1: तबस्सुम, मैं जा रहा हूं।
0: नहीं इमरान, इमरान मत जाओ।

0: अब समाचार विस्तार से सुनिए। कल रात अंधी गली में दो लोगों का कत्ल हो गया है। एक नीले रंग की कार में दो नौजवानों की लाश पड़ी हुई थी। लगता है किसी बेआवाज पिस्तौल से बहुत पास से गोली चलाई गई है। पुलिस छानबीन कर रही है।
1: कौन है इतनी रात गए?
2: तबस्सुम, दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो, मैं हूँ।
1: अरे हाँ, ऐसे घबराए हुए क्यों है? क्या हुआ?
2: कुछ नहीं, बस कुछ मत पूछो मुझसे, मुझसे
1: कुछ तो बताइए, मेरी तो जान निकली जा रही है। अभी अभी टीवी पर दो लोगों के कत्ल की खबर आ रही है।
2: हाँ, मैंने उन्हें मार दिया।
1: क्या?
2: हाँ, मैंने उनसे कहा भी था कि नीला बैग मुझे दे दो, मगर वो अड़ गए और मुझ पर पिस्तौल तान लिया। मजबूरन मुझे

0: गोली चला दी पड़िया।
1: ओह इमरान, क्या था उस नीले बैग में?
0: करोड़ों के हीरे। छगन सेठ को पता चल गया था, इसलिए उसने उन लोगों से नीला बैग छीन कर लाने को कहा था। उसने कहा था कि वो आसानी से बैग नहीं देंगे, ना दें

0: अभी तक तो बहुत गंदे काम करते थे, अब खूनी बन गए हो।
1: हाँ
0: फांसी हो जाएगी तुम्हें, फांसी हो जाएगी।
1: तबस्सुम, तबस्सुम, तबस्सुम, होश में आओ, होश में आओ तबस्सुम।
0: फांसी हो जाएगी इमरान, फांसी।
1: तबस्सुम,
0: हाथ लगाओ मुझे, तुमने दो बेगुनाहों का कत्ल किया है। कातिल हो तुम, कातिल हो इमरान,
1: हाँ मैं
0: कातिल।
1: कातिल हूं, कातिल हूं मैं। तबस्सुम, तबस्सुम, मुझे आप, मुझे अपने आंचल में छुपा लो, मुझे बचा लो तबस्सुम। देखो वो लोग आते ही होंगे, हाँ, और देखो मेरा मोबाइल वहां गिर गया है, वो उसके जरिए मुझ तक पहुंच जाएंगे।
0: क्या करूं?
1: मैं खुद किसी का कत्ल करना नहीं चाहता था, हाँ, मगर वो छगन सेठ,
0: छगन सेठ के हाथ बहुत लंबे हैं, वो तो बच जाएगा, मगर तुम तो...
2: यही वाला घर है सर उसका?
3: हाँ सर। अच्छा,
2: हाँ।
3: खेल लो चारों तरफ से।
2: यस सर।
4: कौन है?
3: तुम्हारा मान घर में है?
1: कह दो घर में नहीं है।
4: नहीं,
3: हम घर की तलाशी लेंगे। दरवाजा खोलो, नहीं तो हम दरवाजा तोड़ देंगे।
4: मैं खोलती हूँ।
3: चलो इमरान, अब छुपना फजूल है, तुमने दो लोगों का मर्डर किया है।
1: नहीं।
3: वेरी गुड, ये पिस्तौल यहां छुपा है, अब तुम्हारे दिन पूरे हो गए इमरान।
1: इंस्पेक्टर
3: चलो।
1: मैंने कुछ नहीं किया है,
3: ये सब अदालत में कहना।
1: मैं बेकसूर हूं
4: इमरान।
1: तबस्सुम, तबस्सुम
4: इमरान।
5: आर्डर, आर्डर, आर्डर। मुजरिम इमरान के रिकॉर्ड को देखकर पता चलता है कि ये बचपन से ही जुर्म का आदी था और धीरे धीरे ये बड़ा मुजरिम बन गया। अड़ी डालना, लूटपाट, चोरी चकारी, जुआ, शराब के अड्डे चलाना और अब दो मासूम लोगों का कत्ल। मुजरिम इमरान, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है?
6: जी हाँ माय लॉर्ड, मैं अदालत से पूछना चाहता हूँ कि अदालतें जब से वजूद में आई हैं क्यों मुलजिमों से भरी रहती हैं?
5: तुम क्या कहना चाहते हो?
6: मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने कभी ये सोचा है कि जुर्म क्यों होते हैं, इनकी बुनियाद कैसे पड़ती है? ये समाज गंदा है, जब तक ये गंदा समाज है गरीब बच्चों में तड़पन है, जब तक भूखे गरीब लोगों के बच्चे कपड़े और दूध के लिए तरसते रहेंगे तब तक आप जज साहब मुजरिमों को फांसी पर चढ़ाते रहेंगे और जेलों में डालते रहेंगे, मगर इससे जुर्म कम नहीं होंगे।
5: मगर तुम्हें इन चीजों की कमी नहीं थी, फिर भी तुम क्यों जुर्म की दुनिया में कूद पड़े?
6: मिलॉर्ड, मैं भी बचपन से छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत तरसता रहा हूं।
5: बयान जारी रखो।
6: मिलॉर्ड, मैं कह रहा था कि कानून बनाए जाते हैं मगर खुद कानून की हिफाजत करने वाले इन कानूनों को तोड़ने का गुर सिखाते हैं, वो भी चंद सिक्कों के लिए। जज साहब, मैं पूछता हूं, जब शराबबंदी का कानून लागू है तो ये जहरीली शराब की भट्टियां कैसे पनपती हैं जो हजारों लोगों की जान ले लेती हैं? जज साहब, गरीब का बच्चा दूध के लिए तरसता है मगर ये दौलत के ठेकेदार अपने कुत्तों पर हजारों रुपए खर्च कर देते हैं।
5: मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आदमी कानून को अपने हाथ में ले ले।
6: जज साहब, क्या मुझे सजा देने से दुनिया के हालात बदल जाएंगे, जुर्म बंद हो जाएंगे? नहीं जज साहब, नहीं। एक इमरान को सजा देने के बाद हजारों इमरान पैदा हो जाएंगे।
5: ऑर्डर, ऑर्डर। वो तुम्हारी राय में समाज को कैसे सुधारा जा सकता है, तुम्हारी तरह डान बनकर?
6: नहीं जज साहब, आप और आपका कानून मुजरिमों को सजा देकर बूढ़ा हो जाएगा। आपके बाद दूसरा जज, तीसरा जज, मेरे बाद दूसरा मुजरिम, तीसरा मुजरिम। जज साहब, बीमार का इलाज ना होकर बीमारी का इलाज होना

0: चाहिए। आपको वो बातें समाज से दूर करना होंगी जिसके कारण समाज गंदा हो रहा है। आप लोगों को जरा सी खुशहाली दे दीजिए, भूखे को रोटी दे दीजिए, फिर देखिए कि आपकी अदालतें मुजरिमों के लिए तरसेंगी। बस जज साहब, अब मुझे कुछ नहीं कहना।
1: ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। मुजरिम इमरान ने जो बातें कही हैं उसमें काफी वजन है, मगर मैंने इमरान की पूरी केस हिस्ट्री पढ़ी है। वो गरीबी भुखमरी की वजह से नहीं, वो आत्तन मुजरिम है। क्या है उसके जुर्म करने की वजह, वो कुछ भी हो, ये अदालत उसे मुजरिम मानती है। इसलिए सब हालात और गवाहों के बयान सुनकर एक आदि मुजरिम होने के नाते ये अदालत मुजरिम को सजाए मौत देती है, हैंग टिल डेथ।
2: चलो इमरान, तुम्हारी फांसी का समय हो गया है।
0: नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं जीना चाहता हूं, मैं मरना नहीं चाहता हूं।
2: तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश?
0: आखिरी ख्वाहिश? हाँ हाँ है।
2: क्या?
0: मेरी मां को बुलाओ, मैं उससे कुछ कहना चाहता हूं।
2: इमरान की मां को बुलाया जाए।
3: मेरे लाडले को फांसी पर मत चढ़ाओ, उसे छोड़ दो। मेरे बच्चे इमरान को, बोल बेटा, क्या कहना चाहता है?
0: माँ, इधर आ, माँ इधर आ। हाँ मेरे पास।
3: हाँ बेटा।
0: मुझे तेरे कानों में कुछ कहना है।
3: क्या कहना चाहता है बेटा?
0: और करीब आ माँ, और करीब।
3: ये ले
0: तेरा कान ला।
3: ये ले। अरे अरे, मर गई, मर गई। अरे मेरे कान मत काट।
2: अरे छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो इमरान, ये क्या कर रहे हो? कोई अपनी माँ के साथ ऐसे पेश आता है?
0: सुनो तबस्सुम, मेरी कहानी खत्म हो गई।
4: इमरान, अब मेरा क्या होगा?
0: मैंने पहले ही तुमसे कहा था, मुझसे दिल ना लगाओ, मेरा रास्ता फांसी के फंदे तक जाता है। हर मुजरिम को एक ना एक दिन अपने किए की सजा मिलती है।
4: इमरान, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है।
0: तबस्सुम, उसको कभी मत बताना कि वो एक मुजरिम का बच्चा है। उसे बहुत पढ़ाना लिखाना और जुर्म की इस दुनिया का उस पर साया भी ना पड़ने देना। तबस्सुम, तबस्सुम, तो मुझसे वादा करो, मुझसे वादा करो तबस्सुम।
4: हाँ इमरान,
0: मुझसे वादा करो।
4: मैं वादा करती हूँ, मैं वादा करती हूँ।
0: मत रो तबस्सुम, मत रो। मैं एक हारा हुआ आदमी हूं, एक ऐसा इंसान, एक झुके हुए दरख्त के समान, एक झुके हुए दरख्त के समान जन्म लेता है। माँ बाप चाहे तो उसे एक फलदार कामयाब दरख्त बना दें, और चाहे तो एक मुजरिम।
3: तबस्सुम, ये क्या कह रहा है?
4: वो कह रहे हैं अम्मी कि उनको मुजरिम बनाने में तुम्हारा हाथ है, तुमने ही उनको बर्बाद किया है।
3: वो सच कह रहा है, वो सच ही कह रहा है। इसकी फांसी की जिम्मेदार मैं हूँ। मैंने बचपन में इसको चोरी करने पर डांटा होता, लोगों को सताने से मना किया होता, पढ़ाया लिखाया होता, इसकी हर गलती पर लोगों की शिकायतों पर ध्यान दिया होता, तो आज ही एक अच्छा शहरी बनता।
4: हाँ अभी ये सच है, बच्चे की पहली पाठशाला उसकी माँ की गोद होती है।
3: मेरे बेटे को नहीं, मुझे फांसी दो। मैं इमरान की कसूरवार हूँ, मुझे फांसी दे दो, मुझे फांसी दे दो। इमरान, हाय इमरान, मेरा बेटा।
2: मुलाकात का समय खत्म हुआ।

0: अभी आप सुन रहे थे अजीमुद्दीन का लिखा नाटक बुनियाद। भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। जिम सौलत सईद खान, इमरान इरफान सौरभ, बाल इमरान प्रांशु चोपड़ा, किशोर इमरान लखनलाल वर्मा, इमरान की माँ अनीस फातिमा, बच्चा श्रीनिवास पाई, बच्चे की माँ उषा चौधरी, पड़ोसन मीना सिद्धू, लल्लू बालेंद्र कुशवाहा, सेठ मनोज राजानी, तबस्सुम प्रमिला दिवाकर, समाचार वाचिका थी पूजा वर्णवाल, इंस्पेक्टर रईस हसन और जेलर की भूमिका निभाई मनोज राजानी ने। इस नाटक के प्रस्तुतकर्ता थे पुरुषोत्तम श्रीवास।
1: ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बुरहानपुर जिले की चिट्ठी। आलेख गणेश कुमार बाविस्कर का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। बुरहानपुर जिले में 80वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया और जगह जगह पर समारोह आयोजित किए गए। उस उपलक्ष्य में निजी और शासकीय संस्थाओं सहित घर घर तिरंगा लहराया गया। आजादी के इस महापर्व पर पूरा जिला देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। बुरहानपुर शहर की पहली डाक कांवड़ यात्रा ने भक्ति और जोश का अनोखा रंग दिखाया। महाजनापेठ स्थित बागेश्वर महादेव मंदिर समिति के 25 उत्साही सदस्य ओंकारेश्वर से नर्मदा का पवित्र जल लेने रवाना हुए। सुबह 6 बजे नर्मदा का जल लेकर कांवड़िये लगातार दौड़ते हुए महज 9 घंटे में ओंकारेश्वर से बुरहानपुर पहुंचे। बुरहानपुर जिले भर में सावन मास को लेकर हर तरफ भक्ति का उल्लास है। शिवालयों में महादेव के दर्शनों की होड़ लगी हुई है। ऐतिहासिक प्रसिद्ध प्राचीन किला असीरगढ़ पर मौजूद अश्वत्थामा वाले गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन के लिए दूर शहरों से भक्त पहुंच रहे हैं। बुरहानपुर जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा दूध एवं दुग्ध उत्पादों सहित अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लगातार निरीक्षण और जांच की जा रही है। विभाग ने कार्रवाई करते हुए 1 मार्च से 78 किलो घी जब्त किया। वहीं मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत पिछले दिनों परेठा गांव में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन ने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर योजनाओं की जानकारी दी और समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेशव्यापी मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान संचालित किया जा रहा है। बुरहानपुर जिले में 19 अगस्त को रोजगार मेले का आयोजन किया गया। जिला पंचायत में आयोजित रोजगार मेले में अलग अलग कंपनियों द्वारा सहभागिता की गई। इस मेले में शासकीय विभागों द्वारा युवाओं को जानकारी प्रदान की गई और स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए गए। इसके साथ ही कौशल विकास प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी भी छात्रों को प्रदान की गई। इस अवसर पर जिले के 208 युवाओं ने पंजीयन कराया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों की 7 कंपनियों के प्रतिनिधियों ने उपस्थित होकर अभ्यर्थियों का साक्षात्कार और प्राथमिक चयन किया। इस दौरान 110 युवाओं का प्राथमिक स्तर पर चयन कर उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। रोजगार मेले के माध्यम से युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार और अप्रेंटिसशिप के अवसरों की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई। इस पहल से जिले के युवाओं को उनकी योग्यता और कौशल के अनुरूप रोजगार के अवसर प्राप्त करने में सहायता मिली। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति भोपाल के निर्देशानुसार बुरहानपुर जिले में 12 अगस्त से HIV एड्स जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है, जो कि 12 अक्टूबर तक चलेगा। जिसके तहत जिले के महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को HIV और एड्स सहित सिफिलिस और TB से संबंधित जानकारी देकर जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में बीते दिनों जीजामाता शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला चिकित्सालय और STD परामर्शदाता राजू पवार ने विद्यार्थियों को HIV एड्स सिफिलिस और TB के प्रमुख लक्षणों बचाव और जांच के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। श्री पवार ने विद्यार्थियों से कहा कि जागरूकता अभियान का उद्देश्य केवल स्वयं तक जानकारी सीमित रखना नहीं बल्कि सही जानकारी को परिवार और आसपास के लोगों तक पहुंचाना भी है। प्रदेश सरकार ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर स्थानीय संसाधनों पर आधारित रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत बुरहानपुर जिले के 18 स्वसहायता समूहों की 22 दीदियां राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमता एवं प्रबंधन संस्थान

0: एनआईएफटी ईएम कुंडली सोनीपत हरियाणा में 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त कर लौटी हैं। इस प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को केले के रेशे से मूल्य संवर्धित उत्पाद निर्माण, आधुनिक फूड प्रोसेसिंग तकनीकी, गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग एवं लेबलिंग, ब्रांडिंग, विपणन, व्यवसाय प्रबंधन और उद्यम स्थापना की व्यावहारिक जानकारी प्रदान की। इसके साथ ही उत्पादों को बाजार की मांग के अनुरूप तैयार कर बेहतर आय अर्जित करने के उपायों से भी अवगत कराया गया। प्रशिक्षण के उपरांत दीदियों ने बताया कि इस प्रशिक्षण से उन्हें स्थानीय स्तर पर केले के रेशे से नए उत्पाद विकसित करने, आय में वृद्धि करने इत्यादि के संबंध में सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। वे अपने अपने स्वसहायता समूह के माध्यम से इस तकनीक का उपयोग कर अन्य महिलाओं को भी जोड़ेंगी, जिससे समूहों की आय में वृद्धि होगी। बुरहानपुर जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे बुरहानपुर जिले की चिट्ठी। आलेख था गणेश कुमार बाविस्कर का, वाचन स्वर अभिषेक कटियार का था। ये प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
2: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 800 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। सुबह के ठीक 10:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए वंदे मातरम, गौरव गान की डेढ़ सदी।

श्रोताओं, वंदे मातरम। वंदना है देश की। कलम से वंदना कर बंकिम जी अमर हो गए, और ऐसे ही अमर हुए कई शहीद जिन्होंने भारत माँ की वंदना को अपने रक्त से लिखा, जिसमें थे शब्द उनकी शहादत के, जिनमें थे स्वर उनकी चीखों के, जिनमें थी ताल उनकी धड़कनों की, और लिख गए वो वीर भी एक वंदना अपनी शहादत से। और ऐसी ही एक वीर जिसे हम सब ने सबसे कम उम्र का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जाना, उनका नाम था बाजी राउत। कुछ योद्धा कलम से लड़ गए, कुछ योद्धा शस्त्रों से, और हमारा यह 12 वर्ष का वीर योद्धा लड़ा तो लड़ा केवल साहस से। 12 साल का ये योद्धा बालक बाजी राउत कोई योद्धा नहीं था। ओडिशा के छोटे से गांव में 12 साल का एक छोटा बालक रात में साफा बांधता और रात के अंधेरे में बिना मशाल के चल पड़ता है। शायद उसने सोचा होगा, अगर दूसरों के लिए मार्ग प्रशस्त करना है तो मैं अंधेरे में चलने के लिए सदैव तैयार हूँ। बाजी बस एक नाविक था। उस रात भारत के स्वतंत्रता संग्राम में वह सबसे कम उम्र का शहीद बनने वाला था। बाजी राउत प्रजामंडल सेना से जुड़ चुका था, और यह एक ऐसा संगठन था जिसमें बच्चे संदेशवाहक बनकर क्रांति की आग फैलाते थे। लेकिन बाजी की नियति में कुछ और ही लिखा था। रात के अंधेरे में अंग्रेजों का काफिला ब्राह्मणी नदी की ओर बढ़ रहा था। बाजी जानता था उन्हें उनकी नाव चाहिए, लेकिन वह अपने संगठन से दगा नहीं करना चाहता था। उनकी मंशा थी संगठन के नायक को पकड़ना। आदेश मिला उसे, हमें नदी पार ले चलो। बाजी का जवाब था, नहीं, बिल्कुल नहीं। और बाजी ने अपना संदेश शंख बजाकर अपने साथियों तक पहुंचा दिया, और वहीं इसी बीच सैनिक ने बंदूक की बट से उसके माथे पर प्रहार कर दिया। खून से लथपथ बाजी तब भी शंख बजाता रहा, और एक और सैनिक ने चीर दी उसके सीने पर एक गोली, और भारत ने अपने सबसे कम उम्र का स्वतंत्रता सेनानी खो दिया, और उस 12 साल के शहीद ने भी लिख दी वंदना अपनी शहादत से।

उस 12 साल के शहीद बाजी राउत की शहादत को हम नमन करते हैं और इसी के साथ आज का कार्यक्रम वंदे मातरम गौरव गान की 150वीं सदी संपन्न हुआ।

0: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। विश्व दर्पण अब आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा।

0: भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन के चौथे दौर का आज सिंगापुर में आयोजन। भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधारों की आवश्यकता पर बल, कहा परिषद की संरचना और निर्णय लेने की प्रक्रिया वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए। बांग्लादेश में नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज मतदान होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा। ईरान की मदद करने वाले देशों को दी आर्थिक दुष्परिणाम भुगतने की धमकी। और FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एम्स्टर्डम में इंग्लैंड के साथ खेलेगी। अब समाचार विस्तार से। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का चौथा संस्करण आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। ये सम्मेलन नए और उभरते क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। एक रिपोर्ट।
1: सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी। इसके बाद दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई। इन बैठकों में उन्नत विनिर्माण, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा, कौशल विकास तथा स्थिरता पर हुई चर्चाओं से भारत सिंगापुर व्यापक रणनीतिक साझेदारी की रूपरेखा तैयार हुई। इसे पिछले वर्ष सितंबर में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की भारत यात्रा के दौरान लागू किया गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये सम्मेलन दोनों पक्षों के बीच जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी सहयोग को और मजबूत करने के अवसर प्रदान करेगा। इसके साथ ही भारत सिंगापुर व्यापारिक गोलमेज सम्मेलन का चौथा संस्करण भी आयोजित किया जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सिंगापुर में प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। बैठक में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी उपस्थित थे। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी रोडमैप के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की और आर्थिक सहयोग, डिजिटलीकरण, संपर्क, कौशल विकास और स्थिरता सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया है। भारत ने कहा है कि परिषद की संरचना और निर्णय लेने की प्रक्रिया वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए और इसमें विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। परिषद में कार्यप्रणाली पर चर्चा में संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि योजना पटेल ने कहा कि सुधारों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। उन्होंने स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की सदस्यता में विस्तार और

0: और ग्लोबल साउथ के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की भारत की मांग दोहराई।
1: India's position on reforms of the security. सुरक्षा परिषद में सुधारों पर भारत का रुख स्पष्ट रूप से ज्ञात है। हम ग्लोबल साउथ के लिए अधिक प्रतिनिधित्व के साथ दोनों श्रेणियों में विस्तार चाहते हैं। इसे केवल स्पष्ट रूप से परिभाषित बिंदुओं और वार्ताओं के माध्यम से ही हासिल किया जा सकता है। With clearly defined milestones and timelines.
0: भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है और कहा है कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गोर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया और कहा कि दोनों पक्षों ने भविष्य में आगे बढ़ने के लिए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान की है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में मतदान होगा। सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद से होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। राष्ट्रपति चुनाव अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के करीबी सहयोगी मोहम्मद शहाबुद्दीन के पिछले महीने स्वास्थ्य कारणों से पहले ही इस्तीफा देने के कारण हो रहा है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए आर्थिक युद्ध की घोषणा की है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने के कई अवसर दिए गए लेकिन वो विफल रहा। एक रिपोर्ट।
2: ट्रंप ने ईरान की मदद करने वाले किसी भी देश को आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कोई भी देश जो अपने वित्तीय संस्थानों, व्यवसायों, हवाई अड्डों या सरकारी एजेंसियों को ईरान को समर्थन देने की अनुमति देता है उसे भी भारी आर्थिक परिणामों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही अपनी चेतावनी को दोहराया कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि बातचीत भविष्य में फिर से शुरू हो सकती है लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि तेहरान को पहले समझौता करने के लिए तैयार होना होगा। इस बीच ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगीर गालिबफ ने कहा कि ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य को तब तक नहीं खोलेगा जब तक अमेरिका 14 सूत्री ज्ञापन के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं कर लेता। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर बनाए हुए है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमेरिका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिल्ली में होने वाले आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने सभी मोर्चों पर निर्बाध बहु एजेंसी समन्वय और समयबद्ध क्रियान्वयन की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत के शाश्वत आदर्श अतिथि देवो भव से प्रेरित होकर दिल्ली सभी अतिथि प्रतिनिधियों का व्यवस्थित, सुरक्षित और हार्दिक स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंध और मजबूत होंगे, रणनीतिक भरोसा बढ़ेगा, सहयोग भी बढ़ेगा और साथ ही साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आर्मेनिया की अपनी 2 दिन की यात्रा पूरी कर ली है। यात्रा के दौरान उन्होंने आर्मेनिया के उप रक्षा मंत्री करिन ब्रुटियान और जनरल स्टाफ प्रमुख एडवर्ड अस्ट्रियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश कुमार बल।
3: जी विशाल, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं हॉकी से। FIH विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम का सामना आज इंग्लैंड से होगा। ये मैच एम्स्टलवीन के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। दूसरी ओर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कल अपने अंतिम ग्रुप मैच में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अगले दौर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हरमनप्रीत सिंह और

0: सिंह ने दो दो गोल किए जबकि अभिषेक ने एक गोल दागा। और विशाल अगर बात करें बैडमिंटन की तो BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु का मुकाबला चीन की खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जापान की जोड़ी से होगा। अगर बात की जाए मिक्स्ड डबल्स में तो ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो चीन की जोड़ी से खेलेंगे। और अब ले चलते हैं अपने श्रोताओं को क्रिकेट के मैदान की तरफ। तो श्रीलंका के गोल में भारत ने दो मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हराया है। भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। तो विशाल ये थी अब तक की कुछ महत्वपूर्ण खेल खबरें।
1: मुकेश, और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन के चौथे दौर का आज सिंगापुर में आयोजन। भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधारों की आवश्यकता पर बल। बांग्लादेश में नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज मतदान होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा। और FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एम्स्टर्डम में इंग्लैंड के साथ खेलेगी। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। सुबह के 10:20 हुए हैं और श्रोताओं, यह समय होता है कार्यक्रम सारंगा का। आपके फरमाइशी पत्र जो हमें मिलते हैं उन पर आधारित यह गीत, यह कार्यक्रम है। और आप सभी के पत्र हम तक पहुंच ही जाते हैं। आपके पत्रों के रूप में आपका प्रेम हम तक पहुंच जाता है श्रोताओं। तो ऐसा ही आपका एक प्रेम पत्र के रूप में हमारे पास पहुंचा है सारंगा कार्यक्रम के लिए। कालका से शुभ चंद्र बजाज, चंद्रमोहन, इंद्रमोहन और मिट्टा बजाज। सेक्टर 67 मोहाली पंजाब से TD मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा और प्रतीक। छत्तीसगढ़ से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू का। एक और पत्र जो मेरे हाथ में है वह मुझे मिला है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय का। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय और श्रीमती प्रीति राय। और नवनीत राय ने भी हमें पत्र लिख भेजा है, यह सुनना चाहते हैं हम है राही प्यार के फिल्म का ये गीत।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ें हमेरा ही प्यार के इस फिल्म से थी। गीत समीर का था, संगीत नदीम श्रवण का था। श्रोताओं, अगला पत्र हमें मिला है खामोशी फिल्म के गीत को सुनने के लिए। इस गीत को गाया है कविता कृष्णमूर्ति और श्रद्धा ने। मजरूह का गीत है और संगीत है जतिन ललित का। और इस गीत को सुनने के लिए हमें पत्र लिख भेजा है यंग रेडियो लिसनर्स जवाहरगंज जबलपुर से जिनेन्द्र जैन, ग्राम लोहेड़ी महोबा उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल, राघवेंद्र, अरविंद, रिया, रेणु, दिव्यांशी, रोनिका एवं रागनी यादव ने। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धा आनंद राय, अभय, परमानंद आर्या, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित ने। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस तपस्या, करिश्मा कामले। इंदौर शिवाश्री धाम से कृष्ण कुमार खरे, पवन, पंकज, अंकिता, शानू खरे, हर्षिता, विराट लड्डू, दीपा और बहादुर।

0: आज तो पार्टी चाहिए,
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: मीडियम वेव पर आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सारंगा। श्रोता, अगली फरमाइश हमें लिख भेजी है आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ा महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर राही, श्रीमती सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत, प्रणीता, अर्जुन और टुकटुक, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश गवाणकर, सुमित और कुमारी ध्वनि। घंटाघर चौक खंडवा से एक और पत्र हमें मिला है जो लिख भेजा है संजय पांचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सनमति ने। जारुन वरुण रोड महाराष्ट्र से बाबा साहेब वाड़ोदे, मीनाक्षी, रजनी, कार्तिक और युवराज। चांदनी चौक गडे पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लकी, विकी नानू, रविंद्र सेन ने। यह सुनना चाहते हैं कन्यादान फिल्म का ये गीत।

बजरंगी भाईजान फिल्म के इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश लिख भेजी है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से। कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा, हादिया आसमा, सालिया, शोएब मुस्तबा, राउफ भाई और शहीद भाई ने।

0: रंगी भाईजान फिल्म के इस गीत को सुनने के लिए हमें और भी पत्र मिले थे। गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर ने सुनना चाहा था इसी गीत को। पाकिजा रोड रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, अलकमा खत्री, अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री। जातुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान इमरान आलम, शबाना आलम, चांदनी नाज। सिराजपुर गणेशपुर से वकील राही, फिरोज आलम, नाज प्रवीण और अर्श बाबू ने इन्होंने बजरंगी भाईजान फिल्म के इस गीत को सुना। और यह गीत था कौसर मुनीर का और संगीत था प्रीतम का।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: मीडियम वेव और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र और यह है कार्यक्रम सारंगा। सारंगा कार्यक्रम में हमें अगली पसंद लिख भेजी है सुंदरखेड़ा राजमाता नगर बुलडारा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति आकांक्षा और आकाश कुमार नरवाड़े ने। जम्भर रून से दुर्गा दास जोशी, गंगाधर गजानन, संजय जोशी, आशीष पृथ्वीराज और साध्वी जोशी और गणेश गवहानकर ने। सपना संगीता रोड इंदौर से हमें पत्र लिख भेजा है लाल फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन, तान्या और लीला फतेह चंदानी ने। बिलहरी बरखेड़ा से संतोष कुमार, काशी तिवारी, सुमेर पटेल, सुदामा सेन, बारेलाल बड़ई, शेख मुनीर और ग्राम पहरुआ से राम कुमार लोधी और संजय पुरी ने। गोवारा जिला छतरपुर से बहादुर चक्रवर्ती, नंदकिशोर चक्रवर्ती, भरत, शीला, जशोदा, आरती और करण चक्रवर्ती ये सुनना चाहते हैं बेटा फिल्म का ये गीत, जिसे आवाज़ें दी हैं अनुराधा पोटवाल और विपिन सचदेवा ने। गीत है समीर का, संगीत है आनंद मिलिंद का।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ आज का कार्यक्रम सारंगा यहीं संपन्न होता है। आप हमें अपने पत्र जरूर लिख भेजिए। हमारा पता है आकाशवाणी कटंगा, पोस्ट बॉक्स नंबर 14, जबलपुर, मध्य प्रदेश। कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। अब आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे, जिसमें आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: गृहमंत्री अमित शाह 3 दिन के दौरे पर आज पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। वे उत्तर बंगाल में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे और प्रशासनिक बैठकों में शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सिंगापुर में प्रधानमंत्री लॉरेंस वोक से मुलाकात की। इस बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क में 550 प्रशिक्षुओं के उन्मुखीकरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। और एंटीगा सिंगापुर इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन में मोहित जागलान और लक्षिता जागलान की जोड़ी वॉकओवर मिलने के बाद मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में होगा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी, गीत हमारे।
2: नमस्कार, फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो साथी नीरजा। कार्यक्रम में आज का विषय है भोजन की बर्बादी कैसे रोकें। इस विषय पर हम जानेंगे आपके विचार, साथ ही आप सुनेंगे हमारी पसंद के सुमधुर गीत। तो आइए बिना देर किए जल्दी से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। हेलो।
3: हेलो
2: जी, नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
3: हाँ, मैं समाधान नाम जो आइनर से बोल रहा हूँ, तहसील कुलपहाड़, जिला महोबा।
2: कैसे हैं आप, क्या हाल चाल है?
3: हाँ दीदी, सब बढ़िया है, हाल चाल ठीक है, सब लोग अच्छे हैं।
2: तो आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कि भोजन की बर्बादी कैसे रोकें।
3: उसको जो है सीमित करना चाहिए कि जी, हम लोग कितना आदमी है, कितने हिसाब से हमको काम करना चाहिए। तो उसमें बर्बादी वाला काम नहीं होना चाहिए।
2: बिल्कुल। आपके घर में खाना किस तरह से बनाया जाता है, कितनी मात्रा में, क्या सोचकर बनाया जाता है कि इतने लोग खाएंगे खाना?
3: हम लोग इस समय अभी 3 लोग हैं, तो अपने तीनों लोग के हिसाब से अपना आराम से अपना जितना उनको खाना है उतना उस हिसाब से खाना बना लेते हैं।
2: अच्छा।
3: नहीं होता है क्योंकि अपने पास में जानवर भी नहीं है।
2: अच्छा।
3: भाई बच जा तो उसको खिला दें, जो है सीमित ही खाना बनाते हैं। कम पड़ जाएगा तो फिर अपना दोबारा अपना थोड़ा बहुत बना लेते हैं।
2: पशु होते हैं, जानवर होते हैं, तो वहाँ तो खाना इस्तेमाल हो जाता है उन्हें खिलाने के लिए। लेकिन आपके यहाँ जानवर नहीं है तो आप उसका कुछ दूसरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं ना?
3: हाँ, तो उसको हम अपने हिसाब से अपना जो है बनाते हैं।
2: और जैसे कभी कभार अगर खाना बच जाता है तो उसका क्या करते हैं आप?
3: तो जैसे जो जानवर निकलते हैं उनको खिला देते हैं।
2: यानी रास्ते से अगर कोई जानवर निकल रहा है, दिखाई देता है, तो आप खिला देते हैं, तो उसका भी भला हो जाता है और आपको भी अच्छा लगता है, खुशी मिलती है।
3: मेरे घर में जो है मेरी लड़की है रोहिणी नामदेव, तो उनका भी नाम लेना चाहता हूँ मैं।
2: बिल्कुल लीजिए।
3: हमारी बेटा भी है पुष्पेंद्र नामदेव और शशि नामदेव बहू है
2: जी।
3: हाँ, ये लोग दिल्ली में काम करते हैं, तो दिल्ली से आए थे यहाँ पे गाँव में
2: जी।
3: तो दीदी में उनका भी नाम
2: ठीक है
3: बताना चाहता हूँ आपको
2: जी। और बताइए मौसम के क्या हाल हैं आपके यहाँ?
3: हाँ, सब बड़ी अच्छे हैं। मौसम जो है पानी जगह पानी बरस रहा है अभी इस समय, अच्छा पानी बरस रहा है, कली से पानी गिर रहा है।
2: अच्छा।
3: और अभी भी पानी बरसा हो रही है।
2: ठीक है। क्षमा।

0: हाँ नमस्कार दीदी
1: नमस्कार
0: जी, मैं ग्रामा पोस्ट गोना कुसमाड़ थाना सूजना तहसील महरौनी जिला ललितपुर झांसी बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से आपका अपना रेडियो में तरफ

0: दीपक कुमार नामदेव बात कर रहा है दीदी।
1: दीपक कुमार नामदेव
0: जी जी
1: कैसे हैं आप, क्या हाल चाल है?
0: बस दीदी बढ़िया है, सिलाई मशीन चला रहे थे, साथ में आज बारिश भी तेजी से हो रही है तो बारिश का आनंद ले रहे थे, आपका कॉल भी लगा रहे थे।
1: अच्छा,
0: और फिर इसके बाद 11 बजे से आपके रेडियो का भी आनंद लेंगे।
1: ठीक है, तो दीपक जी आज कार्यक्रम का विषय है भोजन की बर्बादी कैसे रोकें।
0: जी दीदी, बफर सिस्टम कहलाता है। सबसे ज्यादा बर्बादी तो उसमें होती है क्योंकि लोगों को उसमें कम से कम 10-20 प्रकार के आइटम मिल जाते हैं और खाना है थोड़ा थोड़ा और ले लेते हैं ज्यादा। इसके बाद उन्होंने थोड़ा खाया और वो उसमें कचरा दानी में सरका दी थाली अपनी।
1: यानी उतना ही खाना लो जितना आपको खाना है।
0: जी जी, सबसे पहले हमारी विनम्र निवेदन है सभी श्रोताओं से कि जितना खाना है उतना ही थाली में खाना लीजिए क्योंकि बर्बाद ना हो सके, क्योंकि आदमी की इच्छाएं तो अनेक होती हैं लेकिन आप आज पेट में बने या ना बने लेकिन आदमी ले लेते हैं कि हमें ये खाना है वो खाना है, फिर एक दो कौर खा और फेंक दिया, क्योंकि अन्नदाता हमारा एक किसान है। अगर किसान इसका उपयोग गलत करे, जैसे हमारे के देहातों के सिस्टम तो ये है, जो देहात होती है उसमें तो नहीं फेंकता है लेकिन सिटी लेवल में फेंकता है, क्योंकि ये बफर सिस्टम शादी वगैरह में हो चुके हैं तो थोड़ा छोटा सा फंक्शन करना है और बड़ा फंक्शन कर लिया। और इस समय लोग देखो बीमारी से जूझ चुके हैं क्योंकि कोई जैसे है तो ब्लड की बीमारी हो जाती है किसी के लिए, किसी कुछ बीमारी, इसलिए लोग तेल वगैरह मिठाई वगैरह तो कम खाते ही हैं और बनवा अधिक देते हैं, इसलिए ये भी बर्बाद हो जाता है।
1: यानी खाना उतना ही बनाओ जितनी ज़रूरत हो और उतना ही प्लेट में लो जितना खाना है, उससे ज़्यादा नहीं, प्लेट नहीं भरनी है।
0: भोजन से एक रोटी कम खाओ, जैसे आपको 4 रोटियों की भूख लगी तो 3 या 3.5 रोटी खाओ, जिससे स्वस्थ शरीर भी रहता है और खाना भी नहीं फेंकता है।
1: यानी जितनी भूख लगी हो उसे थोड़ा सा कम ही खाना खाओ, है ना?
0: जी जी जी, जिससे स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। जब जैसे हमको खाना 3 रोटी और खाली 4 वो एक एक्स्ट्रा खाली, तो बीमार नहीं होंगे तो बीमार हो जाएंगे,
1: ओवर ईटिंग हो जाती है। और दीपक जी, जैसे आपके घर में खाना बनता है तो कभी कभार अगर खाना बच जाता है तो उस खाने का उपयोग आप किस तरह से करते हैं?
0: देखो ऐसा है कि खाना हम लोग बनवाते हैं 3-4 टाइम है तो गर्म ही बनवाते हैं, अगर जैसे बच जाता है तो जो अपनी गौ माता है उसके उपयोग में ले आते हैं।
1: यानी पशु पक्षी जो होते हैं उन्हें हम खाना दे सकते हैं जो खाना बचता है। और कुछ खाने से नई डिश बनाई जा सकती है, जैसे कि मान लो रोटी बच गई रात को तो उससे कुछ नया बनाया जा सकता है?
0: हाँ हाँ, जैसे रोटी बच गई आप लोगों की, हम लोगों की, तो उसको बढ़िया उसको फ्लाई करके और उसको बढ़िया तल के, मतलब जिस प्रकार अपन पोहा बनाते हैं बिजी वगैरह डाल के,
1: हाँ,
0: तो पोहा भी बन जाता है रोटी का। अगर जैसे बच गए तो उसको बिल्कुल बिल्कुल नानी फिलाई कर ली बिल्कुल महीन,
1: हाँ,
0: तो उसको लिया आपने और गैस सिलेंडर पर ले जाके बढ़िया मिर्ची और प्याज वगैरह से तल के बढ़िया उसमें बिजी वगैरह डाल दिए, काजू किशमिश डाल के बढ़िया पोहा भी बन जाता है, उसका भी उपयोग कर लेते हैं।
1: दीपक जी आपने तो एक बहुत अच्छी डिश बता दी, है ना?
0: जी जी,
1: यानी पोहे बनाए जा सकते हैं जो रात को रोटी बचती है तो फेंकने के बजाय उसका एक अच्छा इस्तेमाल हो सकता है और हेल्दी भी होती है इस तरह की चीजें।
0: जी जी जी जी जी। और आज हमारी बात किस दीदी से हो रही है?
1: मैं आपकी रेडियो साथी नीरजा बात कर रही हूँ।
0: जी जी जी, काफी सुंदर बात की आपने, काफी अच्छा लगा खुशनुमा होकर।
1: ठीक है दीपक जी, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे, धन्यवाद
0: जी। नमस्कार दीदी।
1: नमस्कार दीपक जी।
0: एक दो श्रोताओं के नाम ले सकते हैं?
1: बिल्कुल लीजिए
0: जी। हमारे भोरदा जिला ललितपुर से हैं बालचंद चड़ार जी और चंद्रेश गोहर जी, सागर मध्य प्रदेश से जयपाल यादव जी हैं, लोहेड़ी मध्य प्रदेश से दीपक सिंह गुर्जर हैं, और कैलाश नारायण नामदेव जी हैं गोना कुसमाड़ से, लखनलाल नामदेव जी हैं। जी दीदी
1: ठीक है, बिल्कुल
0: जी। नमस्कार दीदी।
1: नमस्कार।

0: जी नमस्कार।
1: हाँ दीदी नमस्ते। बिल्कुल
0: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे,
1: दीदी बिल्कुल सही जगह लगा है आकाशवाणी भोपाल।
0: नाम जानना चाहेंगे आपका।
1: हम आपके नियमित श्रोता भागचंद्र साहू जी, राजेंद्र नगर गंज वासोदा जिला दिल्ली का।
0: तो भागचंद्र जी,
1: बिल्कुल
0: आज हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम में कि भोजन की बर्बादी कैसे रोकें। जो अन्न होता है, खाना खाते
1: हाँ
0: हैं, वो क्या
1: बिल्कुल
0: होता है,
1: बिल्कुल।
0: ज़रूरत से ज़्यादा बना लेते हैं और वो फेंकना पड़ जाता है।
1: जैसे जितना अपन खाना है उतना खाना अपन ले, हैं? क्योंकि बर्बाद ऐसा है कि अपन बेफजूल में ज्यादा खाना ले लेते हैं, फालतू फेंक जाता है। ऐसा ना करें हमारे श्रोता बंधु, बिल्कुल कोई ना करे, जितना खाने की योग्य हो उतना ही खाना ले। आजकल शादियों में देखने आ रहा है जो बफर का सिस्टम रख दिया है, खा रहे हैं कुछ फेंक रहे हैं, ऐसा ना करें।
0: शादी पार्टी में जाते हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा प्लेट में ले लेते हैं, तो क्या तरीका, क्या उपाय होना चाहिए?
1: उसका ऐसा है देखो, जैसे ये खाना बच रहा है, जैसे पर्याप्त खाना आपने ले लिया है, तो वो खाना इधर उधर ना फेंके, एक डस्टबिन में डालें। उसको क्या है, जैसे अपन कहीं, वैसे अपन गौ माता है उसको खिला सकते हैं।
0: और अलग से भी खाना बचा सकते हैं, अगर बच जाता है तो जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जैसे रोटी बैंक वगैरह होते हैं जहाँ पर
1: हाँ
0: ऐसे लोग जिन्हें ज़रूरत होती है खाने के, लेकिन नहीं मिल पाता, उनके लिए रख सकते हैं खाना, है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल दीदी, सही बात है जी, सही बात है।
0: और भागचंद्र जी, जैसे परिवार में जब खाना बनता है तो उसकी मात्रा किस तरह से तय करते हैं आप?
1: नहीं वो तो ऐसा है, जैसे खाना अपन खा रहे हैं तो भाई उतना पर्याप्त में उतना खाना ले जितना अपने खाना है। और खाना अगर शाम के बचा है, अगर थोड़ा बहुत बचा है तो उसको उपयोग में ले लें।
0: और अगर कभी घर में कुछ रोटियां वगैरह बच जाती हैं तो आप उनसे कुछ नया बनाते हैं, कुछ नई डिश बनाते हैं, या कोई भी दाल
1: बिल्कुल
0: वगैरह
1: बिल्कुल,
0: बच जाए,
1: पोहा बना ले बढ़िया, उसको सेक के बढ़िया, एक नंबर
0: यानी
1: बनेगा
0: एक नई
1: आपका।
0: डिश बन सकती है ना?
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बन क्यों नहीं बन सकता, उससे बन सकता है।
0: बिल्कुल। बताइए भागचंद्र जी, आपके यहाँ मौसम के क्या हाल हैं?
1: मौसम तो दीदी गंज वासुदा में फिलहाल

0: अभी बदल हो रहे हैं, संभावना है पानी की,
1: अच्छा
0: अब गिर सकता है, कल शाम तक गिर सकता है।
1: अच्छा चलिए भागचंद्र जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप
0: दीदी
1: कार्यक्रम से
0: आपका नाम
1: जुड़े।
0: जानना चाहते थे हम।
1: मैं आपकी रेडियो साथी नीरजा हूँ।
0: दीदी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, हमें बहुत अच्छा लगा।
1: मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा
0: हाँ दीदी, हम तो आपके नींव में सोता है, पत्र भी डालते रहते हैं आपकी
1: जी।
0: फरमाइश वगैरह में।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप कार्यक्रम से जुड़ते हैं।
0: ठीक है दीदी, नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो, नमस्कार।
1: जी नमस्कार। कहाँ? आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं।
0: बिल्कुल, आकाशवाणी भोपाल।
1: जी, गोपाल बोल रहे थे दमोह से, गोपाल ठाकुर, दमोह बजरिया वार्ड 6। जी,
0: कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है?
1: हम ठीक हैं और ईश्वर से कृपा करते हैं कि आप लोग, आपका पूरा स्टाफ अच्छा रहे और खुश रहे। कुछ
0: जी,
1: दिन
0: धन्यवाद।
1: से आज का क्या कैसा है रिकॉर्डिंग का?
0: आज बात कर रहे हैं कार्यक्रम में कि भोजन की बर्बादी कैसे रोकें।
1: भोजन की बर्बादी कैसे रोकें? जी,
0: कैसे रोकें?
1: भोजन की बर्बादी तो बहुत ज्यादा है, बफर के सिस्टम में बहुत ज्यादा होती है। तो अपन को इतना ध्यान रखना चाहिए कि भाई, हमको जितना खाना है उतना हम अपनी प्लेट में निकालें, जितनी फिर जरूरत पड़े तो दोबारा फिर से ले लें।
0: तो घर में भी जो अन्न बर्बाद होता है, जरूरत से ज्यादा बन जाता है, तब क्या करना चाहिए?
1: 4 व्यक्ति है या 10 व्यक्ति है या 2 व्यक्ति है, तो बनाने वाले को इतना नॉलेज रहना चाहिए कि हमको कितना हमेशा लगता है उतना उनको बनाना चाहिए।
0: यानी अगर 4 लोग हैं घर में, तो 4 लोग जितना खाते हैं उतना ही बनाओ खाना, एक सही मात्रा में। और अगर खाना बच जाता है तो फिर क्या करना चाहिए?
1: जैसे खाना बच जाता है तो यदि कोई अपना वाला आ गया तो खाना है तो उसको खिला दूं, यदि कोई खाने वाला नहीं है तो अपनी गाय है या कुत्ते वगैरह हैं उनको खिला दो।
0: बिल्कुल, खाना फेंको मत, किसी को दे दो,
1: हाँ,
0: जरूरतमंद को दे दो खाना।
1: क्योंकि दीदी देखो, अपन खाना ही के लिए अपन मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं, तो दीदी खाने के लिए तो अपन करते हैं, और खाने को अपन उसकी इज्जत नहीं करेंगे, दैनिक
0: बिल्कुल,
1: सम्मान नहीं करेंगे, तो
0: खाने का सम्मान
1: कभी
0: करना
1: ना कभी
0: चाहिए।
1: फिर अपन को भूखा मरना पड़ेगा।
0: हाँ, और जो बच्चे होते हैं घर में, उनको शुरू से ही भोजन का महत्व कैसे बताएं कि ये खाना जो है इसे बर्बाद नहीं करना है?
1: समझाना चाहिए और उनको, भैया जितना तुमको चाहिए बेटा उतना लो, अपने हाथ
0: हाँ,
1: से निकाल के दो उनको। जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको अपन अपने हाथ से निकाल के थाली में या प्लेट में जो मैम भी अपन खिला रहे हैं उतना दो जितना उनको खाना है, और उनको जरूरत पड़ जाए तो उनको फिर से दे दे, दोबारा दे दे। लेकिन दीदी, मैं आपका आकाशवाणी भोपाल सुनता हूँ, सुबह 6 बजे से भक्ति गीत आते हैं, फिर रामायण आती है, उसके बाद
0: हाँ
1: फिर गाने आते हैं, समाचार आते हैं।
0: जी,
1: दीदी, रात के 10 बजे तक सुनता हूँ मैं मोबाइल से। जी
0: यानी आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है रेडियो सुनना।
1: दीदी, मैं बहुत छोटा था, जब 10-12 साल का था तो ट्रांजिस्टर चलते थे बाजे,
0: हाँ
1: तो मैं जैसे पहले तो पेटी खवास नहीं टांग लेते थे कांखरी में,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: ऐसे कांखरी में दबा के कहीं हार जा रहे हैं, खेतों में जा रहे हैं या गांव में घूम रहे हैं, मतलब लेके घूमते थे और अच्छे गाना बजाना सुन रहे हैं और
0: यानी
1: जी रहे।
0: बहुत पुराना याराना है आपका आकाशवाणी के साथ,
1: जी
0: और आज भी वो दोस्ती बनी हुई है।
1: हाँ दीदी, और जब तक जीवन रहे तब तक रहे,
0: वो
1: क्योंकि दीदी
0: हाँ
1: एक से एक अच्छी चीजें आपके यहाँ से सुनने को, समझने को, अच्छी ज्ञान की बातें भी मिलती है, समझदारी की भी बातें भी मिलती है, प्रकार का और अपना मनोरंजन भी होता है दीदी।
0: और हमें भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है।
1: जी जी जी
0: ठीक है गोपाल जी, आप कार्यक्रम से जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार दीदी, नमस्कार।

0: हेलो,
1: हेलो
0: नमस्कार।
1: जी मैडम। मंजिला जिला स्वागत है, भिलवंडा से मैं दशरथ अहरवाल बात कर रहा हूँ मैडम।
0: कैसे हैं आप?
1: बढ़िया मैडम,
0: क्या हाल चाल है मौसम के वहाँ?
1: रिमझिम बारिश हो रही है मैडम अभी यहाँ पे।
0: आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कि भोजन की बर्बादी कैसे रोकें।
1: जो अपन खाना बनाते हैं तो उसको बराबर बनाना चाहिए, फिक्स ज्यादा नहीं बनाना चाहिए, तब वो वेस्ट हो जाएगा। बच जाता है मैडम तो फिर वो जो खराब हो जाए तो उसको गाय को खिला देते हैं।
0: और जैसे शादी में जाते हैं वहाँ भी तो खाने की बर्बादी होती है, उस बारे
1: जी
0: में क्या
1: मैडम,
0: कहना चाहेंगे?
1: मैडम वो क्या है, जितना अपन खा सकें उतना ही ले, बर्बाद ना करें खाना ना। कोई कोई क्या करते हैं, ज्यादा ले लेते हैं, उतना खुपता तो है नहीं है, तो वो क्या बर्बाद हो जाता है, फेंक देते हैं अपन डस्टबिन
0: यानी
1: में।
0: खाना खिलता नहीं है लेकिन हम खाना बहुत ज़्यादा ले लेते हैं प्लेट में।
1: जी जी जी
0: घर में अगर खाना बच जाता है उससे कोई

0: नई रेसिपी डिश बनाई जा सकती है?
1: बनाई जा सकती है, जैसे अपने चावल बच जाते हैं तो उनको अपन फ्राई कर सकते हैं।
0: चावल को फ्राई कर सकते हैं जो बचे हुए हैं।
1: वैसे चावल हो जाते हैं उनको फ्राई करके भी खा सकते हैं।
0: ठीक है दशरथ जी, अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद।

0: हेलो, नमस्कार
1: हाँ नमस्कार दीदी। दीदी
0: जी।
1: मैं ग्राम चिताहारी तहसील नरवर जिला शिवपुरी से आपका भाई नियमित श्रोता प्रमोद शर्मा बात कर रहा था। दीदी
0: नमस्कार प्रमोद जी, कैसे हैं आप?
1: दीदी मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं दीदी? दीदी
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ। क्या हाल है मौसम के आपके यहाँ?
1: यहाँ पर तो अभी धूप निकली हुई है, बारिश नहीं हो रही है अभी,
0: बारिश नहीं हो रही?
1: बिल्कुल भी बारिश नहीं है दीदी।
0: बाकी हर जगह तो काफी ज्यादा बारिश हो रही है।
1: हाँ
0: उम्मीद करते हैं प्रमोद जी कि आपके यहाँ जल्दी से बारिश हो।
1: थैंक यू दीदी। दीदी
0: और
1: आज फोन करें गीत सुने कार्यक्रम है क्या?
0: नहीं, आज है बात आपके गीत हमारे।
1: हाँ दीदी तो क्या प्रश्न है आज का?
0: बिल्कुल, हमारे कार्यक्रम में जो विषय है आज का

0: वो है भोजन की बर्बादी कैसे रोकें।
1: हाँ दीदी, ये बहुत अच्छी बात है कि कैसे रोकें, क्योंकि भोजन पहली बात तो उतना ही बनाना चाहिए जितना अपन प्रयोग कर सकें, और दूसरी बात अगर खाना बच जाता है तो ये गरीबों में बांट दे, या मतलब ऐसी जगह गौ माता को दे दें कि वेस्ट ना जाए। दीदी
0: यानी खाना किसी को दे दो लेकिन फेंको नहीं।
1: फेंको नहीं दीदी, क्योंकि फेंकेंगे तो वो खाना वेस्ट होगा, और खाना वेस्ट होगा तो वो ना हमारे काम का है ना किसी और के काम का है, इसलिए बच जाता है तो उसे दीदी दान कर दो, किसी को दे दो तो उसके खाएगा तो वो धन्यवाद तो करेगा दीदी।
0: हाँ, कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जो बचे हुए खाने को हम अगर उन्हें देते हैं तो वो ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाती हैं, रोटी बैंक वगैरह होते हैं।
1: हाँ दीदी सही बात है ये।
0: और शादी पार्टी में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर खाने की बर्बादी, अन्न की बर्बादी कैसे रोकी जा सकती है।
1: वहाँ उतना ही लो ना जितना अपन खा सकें, दूसरों को सलाह भी देना चाहिए तो ये खाना वेस्ट मत करो, उतना लो जितना आप खा सको जरूरत हो।
0: प्रमोद जी, आपके घर में खाने की क्या व्यवस्था है, भोजन की किस तरह से, किस मात्रा में आप बनाते हैं, क्या सोच कर कि इतना खाना हमें उपयोग में आएगा।
1: उदाहरण के तौर पर कह रहा हूँ मैं कि जैसे आप चार रोटी खाते हैं तो चार रोटी का ही आटा लगाएं, और अगर तुम 12 रोटी खाते हैं तो 12 ही का आटा लगाएं, क्योंकि ज्यादा बना लेंगे तो वो खाना वेस्ट होगा, वेस्ट होगा तो वो फेंकेगा।
0: बिल्कुल,
1: किसी का ना तुम्हारे मतलब का है, ना हमारे का है, ना और किसी का है। जितना खाना आप बनाओगे उतना वेस्ट होगा तो वो फेंकेगा, फेंकेगा तो ना अन्न का निराकरण होगा दीदी।
0: अन्न का सम्मान करना चाहिए, अपमान नहीं।
1: हाँ सम्मान करना चाहिए, उतना ही खाना बनाते हैं दीदी जितना।
0: प्रमोद
1: और
0: जी,
1: जैसे कि
0: घर
1: अगर
0: में
1: शाम का खाना बनाते हैं और बच जाता है
0: हाँ
1: तो हम वेस्ट नहीं करते हैं।
0: प्रमोद जी, जो घर में छोटे बच्चे होते हैं उन्हें
1: हाँ दीदी,
0: खाने का महत्व कैसे समझाएं।
1: उनको ऐसे ही समझाना चाहिए कि बेटा इतना लो, ऐसे करो, इतना खाओ, उतना ही खवाना चाहिए दीदी उनको।
0: यानी उन्हें बताओ कि ये मेहनत की कमाई है, इसे
1: हाँ
0: फेंकना
1: दीदी,
0: नहीं है,
1: हाँ
0: फेंको मत खाने को, उसका आदर करो, सम्मान करो।
1: हाँ सम्मान करो दीदी।
0: बिल्कुल प्रमोद जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप कार्यक्रम से जुड़े, धन्यवाद।
1: धन्यवाद दीदी। आपका नाम क्या है दीदी?
0: मैं आपकी रेडियो साथी नीरजा बात कर रही हूँ।
1: थैंक यू दीदी, आज पहली बार बात हो रही है दीदी।
0: अच्छा,
1: हाँ दीदी आपसे,
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके प्रमोद
1: और
0: जी।
1: दीदी आपको और सभी आकाशवाणी परिवार को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, और सभी श्रोता भाई बहनों को।
0: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रमोद जी।
1: थैंक यू दीदी,
0: चलिए, नमस्कार।
1: नमस्कार दीदी।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: नाम जानना चाहेंगे आपका?
1: हाँ, नाम मेरा है गोविंद सह चंदेल
0: गोविंद सह चंदेल,
1: जी,
0: कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: दमोह एमपी
0: जी गोविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। कैसे
1: जी।
0: हैं आप? क्या हाल चाल हैं आपके?
1: बहुत बढ़िया है बस। और आप लोगों के क्या हाल चाल हैं?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज कार्यक्रम में हम आपको विषय दे रहे हैं कि भोजन की बर्बादी कैसे रोकें।
1: जी,
0: बताइए, आप क्या जानते हैं इस बारे में?
1: इस बारे में ये है मैडम कि खाना उतना लिमिट से लेना चाहिए कि मतलब थाली में खाना ज्यादा बचना ही नहीं चाहिए और लिमिट से खाना लेना चाहिए कि जितना खा सकें तो खाना बर्बाद होगा नहीं।
0: और जैसे शादी में जाते हैं तो वहां भी खाने की काफी ज्यादा बर्बादी होती है।
1: हाँ, वो तो बहुत ज्यादा होती है मैडम, ये बर्बादी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अपन लोग तो ऐसा है कि चलो ठीक है चल जाता है, लेकिन जो गरीब लोग हैं जो खाने के लिए बेचारे तरसते हैं या कितनी कितना वो करके इसके बाद खाना उनको मिल पाता और शादी में कितना बर्बादी करते हैं, तो उसमें भी खाना बफर सिस्टम से रहता है, तो उसमें खाना लिमिट से उतना ही लेना चाहिए जितना कि आप खा सकें। चाहे भलाई एक बार ले लो, दो दो बार ले लो, तीन बार ले लो, ज्यादा लोग हो तो फिर बचेगा तो वो तो फेंकेगा ही, इसलिए खाना खाने की लिमिट से लेना चाहिए और बर्बादी नहीं करना चाहिए।
0: और बताइए गोविंद जी, आपके घर में जब खाना कभी बच जाता है, कभी कभी बच ही जाता है, ऐसा होता है, तब आप क्या करते हैं उस खाने का?
1: देख।

0: बताता हूँ बच्चों को कि हमेशा लिमिट, बस लिमिट में खाना लें कि बर्बाद ना हो, बचे ना। और बाकी है कि यदि मान लो खाना बच भी जाता है तो उसको भाई दो चार घंटे बाद यदि बच्चे फिर रिपीट मांगते हैं घर पे, तो वो खाना खा लेना चाहिए। कोई उससे वो नहीं है कि खाना नहीं खा सकते।
1: बिल्कुल गोविंद जी,
0: मैं तो मैडम रेडियो का बहुत शौकीन हूँ।
1: अच्छा,
0: बचपन से ही।
1: अच्छा अच्छा।
0: और हमको तो टेलीविजन से अच्छा मोबाइल लगता है, ये टेलीविजन से अच्छा रेडियो लगता है।
1: आप बचपन से सुनते हैं।
0: अपना ये अपना रेडियो चालू कर दो, अपना कोई भी काम करना, लिखा-पढ़ी करना, कुछ करना, पेपर भी पढ़ना या कुछ भी करना, तो अपना करते रहते हैं और अपना मनोरंजन होता रहता है। ज्ञानवर्धक चीजें भी आप लोग देते रहते, बीच बीच में समाचार भी आते हैं, न्यूज आती है, हर चीज रेडियो पे मिलती है। मेरे को रेडियो तो बहुत ही पसंद है मैडम
1: जी। बहुत अच्छा लगा आपके विचार जानकर कि आप बहुत पसंद करते हैं आकाशवाणी को। गोविंद जी,
0: जी तो हाँ, आकाशवाणी को बहुत पसंद करते और शुरू से बचपन से ही रेडियो बहुत बहुत सुना है मैडम हम लोग ने।
1: अच्छा।
0: बहुत, और आज भी मैं पसंद करता हूँ रेडियो को, क्योंकि अभी अभी भी हमारा देखिए रेडियो चल ही रहा है।
1: अच्छा
0: जी हाँ। लेकिन मैडम लगता नहीं, पहली बार मेरा फोन लगा, मेरे को बहुत खुशी हो रही है बात करके।
1: मुझे भी बहुत अच्छा लगा।
0: ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
1: नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी, नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है। कौन बात कर रहे हैं?
1: हम सीहोर जिले से ऋतिक यादव बात कर रहे हैं।
0: कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है?
1: ठीक है मैडम।
0: आज कार्यक्रम का विषय है भोजन की बर्बादी कैसे रोकें।
1: उसे रोकने के लिए मैडम, जैसे कि जरूरत से ज्यादा लेना नहीं चाहिए, जिससे कि वो फिट सके। इतना ही लेना चाहिए जितना अपने को आवश्यकता हो।
0: आप जब शादी में जाते हैं,
1: शादी
0: वाह,
1: में जाते हैं तो जैसे अपन बफर में जाते हैं तो वहाँ पे लोग 50% खाना फेंक देते हैं और बाकी आधा खाते हैं, इसलिए उसे बचने के लिए इतना ही लेना चाहिए जितना उसको आवश्यकता हो।
0: यानी प्लेट भर के खाना नहीं लेना है, जितना चाहिए उतना ही खाना लो। एक एक चीज ट्राई करो, पूरा खाना मत लो एक साथ, है ना? और बताइए ऋतिक जी, घर में क्या होता है, खाने का सिलसिला किस तरह से मैनेज करते हैं आप लोग?
1: मैम, घर में तो सही भी तरह से ठीक रहता है, बाकी वहाँ तो नहीं फिकता। घर में जैसे शादियां हैं, फंक्शन है, इसमें फिकता है। घर में प्रॉब्लम नहीं आती है, हमेशा गांव में उतना ही बनता है।
0: अच्छा,
1: और बाकी यहाँ जानवर अपने गाय रहती है, अपन उनको दे देते हैं, वेस्ट नहीं जाने देते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है ये तो ऋतिक जी।
1: जी,
0: बताइए मौसम के क्या हाल हैं आपके यहाँ?
1: मौसम आज तो खुला हुआ है।
0: खुला है, धूप है।
1: हाँ, आज तो अच्छी हवा चल रही है, मौसम साफ है, बाकी पानी आ नहीं रहा है आज।
0: ठीक है ऋतिक जी, आप कार्यक्रम से जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओके मैडम,
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है इस घंटे की खास खबरों का।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के दौरे पर आज पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। वे उत्तर बंगाल में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे जिसमें प्रशासनिक बैठकें भी शामिल हैं। वे सीमा सुरक्षा से संबंधित कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सिंगापुर में प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। बैठक में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेन प्रसाद भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने राजीव गांधी की राष्ट्र के प्रति सेवा और सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान को याद किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क में 550 प्रशिक्षुओं के अभिमुखीकरण समारोह में शामिल होंगे। इसके साथ ही अकादमिक लैब का अवलोकन कर प्रशिक्षुओं से संवाद करेंगे। संत शिरोमणि रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज से 10 सितंबर तक समरसता संकल्प अभियान एवं समरसता यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा

0: के खिलाफ कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली आपत्तिजनक टिप्पणियां करने और अदालत के आदेश का पालन न करने के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। और एंटीगा सिंगापुर इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन में मोहित जागलान और लक्षिता जागलान की जोड़ी वॉकओवर के बाद मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम का पहला गीत हमने आपके लिए चुन लिया है। आपके पत्र भी हमारे हाथों में है। ये गीत है फिल्म कन्यादान से। मोहम्मद रफी की आवाज, नीरज के शब्द और संगीत है शंकर जयकिशन का। पसंद आप सब श्रोताओं की है। गौतम नगर नांदेड़ से इस गीत को सुनना चाहते हैं प्रभाकर जोंदले और आरती जोंदले। इसी गीत को पसंद किया है चंडीगढ़ मोहाली के श्रोताओं ने। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, नवीन राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा। साथ ही इस गीत को पसंद किया है कालका से शुभ चंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल ने। तो आइए सुनते हैं इन सबकी पसंद पर कन्यादान फिल्म का ये गीत।

और अब आपको सुनवा रहे हैं मेरा साया फिल्म का वो नगमा जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने। राजा मेहंदी अली खां की शब्द रचना है, संगीत मदन मोहन का है। पसंद आप सब श्रोताओं की। पटियाला से बत्ता परिवार के सदस्य इस गीत को पसंद कर रहे हैं। ये हैं मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। इनका साथ दिया है हार्दिक ने भी। इसी गीत को पसंद किया है यवतमाल के श्रोताओं ने। राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी और स्वीटी के साथ बेबी प्रियांशी इस गीत को सुनना चाहती हैं। घंटा घर चौक खंडवा के श्रोताओं की भी यही पसंद है। पत्र लिखने वाले श्रोता हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। फरमाइशी पत्रों की फहरिस्त में एक और गीत इसी एक और श्रोताओं का समूह है जो इस गीत को सुनना चाहते हैं। ये हैं सनावत से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान और जीतेंद्र के साथ धर्मेंद्र मालाकार। तो आइए हम सब सुनते हैं मेरा साया फिल्म का ये मधुर गीत।

राम तेरी गंगा मैली, इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। आवाज़ लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की है, गीत और संगीत रविंद्र जैन का। पसंद आप सब श्रोताओं की। ग्राम खकल कोंच जिला जालौन उत्तर प्रदेश से दीपक सिंह गुर्जर, सत्यम सिंह गुर्जर, अंशराज सिंह गुर्जर और समस्त गुर्जर परिवार इस गीत को पसंद कर रहे हैं। इसी गीत को सुनना चाहते हैं अमरावती महाराष्ट्र से आयशा खान, हादिया खान, अस्मा, सालिया, शोएब, साइमा। इसी गीत को पसंद किया है पोत्रा के श्रोताओं ने। ये हैं मुस्तबा खान, आफिया खान, राउफ और शहीद। अकोला के श्रोताओं की भी यही पसंद है। अकोला से पत्र लिखने वाले श्रोता हैं रमेश कनटकर, वैशाली कनटकर। तो आइए सुनते हैं इन सब की पसंद पर राम तेरी गंगा मैली फिल्म का ये गीत।

अब आपको सुना रहे हैं खेल खेल में फिल्म का वो गीत जिसे गाया है शैलेंद्र ने, गुलशन बामरा के बोल हैं, संगीत आर डी बर्मन का। पसंद आप सब श्रोताओं की। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश और राशि और शीतल राजेश इस गीत को सुनना चाहती हैं। डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया, इनका पत्र हमें मिला है पटेल नगर मलोट पंजाब से। बागपत उत्तर प्रदेश के श्रोताओं की भी पसंद यही गीत है। पत्र लिखने वाले श्रोता हैं संजय ढींगिया, नमन और अपार ढींगिया। धामड़ी मानोरा के श्रोताओं का पत्र हमें मिला है। ये हैं तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश डेरे, आदेश डेरे, किरण, प्रज्वल और अनुत डेरे। तो आइए इन सब की पसंद पर सुनते हैं खेल खेल में फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं राजा हिंदुस्तानी फिल्म का गीत, जिसे पसंद किया है हमारे श्रोताओं ने। पसंद करने वाले श्रोता हैं जय किसान रेडियो श्रोता संघ कोटड़ा बहादुर से, ये पत्र हमें मिला है मंदसौर ज़िले से, तूफान डांगी, नेपाल डांगी, राहुल डांगी, पप्पूलाल डांगी और विक्रम डांगी इस गीत को सुनना चाहते हैं। इसी गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और इनके साथी। गोला बाजार बक्सर से पत्र हमें मिला है श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित, मोहित और कान्हा आर्य का। ये सुनना चाहते हैं राजा हिंदुस्तानी फिल्म का वो गीत जिसे गाया है उदित नारायण, अलका याग्निक और सपना अवस्थी ने। समीर के बोल हैं, संगीत है नदीम श्रवण का। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

राजा हिंदुस्तानी फिल्म के इसी गीत के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारा अगला कार्यक्रम इस छोटे से अंतराल के बाद होगा।

पिछले अंक में आपने सुना कि जमुनिया और उसका पति रतन सरकार द्वारा दिए जाने वाले जमीन के पट्टे को लेकर बहुत उत्साहित हैं। उधर रतन का छोटा भाई करण शराबी और आवारा किस्म का निठल्ला व्यक्ति है, जिसे गांव का जमींदार दीवान अपने फायदे के लिए पटाता है। अगली सुबह रतन और जमुनिया सरकारी दफ्तर जाते हैं। अब आगे

0: भैया इधर आओ। अरे चलू आया नहीं आया।
1: अरे सुनो भाई, सुनो सुनो, अरे सुनो, अरे सुनो भाई, सुनिए सुनिए, आप लोग सुनिए, थोड़ा सुनिए, आगे आइए, आगे आइए रतन राम
2: जी।
1: ये भैया यहाँ अंगूठा लगाइए आप यहाँ पे।
2: दस्तखत कर दू?
1: पढ़े लिखे हो?
2: हाँ
1: पढ़े लिखे हो तो दस्तखत कर दो इसमें
2: जी।
1: और ये लो अपने कागजात
2: जी जी,
1: जमीन के हैं, जमीन के
2: जी,
1: संभाल के रखना, बहुत जरूरी कागजात हैं ये
2: जी जी,
1: ठीक है
2: जी।
1: अरे रतन कौन है भाई? रतन
3: जी मालिक हम हैं।
1: अरे रतन यहाँ आगे आओ, आगे आगे।
3: हाँ मालिक,
1: ये यहाँ करो दस्तखत।
3: साहब हम दस्तखत नहीं कर पाएंगे, हम अंगूठा लगा दें।
1: अंगूठा लगाओ भाई, अंगूठा लगाओ
3: जी, अंगूठा लगा देते हैं साहब।
1: इस वाले हाथ का, इस हाथ का।
3: अच्छा ये
1: शाही में दबो और यहाँ लगाओ, यहाँ।
3: जी सर, जी साहब।
1: अब ये देखो अंगूठा लग गया और ये लो अपने कागजात, ठीक है?
3: हाँ साहब,
1: संभाल के रखना इसे।
3: अरे साहब संभाल के रखेंगे, बक्सा में रख देंगे, बक्सा तारा लगा देंगे,
1: ठीक है भैया। राम राम, राम राम, राम राम भैया, राम राम।

0: अरे ये क्या कर रहे हो? कपार से पाथर तोड़ रहे हो?
1: ठीक कह रही हो जमुनिया, अरे हमारा सर ही किसी काम का नहीं, ना इतना कड़ा है कि पत्थर तोड़ सके और ना इतना समझदार कि कुछ कम मेहनत का काम मिल जाए।
0: अरे हम तो मजाक में बोले, आओ थोड़ा आराम कर लो, छा लो, पसीना सूख जाएगा तो दोनों मिलकर थकाएंगे, ठीक है? शायद बिना तोड़े काम बन जाए।
1: हम समझ रहे हैं कि तुम हमसे हंसी कर रही हो, अकेले नहीं धका पाए तो सोचा कि टुकड़े उकड़े करके इसे खेत से बाहर फेंक दें। देखो देखो।

0: देखो तो सही, खेत के बीचों बीच पड़ा है।
1: अरे एनेलिया पाथर है, जल्दी फूटता भी नहीं।
0: ला भाई, पानी पिला दे।
1: ये लो पानी।
0: सरकार ने जमीन तो दे दी, पर इसमें फसल काटना इतना आसान भी नहीं।
1: देखो जी, अभी से हार मानोगे तो फसल कैसे काटेंगे? हाँ, हिम्मत रखो, हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो फिर हरियाली जरूर आएगी, अनाज पैदा होगा, हम भूख भगा पाएंगे।
0: तू तो नेताओं जैसी बात करती है री।
1: मौका मिलेगा तो वो भी करके दिखा दूंगी, आप साथ देना।
0: अरे साथ तो देने के लिए ही हमें ऊपर वाले ने एक किया है, पर और भी खरपतवार वाली जमीन तो थी। ये ऊसर पाथर ही हमारे हिस्से आया, क्या करें, ये नसीब की बात है। नसीब ही कुछ ऐसा है हमारा।
1: अब नसीब को तो मत कोसो, जो मिला है उसे ही सोना बना देंगे, हिम्मत रखो।
0: चल भाई, करते हैं कोशिश। पर ये क्या देख रहा हूं?
1: कहाँ देख रहे हो जी?
0: अरे वो देखो, वो उधर, अरे मेरे सामने वहां, ये करण कैसे दिख गया आज खेत पर?
1: अरे हाँ, ये तो देवर जी हैं। अच्छी बात है, ये खेत पर मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है।
0: अरे कैसी गड़बड़, कुछ पहले ही गड़बड़ नहीं करके आ गई?
1: तुम तो भाई की पैर भी करोगे ही। हाँ, मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करके आई। आ गए हैं तो खुद ही पूछ लेना, पूछो पूछो।
0: ठीक है, अभी चुप रहो। अरे आओ करण, आओ बैठो बैठो। खेत पर कैसे?
2: कुछ खास नहीं भैया, आज ऐसे ही मन किया कि चलो देखें भैया क्या कर रहे हैं खेत में, तो आ गया।
0: चलो अच्छा है, मैं भी किसी की ताक में था। वो जो वो पत्थर देख रहे हो ना,
2: हाँ
0: वो पत्थर जरा भारी है,
2: हाँ
0: तीनों मिलकर उठाएंगे तो खेत के बाहर फेंक देंगे, क्या ख्याल है?
2: भैया, बात तो ठीक है पर मेरी कमर में थोड़ा दर्द है, उठाने लायक नहीं हूं, पर कोशिश जरूर करूंगा।
0: अरे तो फिर रहने दे,
2: हाँ
0: दर्द और बढ़ गया तो मुसीबत होगी। हम ही कोशिश करते हैं, लगता है बात बन जाएगी। तू बैठ, आराम कर।
2: ठीक है भैया, जैसा तुम कहो।
0: चल उठ जमुनिया, हम दोनों ही कोशिश करते हैं।
1: हाँ चलिए।
0: वाह जमुनिया वाह, तुमने तो दिखा दिया आज के औरत मर्द के कंधे से कंधा मिलाकर चले तो बड़ी से बड़ी मुसीबत को मात दे दे। आखिर पत्थर हट ही
1: अरे
0: गया।
1: आप चने के झाड़ पर मत चढ़ाओ, पत्थर को

0: खेल तो आपने ही दिया था, मैंने तो बस आपका साथ दिया है। हाँ
1: अच्छा भाई, ठीक है ठीक है।
0: अब मैं चलती हूँ, घर पर भी बहुत सारा काम है भाई। अपने देवर जी को तो काम देखते ही कमर टूटने लगती है। अब आप दोनों करो गुटर गू, मैं चलती हूँ।
2: ओ वाह भैया वाह, आपने तो कमाल कर दिया, पत्थर हटाकर ही छोड़ा।
1: अपनी मुसीबत अपनों को ही हल करना पड़ती है।
2: हाँ सही बात कही भैया, वो भाभी कुछ कह रही थी शायद मेरे बारे में।
1: अरे छोड़, ये औरतों की बातें हैं। हाँ तू बता, कुछ खास बात है क्या जो आज यहां आया है तू?
2: कुछ खास तो नहीं, पर कहो तो बात करूं।
1: अरे बोल भी, इतनी देर से उलझा रखा है।
2: मैं कहता हूं, एक पत्थर हटाने में इतनी मेहनत लगी, इतना टाइम लगा, और सब कुछ मेहनत से ही तो नहीं होगा ना। पानी कहाँ से आएगा, बीज खाद कहाँ से लाओगे?
1: मतलब
2: साफ है, इन सब के लिए पैसा चाहिए। चाहिए कि नहीं बताओ।
1: चाहिए तो सही, सरकार ने तो बैंकों को भी लगा रखा है कर्ज देने के लिए, कुछ इंतजाम हो ही जाएगा।
2: अरे हो तो जाएगा ही, पर इन सब में वक्त कितना लगेगा?
1: तू फिक्र ना कर, चिंता छोड़, मैं कुछ कर लूंगा।
2: ऐसे कैसे चिंता छोड़ूं? आप तो मुझे कुछ करने ही नहीं देते हो।
1: चल अच्छा बता, क्या करना चाहते हो?
2: तो सुनो, ये दीवान जी किस दिन काम आएंगे?
1: क्या कहा, दीवान जी से पैसा लेगा?
2: हाँ बिल्कुल, अरे उन्होंने तो खुद ही कहा था, जरूरत समझो तो पैसे ले लेना। उनका ट्रैक्टर भी, ट्यूबवेल भी है, अरे अपना काम फटाफट हो जाएगा, कम मेहनत कम दौड़ भाग।
1: वो तो ठीक है, पर इस दीवान से डर लगता है, मेरा तो जी घबराता है, कब ना जाने क्या कर दे, गलत सही।
2: अब तुम तो फालतू में डरते हो भैया, ऐसी बात नहीं है। अब कोई पैसे ले ले और डकार जाए तो भाई देने वाला वसूल करेगा ही ना, और अगर पैसा लिया और लौटा दिया तो फिर काहे का डर?
1: तो ठीक है भाई, बात करके देख ले।
2: ठीक है भैया। जय राम जी की मालिक।
3: आओ आओ करण, कैसा है तू?
2: ठीक हूँ मालिक, बस आपसे मिलना था सो आ गया।
3: अच्छा किया, बोल क्या खास बात है?
2: वही मालिक, हमें खेत तो मिल गया है, पर जोतना बोना पानी खाद बीज के लिए पैसा चाहिए था।
3: हाँ तो ले जाना पैसा। अरे पहले ही तुझे बता चुका हूँ, जब चाहे ले जा पैसा।
2: तो अभी दे दे मालिक, भैया भी खुश हो जाएंगे कि छोटा भाई कुछ तो काम आया, खाली आवारा नहीं है।
3: अब इतनी हड़बड़ी भी मत मचा, थोड़ा अच्छे से सोच समझ ले। अरे भाई रुपए पैसे का मामला है, फिर आना, अपने भाई से भी बात कर लेना।
2: मालिक वो बात कर ली है, सोच समझ कर ही आया हूँ, उनकी भी हाँ है।
3: उसकी भी हाँ है तो फिर वो आया क्यों नहीं?
2: अब एक ही बात है मालिक, वो आए या मैं आया।
3: एक ही बात कैसे है करण, तुम निरे भोले निकले। अरे भाई रुपए पैसे का मामला है, थोड़ा जिम्मेदार आदमी चाहिए। अच्छा अगर तुम पैसे ले गए और उसे कहीं और खर्च कर दिया तो फिर मैं क्या करूंगा?
2: जी
3: है ना सोचने वाली बात। सुन
2: जी,
3: कल मेरा ट्रैक्टर खाली है, रतन से कहना कल आके ले जाए ट्रैक्टर, और हाँ उससे ये भी कहना कि मैं

0: से जुताई के पैसे भी नहीं लूंगा।
1: कह दूंगा मालिक, पर मैं उधार के पैसे कहीं और नहीं उठाऊंगा, भरोसा रखो मालिक।
0: चल किया भरोसा तुझ पर, अब बता कैसे लौटाएगा पैसे?
1: अरे खेती से कमा कर लौटा देंगे मालिक।
0: दिमाग मत खराब कर मेरा, ये करेंगे काम और खेती। जाओ जाओ दारू के अड्डे पर जाकर दारू पियो। अब ऐसे क्या देख रहा है? पैसे के लिए कुछ साख रखनी होती है और वो रतन के पास है। उसके पास जमीन है, जमीन, उस पर भरोसा कर सकता हूं।
1: ठीक है मालिक, जैसी आपकी मर्जी।
0: ठीक है जा। और हाँ
1: जी,
0: रतन को जरूरत हो तो भेज देना।
1: जी अच्छा मालिक।
0: और हाँ
1: जी,
0: ट्रैक्टर का बोल देना उसे।
1: जी मालिक।

0: भाई वाह, इसे कहते हैं मशीन। क्या जरा देर में देखते ही देखते खेत खोद कर रख दिया। फावड़ा चलाते तो महीना लग जाता महीना, और इतनी अच्छी जुताई भी नहीं होती। वाह मालिक वाह।
1: अरे वाह मालिक वाह, किसको कह रहा हो रतन? अपने दीवान जी को?
0: अरे नहीं भैया, हमारे लिए आप भी मालिक हैं और ट्रैक्टर भी।
1: देखो अब ज्यादा बनो मत रतन भाई, और ना बनाओ। तुम्हारा खेत फ्री में जोतने को मुझको मालिक ने कहा, वो मैंने कर दिया। अब कम से कम एक गिलास पानी तो पिलवा दो।
0: अभी लो भैया।
1: लो, हो गए ना हम मालिक से भैया।
0: जय राम जी की मालिक।
2: अरे रतन आओ आओ आओ भाई, तुमने तो वाकई जंगल ऊसर को चमन बना दिया भाई। शाबाश, तुम्हारी जितनी भी तारीफ की जाए कम है।
1: बस आप ही के सहार सब हो रहा है मालिक।
2: अब तुम तो थोड़ी देर चुप ही बैठो करण, रतन को बोलने दो, बोलो।
0: बस साहब, हार तोड़ रहे हैं, आपकी मदद से खेत जुत गया।
2: अरे भैया, हमारी मदद तो हमेशा तुम जैसे लोगों के लिए हाजिर है। अरे भाई, हम तो खुद चाहते हैं कि गांव के सब गरीब गुरबा अच्छे से रहें, कमाएं खाएं।
0: सच बात है मालिक। मालिक, आज ट्रैक्टर देने के लिए आपका धन्यवाद।
2: धन्यवाद? अच्छा तो पूरा धन्यवाद देकर बरी हो लिए रतन है? अरे जरा इधर देखो भाई, ये रतन हमको धन्यवाद दे रहे हैं। ये ससुर धन्यवाद की बीमारी यहाँ भी आ गई है।
0: कौनों गुस्ताखी हो गई दीवान जी?
2: अब जाओ यहां से, तुम हमारी खोपड़ी मत घुमाओ। अभी हम अच्छे मूड में रहना चाहते हैं। और हाँ, पैसों की जरूरत हो तभी इधर आना, समझे?
0: जी जी मालिक।
2: जाओ।

0: इसमें ऐसा क्या हो गया अभी तक समझ में नहीं आया हमारी।
1: चलो उठो, खाना खाओ। अब जो हुआ सो हुआ। वैसे धन्यवाद देने की भी औकात हम में है या नहीं, सोचना पड़ेगा।
2: हम सब सुन रहे हैं। अरे दीवान जी को सब लोग जी मालिक कहते हैं। आपसे इतना भी तो नहीं हो पाया। उनके पास जाकर धन्यवाद दे रहे हैं। अब तो वो देने से रहा पैसे। उसे बड़ी मुश्किल से मना के आया था।
0: कोई जरूरत नहीं मनाने जुनाने की। ना पैसे देता हो तो नहीं सही, मर नहीं जाएंगे। कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा।
2: अब कोई और रास्ता निकाल कर नई मुसीबत मत मोल लीजिए। अरे हमें गांव में रहना मुश्किल कर देगा। आखिर भैया, ऐसी लड़ाई से क्या फायदा जिसमें हारना ही हारना है।
0: अब लड़ने से पहले ही हथियार डालना है तो फिर हारना तो तय है।
2: देखो भैया, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, दीवान से माफी मैं मांग लूंगा। आप तो चलो पैसे उठाओ और चले आओ।
0: तुम तो गए थे ना लेने, क्या हुआ?
2: वो तो तुम्हें याद कर रहे थे। अरे पैसे तो दे रहे थे, पर मैंने सोचा ये शुभ काम तुम्हारे ही हाथों से हो तो ज्यादा अच्छा है।
0: मैं दीवान को जानता हूं करण, पर ठीक है, तेरी जिद है तो चलता हूं।
2: ठीक भैया। अब मालिक, वो रतन भैया आ गए हैं।
3: अच्छा अरे कोई है, देखो रतन जी आए
4: जी मालिक।
3: हैं। अरे भैया इनकी आरती उतारो। हमारा ट्रैक्टर लेकर अपना खेत जुतवाए हैं, हम पर एहसान किया और उल्टा धन्यवाद भी दे गए। और क्या करें आपके लिए रतन साहब।
2: अब बस भी करिए मालिक।
3: तू बीच में मत बोल करण।
0: गुस्ताखी के लिए माफी दे दे मालिक, हमें आप जैसन से बात करने नहीं आता मालिक।
3: जेल, तुम तो एकदम ही सीरियस हो गए भैया। अरे भैया थोड़ा मजाक कर रहे थे तुमसे। अरे हंसो हंसो, काहे घबरा रहे भैया। बोलो पैसा वैसा तो नहीं चाहिए ना। हाँ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हाँ
0: कुछ दे दीजिए मालिक।
3: कुछ माने कितना, रुपया ठन्नी की बात तो नहीं है ना।
0: नहीं मालिक, 5,000 काफी होगा अगर आप ठीक समझें तो।
3: बिल्कुल ठीक नहीं समझेंगे हम 5,000 रुपया। अगर हमारी बात मानो तो कम से कम 25,000 तो होना ही चाहिए।
0: अरे नहीं मालिक, इतना पैसा हम कहां से लाएंगे? और इतने की जरूरत भी नहीं है, आप तो बस 5,000 दिलवा दीजिए।
3: जैसी तुम्हारी मर्जी भैया, हम तो तुम्हारे भले की कह रहे हैं। भैया क्या है कि पैसे बार बार मांगना ठीक नहीं होता है ना, इसलिए एक बार और सोच लो।
0: तो फिर 10 कर दीजिए बस। इससे आगे बढ़ने की मेरी हिम्मत नहीं है।
3: ठीक है 10,000 सही। सुना भाई कोई है?
4: जी मालिक।
3: हाँ इन रतन जी को 10,000 रुपया देकर इनका अंगूठा लगवा लेना।
4: आओ मालिक।
3: हाँ अरे भैया बुरा मत मानना रतन, पैसों के लेन देन में लिखत पढ़त जरूरी है, समझ गए ना।
0: जी मालिक।
4: आ भैया इधर आ जाओ। आ भैया लो। ये लो पूरे 10 हैं, गिन लो।
0: आओ आओ।
4: अरे और सुनो, आओ इधर आओ। ये यहां

0: हाँ अंगूठा लाओ, यहां लगा दो अंगूठा। हाँ बस मालिक, लगवा लो अंगूठा।
1: बहुत अच्छा किया।
2: कर्ज के ही सही, पर एक साथ 10,000 रुपए अपने पास आ गए। सोच कर ही बहुत अच्छा लगता है।
3: अच्छा तो तब लगेगा जब छोटे भाई को 100 रुपया दे दो खर्च करने के लिए, वो भी अपने मन से।
2: कैसी बात करता है? ये पैसे लौटाने हैं मुझे। चल अच्छा जलेबी ले चलते हैं, सब लोग खा लेंगे, सबका मुंह मीठा हो
3: छोड़ो भैया,
2: जाएगा।
3: जलेबी से मुझसे क्या मतलब है? आपको तो पता है मुझे क्या चाहिए।
2: अच्छा चल नाराज मत हो, ये ले 50।
3: अरे अरे मेरे अच्छे भैया।
4: अच्छा किया जलेबी ले आए, घर भर मगन है।
2: कर्ज की ही सही, पर ए खुशी बनी रहे।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत जमुनिया का दूसरा भाग। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:58 होने को है। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के दौरे पर आज पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। वे उत्तर बंगाल में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे जिनमें प्रशासनिक बैठकें भी शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सिंगापुर में प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। बैठक में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी उपस्थित थे। भारत सिंगापुर त्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज सिंगापुर में हो रहा है। इस चौथे संस्करण में भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भाग ले रहा है। ये सम्मेलन नए और उभरते क्षेत्रों सहित सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क में 550 प्रशिक्षुओं के अभिमुखीकरण समारोह में अकादमिक लैब का अवलोकन कर प्रशिक्षुओं से संवाद करेंगे। संत शिरोमणि श्री रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज से 10 सितंबर तक समरसता संकल्प अभियान और समरसता यात्रा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। राजधानी भोपाल के आरसीवीपी नरोना प्रशासन और प्रबंधकीय अकादमी में आज विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के सर्वांगीण उत्थान, आजीविका संवर्धन, सामाजिक सुरक्षा के लिए एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम के 7वें चरण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:00 हैं। ये समय होता है महिला कार्यक्रम का। आज का महिला कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है। सुनते हैं महिला कार्यक्रम।

श्रोता बहनों नमस्कार। बारिश की रिमझिम फुहारों के साथ हम लेकर आए हैं खास आपके लिए आपका अपना पसंदीदा चहेता कार्यक्रम महिला सभा। बहनों बहुत बहुत स्वागत है आप सबका कार्यक्रम में। आज आपके साथ हूं मैं आपकी सखी सुधा मिश्रा। बहनों बारिश का मौसम हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन बारिश के ये दिन अपने घरों में सफाई भी बहुत मांगते हैं, तो हमारा काम भी निश्चित रूप से बढ़ता है। सफाई अगर न हो तो इस मौसम के जीव जंतु हमें परेशान करते हैं और तमाम तरह की बीमारियों के हम शिकार हो जाते हैं। और इसी समय खास प्रजाति जो मच्छरों की है ये भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। मच्छर हमें काटते भी बहुत बुरा हैं और बीमारियां भी बड़ी बड़ी दे जाते हैं। इसी से याद आया बहनों कि आज विश्व मच्छर दिवस भी है, तो मच्छरों से बचाव के उपाय तो करके ही रखिए बहनों, वरना तो बीमारियों को घर बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। बहनों कहते हैं ना, बीमारी बता कर नहीं आती, और अगर आपने अपने स्वास्थ्य के लिए अलग से बजट नहीं बनाया है तो परेशानी बहुत बढ़ सकती है। तो बहनों आज हम आपसे बात करेंगे एक ऐसी ही महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना की, जिसका उद्देश्य है देश के ज़रूरतमंद परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, और अगर किसी को गंभीर बीमारी है तो उसकी आर्थिक चिंता को कम करना। बहनों होता भी है ना कि अगर कोई अचानक बीमार पड़ जाए या अस्पताल में भर्ती होना पड़े तो इलाज का खर्च एकदम बोझ बन सकता है। ऐसे में आयुष्मान भारत योजना पात्र परिवारों के लिए बड़ा सहारा बनती है। तो चलिए पहले हम थोड़ा समझें कि आयुष्मान भारत योजना क्या है। बहनों आयुष्मान भारत भारत सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। इस योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि पात्र परिवारों के सदस्यों की संख्या या उनकी उम्र पर सामान्यतः कोई सीमा नहीं है। यानी अगर परिवार में कई सदस्य हैं, जितने भी सदस्य हैं, तो वो इस योजना के दायरे में आ सकते हैं। पात्र परिवारों के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर मिलता है। सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस उपचार की सुविधा मिलती है। अब 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक, उनकी आय या सामाजिक आर्थिक स्थिति जैसी भी हो, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कवरेज के पात्र हैं। इस योजना की एक खास सुविधा है कैशलेस उपचार। मैंने जब भी हम इस सुविधा के लिए आवेदन करें तो इस बात का भी खास ख्याल रखें कि किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने दस्तावेज या OTP बिना सोचे समझे ना दें। योजना की जो भी हमको जानकारी चाहिए उसके लिए आधिकारिक माध्यमों का ही हम उपयोग करें। बहनों स्वस्थ रहना हम सभी की पहली प्राथमिकता है। सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी रखना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि सही समय पर सही जानकारी किसी भी परिवार के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। इसीलिए हमारा प्रयास होता है हम आपको सभी समसामयिक जानकारियों से अवगत कराते रहें। तो बहनों बातें बहुत की हमने, अब समय है एक खूबसूरत से गीत का। तो चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: बहनों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत महत्वपूर्ण स्वास्थ्य वार्ता। आज की हमारी इस भेंट वार्ता का विषय है खूबसूरत चेहरा और आपके दांत। इस विषय पर विषय विशेषज्ञ डॉक्टर साकेत जैन से बातचीत कर रही हैं डॉक्टर आशा पारे। तो सुनते हैं यह भेंट वार्ता।
1: तू बोल या ना बोल, तेरे न बोलने का गम नहीं, बस एक बार मुस्कुरा दे ये बोलने से कम नहीं। तो बहनों, आपकी भी यही ख्वाहिश है कि हमारे चेहरे के साथ साथ हमारी मुस्कुराहट भी बहुत खूबसूरत लगे, लेकिन उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि दांतों की खूबसूरती को बरकरार रखा जा सके। और आपकी दांतों की खूबसूरती बरकरार रहे, इसीलिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर साकेत जैन को। आप दांतों के स्पेशलिस्ट है और ख़ास तौर पर टेढ़े मेढ़े दांतों के सुपर स्पेशलिस्ट है। तो आप हमारी बहनों को बताएंगे किस तरह से दांतों को खूबसूरत रखा जा सकता है। डॉक्टर साकेत जैन, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि चेहरे की खूबसूरती में दांतों का बहुत योगदान है, तो इनकी खूबसूरती को हम कैसे कायम रख सकते हैं?
2: जैसे कि मैडम, कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि हमें ब्रश दिन में दो बार करना है चाहिए। रात में ज़्यादातर ब्रश लोग नहीं करते हैं। रात में ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी हम खाते हैं रात भर में कीटाणु, वो सारी चीज़ें खराब कर चुके होते हैं।

0: सवेरे ब्रश करना तो है ही है, लेकिन रात में ब्रश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
1: जी
0: फिर उंगली का प्रयोग ना करें, ब्रश ही यूज़ करें, क्योंकि पायरिया जैसी बीमारी जो होती है, जैसे मुंह से खून आता रहता है, दांतों के बीच से खून आता रहता है, वो
1: जी
0: प्रॉब्लम ज़्यादा, वो परेशानी ज़्यादा इसलिए होती है कि हम उंगली का इस्तेमाल करते, तो हमें एक ब्रश ही यूज़ करना चाहिए और हर 3 महीने में बदलते रहना
1: तो क्या
0: चाहिए।
1: उंगलियों का प्रयोग करने से कुछ इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है?
0: जी मैडम, उंगलियों से प्रॉब्लम ये है कि उंगली हर जगह पहुंच नहीं पाती है,
1: अच्छा
0: अगर पीछे के दांत की सफाई अच्छे से नहीं हो पाती
1: जी
0: है।
1: जी
0: पायरिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें कोई दर्द नहीं रहता, सिर्फ
1: जी
0: दांत हिलने लगते हैं उम्र के साथ साथ और खून आने लगता है।
1: जी हाँ। अब डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक बात बहुत ज़रूरी है कि दांतों के बारे में ज़्यादातर लोगों का ध्यान तब जाता है जब या तो बच्चों के दांत खराब हो चुके रहते हैं या फिर उनमें कीड़ा लग जाता है। तो बच्चों के लिए भी हम यही जानना चाहते हैं कि किस आयु में दांतों पर ध्यान देना शुरू कर देना
0: जी
1: चाहिए?
0: देखिए, जब से दूध के दांत निकलने शुरू होते हैं
1: जी
0: तब से हमें दांतों के बारे में सावधानी बरतनी चाहिए। और दूसरी
1: अच्छा
0: बात है कि जैसे दांत अगर आड़े तिरछे जाने लगे हों, लोगों की धारणा होती है कि जब ये पूरे पक्के दांत आ जाएं उसके बाद ही कराएं, ऐसा
1: अच्छा
0: नहीं है। 7 साल की उम्र से हम ये दांतों के बारे में, हमारा जो तरीका है उसको ठीक रखने का, ये करने का, हम शुरू कर सकते हैं।
1: अच्छा मतलब बच्चों को बचपन से ही हम सही आदत
0: जी
1: डालें
0: जी
1: दांतों के बारे
0: और
1: में?
0: उनको नियमित चेकअप कराते रहें। एक
1: अच्छा
0: सिंपल उदाहरण ऐसा है, एक सादा उदाहरण, कि जैसे हम, हमारी गाड़ी है, हम उसको हर 3 महीने 4 महीने में सर्विसिंग कराते हैं,
1: जी बिल्कुल
0: लेकिन हम अपने दांतों के प्रति कभी ध्यान नहीं देते।
1: हाँ, जब
0: हम
1: तक तकलीफ ना हो
0: तकलीफ ना
1: तब
0: हो,
1: तक।
0: जब तक हम दवाइयां हम लेते रहते हैं
1: जी
0: मेडिकल स्टोर से खरीद के, जब बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर हो तब हम जाते
1: तब
0: हैं, तब
1: डॉक्टर के
0: तक बहुत
1: पास
0: देर हो
1: जाते
0: चुकी
1: हैं।
0: होती है।
1: बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने। तो मतलब हर आयु में दांतों का ध्यान रखना
0: जी
1: ज़रूरी। हम ये देखते हैं कि छोटे बच्चों के दांत कई बार बहुत बड़े निकल रहे हैं या टेढ़े मेढ़े निकल रहे हैं, तो क्या उसी समय उसका इलाज ज़रूरी है?
0: देखिए, पहले तो उसका कारण होना पता होना चाहिए। टेढ़े मेढ़े दांत इसलिए निकलते हैं कि आज के समय में जो हम खाना खाते हैं वो
1: जी
0: बिल्कुल पहले के ज़माने में, जैसे पहले गन्ना चबाते थे, ये करते थे, वो चीज़ें अब नहीं रहती हैं।
1: जी
0: अब
1: हाँ
0: सारा रिफाइंड खाना खाया जाता है
1: बिल्कुल
0: जिसमें हमें ज़्यादा मुँह चलाना ना पड़े। और एक हेरिडिटरी फैक्टर जिसे हम कहते हैं वो होता है, जैसे अगर माँ के दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो बच्चे के टेढ़े मेढ़े होंगे ही होंगे,
1: अच्छा
0: एक कारण ये है। दूसरा ये होता है कि जिस टेढ़े मेढ़े दांत बच्चा बोले, माँ बोलेगी कि बचपन में तो दांत एक से लाइन से थे, लेकिन बड़े में आगे पीछे हो गए।
1: जी
0: उसका भी कारण ये है कि जबड़े का साइज़ और दांत का साइज़ मैच नहीं करता है। तो
1: अच्छा
0: हम उसका ट्रीटमेंट अगर हम जल्दी शुरू कर दें, 7 साल की उम्र से अगर हम चालू कर दें, तो
1: जी
0: बहुत अच्छे से हो सकता है और उसके बाद में इतना कुछ कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
1: सामान्य तौर पर लोगों का ये सोचना होता है कि बच्चे के दूध के दांत है ये तो टूट जाएंगे और इसकी जगह पर दूसरे जो दांत आएंगे वो शायद अच्छे आएं,
0: जी
1: इसलिए भी ट्रीटमेंट में देर करते
0: हाँ,
1: हैं।
0: वो एक धारणा बनी रहती है, लेकिन
1: जी
0: अगर हम दूध के दांत को ही अगर सही डायरेक्शन में आगे आने दें
1: जी
0: और हम उस समय से ही जगह बना के रखें पक्के दांत के लिए,
1: जी
0: तो दांत जो हैं पक्के वाले बहुत अच्छे आएंगे।
1: मतलब दूध के दांतों से ही सुरक्षा का प्रबंध शुरू कर
0: जी
1: देना
0: जी क्या
1: चाहिए।
0: दूध के दांत में अगर जैसे कीड़ा लगा है तो
1: जी
0: वही कीड़ा फैलते फैलते पक्के दांत को खराब कर देता है।
1: अच्छा, मतलब शुरू से ही दांत फिर खराब ही आते हैं।
0: जी
1: बहुत सही जानकारी दी, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम लोग इस तरह की भ्रांतियों का शिकार रहते हैं
0: जी
1: और सही देखभाल नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात ये देखी गई है कि कई बार हमारी बहनों के दांत जो है टेढ़े मेढ़े रहते हैं और उन्हें बोलने में और मुस्कुराने में भी बहुत तकलीफ होती है। ऐसा लगता है कि कहीं दांत दिख गए तो चेहरा खराब दिखने लगेगा। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है?
0: जी देखिए, अब ये जो तार का दांतों पे, अगर हम तार लगाने का या तार कसवाने का जो लोग बोलते हैं, इसको ब्रेसेस बोलते हैं,
1: जी
0: ये लगाने की कोई उम्र नहीं है।
1: अच्छा
0: आज के ज़माने में हम 50 साल 55 साल की महिलाएं जो कभी अपना ट्रीटमेंट नहीं करा पाई उनका भी ट्रीटमेंट करते हैं,
1: अच्छा
0: और उम्र इसलिए अब नई फैक्टर है या इम्पोर्टेंट वो कारण नहीं बचा है, क्योंकि अब नई जो टेक्नोलॉजी आ गई है वो इतनी एडवांस है कि उनको कोई तकलीफ नहीं होती और ये
1: जी
0: किसी भी उम्र में किया जा सकता है।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि कई बार ये होता कि उम्र के ही झिझक के कारण कि अब इस उम्र में क्या ट्रीटमेंट लेना, इसलिए महिलाएं नहीं जा पाती। तो बहनों, ये आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी है कि किसी भी उम्र में आप जा सकते हैं डॉक्टर के पास में अपने दांतों की खूबसूरती के लिए। अब डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक बात और मैं जानना चाहूँगी कि जैसे आपने जो तार कसने वाली बात बताई, तो ये तार क्या बाहर निकले हुए दांतों के लिए ही कसना ज़रूरी है या जैसे दांतों के बीच में बहुत गैप है
0: जी
1: उसके लिए भी है?
0: नहीं, गैप के लिए तो और ज़्यादा ज़रूरी। देखिए, निकले हुए तो एक चीज़ है कि जो बाहर दिख रहा है
1: जी
0: हमारे अंदर, कई कई ऐसे लोग होते हैं जो खाना को बराबर से चबा नहीं पाते क्योंकि दांतों में जो गैप है
1: गैप
0: उसमें
1: रहता
0: खाना
1: है।
0: फंसता है,
1: जी बिल्कुल
0: तो उसके लिए भी ये तार लगाना बहुत ज़रूरी है।
1: अच्छा
0: आज के ज़माने में इतना एडवांस हो गया है, तार ऐसे वाले आ गए हैं जो दिखे ही ना, जो चार फिट के दूरी से अगर कोई देखेगा तो उसको समझेगा ही नहीं कि तार लगे हुए हैं। ये
1: अच्छा
0: खासकर उन लोगों के लिए जो काम करते हैं या जो
1: जी,
0: जिनको लगता है कि नहीं तार अभी इस उम्र में लगाए तो थोड़ा सा शर्म आती
1: अच्छा
0: है,
1: नहीं दिखेगा
0: जी उनके
1: जी
0: लिए अब दांत के कलर के तार आ गए हैं।
1: जी बहुत अच्छी बात है। और डॉक्टर साहब, जो आपने कहा कि गैप वाली जगहों पर, तो क्या गैप वाली जगहों पर भरने के लिए फिर दूसरे दांत लगाए जाते
0: नहीं,
1: हैं?
0: ये तार की मदद से हम क्या करते हैं, दांत को, ये ट्रीटमेंट जो चलता है तार का, ये कम से
1: जी
0: कम 1 से 1.5 साल के बीच चलता है।
1: अच्छा
0: पेशेंट को या उनको सिर्फ 1 महीने में 1 बार डॉक्टर के पास जाना होता है इसको
1: जी
0: टाइट करने के लिए, वायर को टाइट करने के लिए, और धीरे धीरे धीरे हम ये दांत के गैप को बंद करते चले जाते हैं
1: अच्छा
0: बिना कोई नकली दांत लगाए हुए, बगैर
1: जी
0: कोई, ये बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से ट्रीटमेंट होता है
1: जी
0: और इसमें कोई दर्द नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन बहुत धीरे होता है क्योंकि प्राकृतिक है इसलिए धीरे करना पड़ता है,
1: जबड़ों में कसाव आता
0: कसाव आता है,
1: होगा।
0: जी जी
1: जी जी
0: ये है, इसलिए 1.5 साल लगता है। ये 1 मिलीमीटर दांत 1 महीने में मूव होता है,
1: जी,
0: हिलता है अपनी
1: थोड़ा
0: जगह
1: समय
0: से
1: ज़रूर लगेगा लेकिन खूबसूरती तो
0: बहुत
1: बढ़ेगी।
0: अच्छे से।
1: जी अब डॉक्टर साहब, एक मुख्य बात जो आती है वो व्यय की आती है कि कितना खर्च आएगा इस पे।
0: जी देखिए, पहले लोगों के बीच में धारणा थी कि ये बहुत ही खर्चीला है या ये सिर्फ
1: जी
0: बड़े शहरों में ही हो सकता है,
1: जी
0: पर अब ये गांव-गांव हम जाते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए,
1: जी
0: और इसमें खर्चा भी अब आज के ज़माने के हिसाब से बहुत ही कम हो जाता है
1: जी
0: और इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है, जैसे आप
1: अच्छा
0: महीने का अपन 500 रुपये ले लें तो महीने के 500 रुपये किसी को अखरता नहीं है,
1: जी बिल्कुल
0: अगर हम बोलें कि आप 1 बार में 15,000 दीजिए तो वो उनको नहीं जमता,
1: जी जी
0: तो 500 रुपये महीने के ऐसे इंस्टॉल, क्योंकि ट्रीटमेंट लंबा चलता है साल
1: जी
0: भर 1.5 साल,
1: जी
0: तो
1: हाँ
0: उस हिसाब से इंस्टॉलमेंट में पेमेंट की जा
1: जी,
0: सकती है।
1: मतलब बहुत आसानी से दांतों को खूबसूरत बनाया जा
0: जी
1: सकता
0: जी
1: है। ये तो बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब, और निश्चित ही हमारी बहनें इसका लाभ उठाएंगी। और इसके अलावा कोई ऐसी बात जो
0: नहीं, मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि एक तो पायरिया का विशेष ध्यान रखें, हर 6 महीने में आप अपने दांत के डॉक्टर को जरूर दिखाएं, 6 महीने में 1 बार इलाज कराना या 6 महीने में 1 बार चेकअप कराना जरूरी है,
1: जी
0: उससे
1: जी
0: हमें पता चलेगा, और दांत की सफाई बराबर रखें।
1: जी डॉक्टर साहब, एक बात और मेरे ध्यान में बार बार आ रही है कि कई लोगों के दांत जो बहुत ज्यादा बाहर निकले रहते हैं,
0: जी
1: तो उन दांतों के लिए क्या किया जा सकता
0: देखिए
1: है?
0: क्या होता है, हमारे मुंह में उपदाढ़ करके होती हैं, जो 8 उपदाढ़ें होती हैं, उन उपदाढ़ों का कोई ज्यादा विशेष प्रयोग नहीं होता, ना खाने में ना कुछ।
1: जी
0: जब ये दांत बहुत ज्यादा बाहर हों तो हम एक एक उपदाढ़ हर जगह से निकाल के ये आगे के दांत पूरे पीछे ले लेते हैं, जो ट्रीटमेंट ये चलेगा ये 1 से 1.5 साल चलता है,
1: अच्छा,
0: और ये पूरे के पूरे दांत अंदर हो सकते हैं उनकी,
1: निकालने की आवश्यकता नहीं होगी इन्हें?
0: नहीं, ये
1: अच्छा
0: पूरी जगह भर जाएंगी, उनकी जो हंसी है या जो मुस्कुराहट है बहुत
1: जी
0: बढ़िया हो जाएगी उसके बाद, उनको शर्म नहीं आएगी कि मुंह बंद करते हैं तो अलग से दिखता है।
1: जी जी डॉक्टर साहब, एक बात और देखने में आई है कि कई बार दांतों के ऊपर दांत चढ़े रहते हैं,
0: जी
1: उसके कारण भी मतलब कहीं ना कहीं खूबसूरती प्रभावित होती है।
0: हाँ
1: कई
0: जी
1: बार ये लोगों का ये सोचना रहता है कि बहुत भाग्यशाली रहते हैं जिनके दांत पे दांत चढ़े
0: जी
1: होते हैं,
0: जी
1: इसलिए वो उपचार नहीं करवाते, तो ये भी एक भ्रांति है। तो इसका निवारण कैसे हो सकता
0: देखिए,
1: है?
0: दांत के ऊपर दांत जब होते हैं तो पहले जमाने कहा जाता था, लेकिन अभी इलाज कराना जरूरी है, उसका कारण एक ये है कि वहां पे अच्छे से सफाई नहीं हो सकती,
1: जी
0: जब
1: बिल्कुल
0: दांत आड़े तिरछे होंगे तो पायरिया की प्रॉब्लम और बढ़ती चली जाएगी,
1: जी
0: और ये परेशानी से अगर पूरा तरह से निजात पाना है तो दांत दिखने के लिए भी नहीं और सफाई के उससे भी अच्छे होने चाहिए, तो
1: जी
0: वो तार लगा के एक से करे जा सकते हैं, एक लेवल पे करे जा सकते
1: अच्छा,
0: हैं,
1: मतलब जो ऊपर चढ़े हुए दांत हैं उनको
0: उनको
1: लेवल में
0: भी,
1: ला
0: जी
1: सकते
0: जी
1: हैं,
0: बिल्कुल
1: उनको निकालने की
0: कोई
1: आवश्यकता नहीं
0: जरूरत नहीं,
1: होगी?
0: आज की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है मैडम इस
1: जी
0: फील्ड में,
1: जी
0: इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है इसको हम लोग ऑर्थोडोंशिया बोलते हैं,
1: जी
0: ऑर्थोडोंशिया का मतलब जरूर समझिएगा हमारी बहनें, क्योंकि ऑर्थो मतलब होता है स्ट्रेट सीधा और डोंशिया
1: अच्छा
0: मतलब दांत, तो आज के ज़माने में कोई भी परेशानी हो, दांत बाहर हो, आगे पीछे हो, ऊपर नीचे हो, हम उन
1: जी
0: सबको बराबर कर सकते हैं
1: जी ये
0: बिना
1: तो
0: किसी।
1: बहुत ही अच्छी बात है डॉक्टर साहब, और निश्चय ही हमारी बहनों को इन सब का बहुत ही लाभ मिलेगा। तो बहनों, आपकी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए और उसको और अधिक बढ़ाने के लिए डॉक्टर साहब ने जो जो बातें बताई है उसको मनन कीजिए, खर्च की चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपको एक साथ नहीं किश्तों में व्यय करना है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए अपने दांतों पर अवश्य ध्यान दीजिए। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत ही सुंदर ढंग से आपने हमारी बहनों की दांतों से संबंधित समस्याओं का निवारण किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मैम।
2: बहनों, अभी आपने ये भेंटवार्ता सुनी, विषय था खूबसूरत चेहरा और आपके दांत। इस विषय पर डॉक्टर साकेत जैन से बातचीत कर रही थी हमारी सहयोगी आशा पारे। बहनों, हमारा देश विविधताओं का देश है, हमारे यहाँ अलग अलग धर्म, जाति और संप्रदाय के लोग रहते हैं और सभी अपने अपने पर्व त्यौहार पूरी श्रद्धा और पूरे उत्साह उल्लास से मनाते हैं। इनमें से ही एक है

फारसी समुदाय का एक महत्वपूर्ण पर्व खोरदाद साल, जिसे खोरदाद जयंती के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए हम आपको थोड़ी जानकारी देते हैं। खोरदाद का संबंध पूर्णता, समग्रता और स्वास्थ्य से माना जाता है। खोरदाद साल के अवसर पर पारसी समुदाय के लोग विशेष रूप से अगियारी और आतिश बहराम जैसे अग्नि मंदिरों में जाकर प्रार्थना करते हैं। इस समय कई धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं और समुदाय के लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। पारसी समुदाय में अग्नि को पवित्रता और प्रकाश का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इस पर्व पर अग्नि के समक्ष प्रार्थना और धार्मिक विधियों का विशेष महत्व होता है। खोरदाद का संदेश केवल धार्मिक आस्था तक ही सीमित नहीं है, यह हमें जीवन में शुद्ध विचार, अच्छे कर्म, स्वास्थ्य और संतुलन का महत्व भी याद दिलाता है। पारसी धर्म की प्रसिद्ध शिक्षा अच्छे विचार, अच्छे शब्द और अच्छे कर्म मानव जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा देती हैं। बहनों, अपने देश में पारसी समुदाय संख्या में भले ही छोटा है, लेकिन देश के सामाजिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विकास में उसका योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। अपनी समृद्ध परंपराओं और मूल्यों को संजोते हुए पारसी समुदाय ने भारतीय समाज की विविधताओं को और अधिक समृद्ध किया है। तो बहनों, खोरदाद साल के पावन अवसर पर हम भी यही संकल्प लें कि हम अपने विचारों में सकारात्मकता, अपनी वाणी में मधुरता और अपने कर्मों में मानवता को स्थान देंगे। तो बहनों, चलें एक बार फिर से हम रुख करते हैं गीत संगीत का और आपको सुनवाते हैं यह खूबसूरत सा गीत।

0: भूल गए
1: जानी मेरा नाम
0: अच्छा
1: चोरी मेरा काम जानी मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
0: बंडल बाज
1: लड़के मिलन गीत गाता चल
0: बेशरम
1: प्यार का मौसम
0: बेशरम
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

और बहनों, इस गीत के साथ ही समय हो गया है आपसे विदा लेने का। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, साथ ही साथ जागरूक और सचेत रहिए। समय की मांग के अनुसार ही अपने विचारों में परिवर्तन लाते चलिए। आज बस इतना ही। अनुमति दीजिए सुधा मिश्रा को। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
4: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
5: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
3: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
4: आकाशवाणी है ना,
6: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
4: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
3: शाम सुहानी हो,
7: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
4: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
3: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भोले बिसरे पल, हर पल
4: सफर में
3: आपके साथ
4: आकाशवाणी।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:30 होने को हैं और ये समय होता है लोक संगीत के कार्यक्रम का। आज के लोक संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है। कलाकार हैं दिव्या तिवारी और साथी।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे दिव्या तिवारी और साथियों के गाए बुंदेली लोकगीत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति थी और अगला कार्यक्रम यानी सुगम संगीत का कार्यक्रम, ये कार्यक्रम भी आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है। कलाकार हैं दीप्ति मिश्रा और उनके साथी।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति थी। कलाकार थी मिश्रा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2 बजे हैं और लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में एक गीत जिसको हमने लिया है आपके दीवाने से। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, राजेश रोशन का संगीत है, सुनते हैं ये गीत।

0: है बड़ी दोस्तों दोस्ती के लिए शुक्रिया तुमको खुश देखकर मैं बहुत खुश हुआ।
1: अगला गाना लिया है हमने फिल्म कसम वादे से, एक बार आवाजें किशोर कुमार मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की हैं। गुलशन बावरा ने इस गाने को लिखा है, आर डी बर्मन का संगीत है। सुनिए ये गीत।

0: कस्मे वादे फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:10 होने गए। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रदेश में किसानों को रबी सीजन के लिए खाद उपलब्ध कराने और कृषि योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए एग्रीस्टिक पंजीयन, पैक सदस्यता और अग्रिम खाद उठाव अभियान आज से शुरू हो गया है। यह अभियान 15 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान किसानों की फार्मर आईडी बनाई गई और सुधारी जाएगी, पैक्स की सदस्यता बढ़ाई जाएगी। किसानों को पहले से

0: खाद लेने की सुविधा दी जाएगी। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड बनाने और 0% ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी की जाएगी। कृषि विभाग के अनुसार खाद बीज लेने, फसल बीमा, कृषि यंत्रों पर अनुदान और ई मंडी में फसल बेचने के लिए फार्मर आईडी जरूरी है। किसानों से अभियान का लाभ उठाने की अपील की गई है। सीहोर में प्रतिबंध के बावजूद एनालॉग पनीर बनाए जाने का मामला सामने आया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने बुधवार देर रात पचामा गांव स्थित एक डेयरी पर कार्रवाई कर करीब 25 क्विंटल एनालॉग पनीर जब्त कर सील किया। जांच में पनीर के पैकेट पर कंपनी और उत्पाद का नाम नहीं होने सहित लेबलिंग में कई अनियमितताएं मिली हैं। मौके से बड़ी मात्रा में नमक और शक्कर भी बरामद हुई। अधिकारियों के अनुसार प्रदेश में 12 अगस्त से एनालॉग पनीर के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध है। टीम ने पनीर के नमूने लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत सती गेट से गोपाल मंदिर तक मार्ग चौड़ीकरण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कंठाल चौराहा और सती माता मंदिर द्वार के प्रस्तावित विकास कार्यों की डिजाइन भी देखी। मुख्यमंत्री ने भगवान श्री चिंताहरण गणेश के दर्शन कर आशीर्वाद लिया।
1: और उज्जैन में हमारे अपने धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से जो बड़ी संख्या में यात्री आ रहे हैं, उनके प्रबंधन की दृष्टि से मार्ग चौड़ीकरण भी देखने जा रहा हूं। साथ साथ सिंहस्थ 2028 में जब कुंभ मेले का सिंहस्थ का आयोजन होगा, ऐसे में 30 से 40 करोड़ लोग जो आने वाले हैं, उनके प्रबंधन के लिए जो जिस प्रकार से यहाँ तैयारियाँ की जा रही है, मैं अपनी तरफ से जनता से भी इस बात के लिए जनता का आभार मानना चाहूँगा, जिन्होंने स्वेच्छा से अपने बड़े बड़े चौड़ीकरण के लिए प्रस्तावित मार्गों पर अपने स्वयं के निवास, व्यवसाय के संस्थान इत्यादि स्थान से अतिक्रमण हटाते हुए सभी धर्मों के लोगों ने जो सहयोग किया, मैं उनका आभार भी मानता हूँ।
0: कलेक्टर रोशन कुमार सिंह और नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने उन्हें निर्माण कार्यों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव पद पर पुनः निर्वाचित होने पर मध्य प्रदेश के अधिवक्ता प्रज्ञा बघेल को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। प्रज्ञा बघेल 18 अगस्त को नई दिल्ली में हुए चुनाव में सचिव पद पर निर्वाचित हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पद पर दोबारा निर्वाचित होने वाली मध्य प्रदेश की पहली महिला अधिवक्ता के रूप में उन्होंने प्रदेश का मान बढ़ाया है। उन्होंने प्रज्ञा बघेल के सफल कार्यकाल की कामना की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज धार जिले के पीथमपुर के सागौर में प्रताप समूह के एडवांस ऑप्टिकल फाइबर और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन और निरीक्षण किया। प्रदेश में मॉनसून लगातार सक्रिय है। अगले 24 घंटों में टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में 8 इंच तक बारिश हो सकती है। दतिया, भिंड, निवाड़ी, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, कटनी, मैहर और सतना में भी भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग के अनुसार 20 से 24 अगस्त के बीच बारिश का असर मध्य और पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर पड़ सकता है। भारी बारिश के कारण सतना के चित्रकूट में गुप्त गोदावरी की गुफाएं बंद कर दी गई हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग की बैठक शहडोल में आयोजित की गई। बैठक में जिले की भौगोलिक परिस्थितियों, जनसंख्या, क्षेत्रफल सहित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। शहडोल में बीते 3 दिन से लगातार पानी गिर रहा है। कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश का असर आम जनजीवन पर पड़ा है। नदी नाले उफान पर हैं। आगरमालवा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कल हुई जिला पोषण समिति की बैठक में कलेक्टर ने कहा कि जिले को कुपोषण मुक्त बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जबलपुर में 3 दिवसीय पारंपरिक दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन 2 शाम 7:10 पर। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और जापान के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में तमिलनाडु के कोवलम में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर चर्चा। भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक में सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श। बांग्लादेश में 35 वर्ष के अंतराल के बाद राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान जारी और त्रिशा

0: मयूरी तथा गायत्री गोपीचंद BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने, मेक इन इंडिया के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और रणनीतिक विश्वास बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्री कोइजुमी और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत किया। उन्होंने जापान के कुमामोतो क्षेत्र में आए भीषण भूकंप के बाद भारत की ओर से संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
1: हम यह दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस, रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है।
0: श्री सिंह ने कहा कि एशिया के दो प्रमुख लोकतंत्र होने के नाते भारत और जापान पर शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने की बड़ी जिम्मेदारी है।
1: हमारी मेरीटाइम लाइफलाइंस बढ़ती हुई वल्नरेबिलिटीज का सामना कर रही हैं। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओवरफ्लाइट और अनहिंडर्ड लॉफुल कॉमर्स को सुनिश्चित करना सिर्फ इकोनॉमिक नेसेसिटी नहीं है बल्कि यह एक स्ट्रेटेजिक इम्परेटिव भी है। इंडियन ओशन और पब्लिक ओशन की सुरक्षा आपस में गहरे रूप से जुड़ी हुई है, इसलिए इंडिया के महासागर विजन यानी म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन और जापान के फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव के बीच क्लोज अलाइनमेंट आज पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी है।
0: श्री कोइजुमी ने कुमामोतो में भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के एक जहाज में चिकित्सा आपात स्थिति के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा दी गई सहायता की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों के बीच सहयोग का प्रतीक है, जहां मुश्किल समय में दोनों देश एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। दोनों नेताओं ने समुद्री संचार मार्गों की सुरक्षा के लिए दोनों देशों के बीच समन्वय मजबूत करने पर सहमति जताई। इससे पहले आज सुबह जापान के रक्षा मंत्री ने राष्ट्र समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक तमिलनाडु के कोवलम में शुरू हो गई है। बैठक में दक्षिणी राज्यों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। बैठक में महिलाओं और बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामलों की जल्द जांच और सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें बनाने तथा शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय सहयोग, आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक विकास, औद्योगिक निवेश और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ब्रिक्स अध्यक्षता को जन केंद्रित बनाने और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री यादव ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित अपने लेख को सोशल मीडिया पोस्ट में साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत मिशन लाइफ के सिद्धांतों पर आधारित सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने के साथ साथ वनीकरण, जंगलों में आग की रोकथाम, आपदा से निपटने की क्षमता और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित जन केंद्रित जलवायु अनुकूलन पर बल दे रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सम्मेलन का आयोजन 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में होगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि भारत की अतिथि देव भव की परंपरा के अनुरूप दिल्ली सभी विदेशी प्रतिनिधियों के सुव्यवस्थित, सुरक्षित और गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। चौथी भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक आज सिंगापुर में हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य, उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बैठक में हिस्सा लिया।

0: एक रिपोर्ट।
1: बैठक में डिजिटल तकनीक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संचालन और साइबर सुरक्षा जैसे रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में उन्नत विनिर्माण, फिनटेक, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य और सतत विकास के क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर बल दिया गया। डिजिटल कौशल विकास में सहयोग को नई गति देने पर भी चर्चा हुई। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक दोनों देशों के बीच नए और उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण मंच है। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी, दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
2: भारत ने काबुल के एक सरकारी अस्पताल को दवाइयां और चिकित्सा सामग्री भेजी हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह सहायता अफगानिस्तान के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत के निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका उद्देश्य अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। भारत और नेपाल के बीच सीमा प्रबंधन पर चौथी संयुक्त कार्य समूह की बैठक आज उत्तराखंड के देहरादून में शुरू हुई। दो दिन की इस उच्च स्तरीय बैठक में सीमा सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तथा आपसी हित के अन्य मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति के पूरा वंदे मातरम गाने के बजाय इसके केवल दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह संसद से पारित कानून का खुला उल्लंघन है और राष्ट्रविरोधी है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री शाह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एक बार फिर वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टिकरण का रास्ता अपना रही है।
3: मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के दो टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलेगी। आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी।
2: वंदे मातरम पर कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाए जाने के बाद कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वर्ष 1937 से वंदे मातरम का गायन करती आ रही है। नई दिल्ली में श्री वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लिए भावना का मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति का मुद्दा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बने 2,35,000 घरों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी। उन्होंने नए लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। श्री चौहान आज पटना के बामेटी में आयोजित कृषि जन कल्याण संवाद में भी शामिल होंगे। वाणिज्य विभाग में अपर सचिव यशवीर सिंह ने कहा है कि भारत के निर्यात में प्रगति मुक्त व्यापार समझौतों के प्रभावी इस्तेमाल, विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं, आपूर्ति श्रृंखला को देश में ही विकसित करने और नए बाजारों तक पहुंच बनाने पर निर्भर करती है। उन्होंने बात भारतीय उद्योग विनिर्माण संघ के तीसरे सम्मेलन में कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आज नई दिल्ली में दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से पर्यावरण संरक्षण सहित सभी क्षेत्रों में विकास कार्य में निरंतर प्रगति हो रही है।
4: हमारे पर्यावरण मंत्री सिरसा जी ने और रेखा जी ने मिलके दिल्ली के अंदर 70,00,000 पेड़ लगाने की मुहिम छेड़ी और बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है। पोर्टल के माध्यम से दिल्ली में कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवा करके उसके बाद दिल्ली सरकार उनको अप्रोच करेगी, उनको पेड़ देगी या उनको ऐसे स्थान पर बुलाएगी जहां पर ग्रीन कवर बढ़ाने की बात है।
2: कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान को दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा अभियान बताया।
0: एक पेड़ माँ के नाम 2.0 जो देश के प्रधानमंत्री जी ने सेकंड मुहिम शुरू की है, इसमें अब तक 50 लाख पेड़ और पौधे लग चुके हैं। ये दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा अभियान है। पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर करके अब तक 3.5 लाख पेड़ लगाए जा चुके हैं, जिसमें लगभग 1,58,000 पब्लिक के लोगों ने आकर साथ दिया। ऐसे अनेकों हमारे मुहिम चल रही है। हम दिल्ली के अंदर एक बड़ा प्रचार प्रसार

0: इस पर्यावरण को बचाने के लिए कर रहे हैं।
1: जम्मू जिले के खेरी गांव में जमीन धंसने से करीब 12 मकानों को नुकसान पहुंचा है। इनमें 2 मकानों को काफी नुकसान हुआ है। कृषि भूमि और 1 सड़क भी प्रभावित हुई है। राजस्व तथा पुलिस की टीमों ने मौके का जायजा लिया है और राहत और बचाव कार्य जारी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए जातीय संसद में मतदान हो रहा है। मतदान 5 बजे तक चलेगा। सत्ताधारी दल के सांसद BNP के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद से होगा। रूस ने कल रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों से हमला किया। इसमें 6 लोग मारे गए और 33 घायल हुए। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब रूस कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को तेज कर रहा है, जिससे यूक्रेन की सीमित हवाई रक्षा क्षमताओं पर और दबाव बढ़ रहा है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
2: नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने जापान की 7वीं वरीयता प्राप्त रिन इवानागा और की नाकानिशी को हराया। खेल के बाद मीडिया से बातचीत में गायत्री और त्रिशा ने कहा कि वे मैच के शुरुआती 2-3 अंकों में ही विपक्षी खिलाड़ियों की रणनीति समझ गई थी। उन्होंने बताया कि पहले गेम के दूसरे हिस्से में उन्होंने आक्रामक खेल अपनाया और यही रणनीति दूसरे गेम में भी जारी रखी, जिसका उन्हें फायदा मिला। सिंधु समेत भारत के कई प्रमुख खिलाड़ी आज अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। सिंधु का सामना चीन की वांग झी यी से होगा। युवा खिलाड़ी आयुष शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के जुनेदी आरिफ और रॉय किंग याप से होगा। वहीं मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी चीन के गुओ शिन वा और चेन फांग हुई से खेलेगी। और हॉकी में FIH विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड के साथ मुकाबला खेलेगी। ये मैच अम्स्टलफेन के वैगनर स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा।
1: घरेलू शेयर बाजार सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में तेजी बनी रही। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 668 अंक बढ़कर 77,577, जबकि निफ्टी 169 अंक की बढ़त के साथ 24,248 पर कारोबार कर रहा था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन तक तेज वर्षा हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और जापान के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। तमिलनाडु के कोवलम में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में अंतर्राज्यीय विवाद, सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर चर्चा। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श। बांग्लादेश में 35 वर्ष के अंतराल के बाद पहली बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी। और त्रिशा जॉली तथा गायत्री गोपीचंद BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है आपकी फरमाइश, और आपकी फरमाइश में मैं हूं आपके साथ जावेद खान। और पहला गाना हमने लिया है, फिल्म का नाम है ललकार, और आवाजें हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की। हसरत जयपुरी ने इस गाने को लिखा है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, लिखने वाले हैं कालका से शुभचंद्र बजाज, चंद्रमोहन, इंद्रमोहन, बिट्टा बजाज और उनके परिवार के दूसरे सदस्य से।

सेक्टर 67 मोहाली पंजाब से टीएस मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है आशा रेडियो श्रोता संघ मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से। लिखने वाले हैं अभिजीत गायकवाड़ राही, सरिता गायकवाड़, प्रिंस एकांश गायकवाड़, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गायकवाड़, प्रतीक प्रणीता गायकवाड़, अर्जुन गायकवाड़ टुक टुक, आकार हाइट्स बहादुरपुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गायकवाड़, सुमित गायकवाड़, कुमारी ध्वनि और उनके परिवार के सदस्य। सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म बेईमान से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की। वर्मा मलिक ने इस गाने को लिखा है और शंकर जयकिशन संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, इस गाने को हम बाद में सुनवाएंगे, लेकिन हम पहले आपको सुनवा रहे हैं

फिल्म राखी का एक गाना, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, राजेंद्र कृष्ण ने इस गाने को लिखा है, रवि का संगीत है और इस गाने को पसंद किया है पाकिज़ा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से, मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकम खत्री, अलतमश खत्री, राकेश गौड़ और शादाब खत्री ने इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है। लच्छनपुर से लिखने वाले हैं रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू और उनके परिवार के दूसरे सदस्य इसी गाने को पसंद किया है। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक, समस्त डागला परिवार, सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म मधुमती से, आवाज़ें हैं मुकेश और साथियों की, शैलेंद्र ने इस गाने को लिखा है, सलील चौधरी का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषि का रॉबिन और उनके परिवार के दूसरे सदस्य, डोगर गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबीय, राधिका गजबीय, बेबी अनिष्का, तन्मय गजबीय और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। और इसी गाने को पसंद किया है जयराज प्लॉट राज कोर्ट से मधुसूदन भट्ट, आरती पूजा, जासमीन और प्रयागराज भट्ट ने।

अगला गाना लिया है हमने किशोर कुमार की आवाज़ में, और दूसरी आवाज़ है इसमें लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है खुद्दार। इस गाने को पसंद किया है आसिफ अली सिद्दीकी, छबड़ा राजस्थान से, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो ने, और गौतम नगर ज़िला नादेड़ से प्रभाकर जौंदले, आरती जौंदले और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने को पसंद किया है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया ने। सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म खुद्दार से, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की। गुलशन बाबरा ने इस गाने को लिखा है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है शाहू नगर यवतमाल से, राहुल मनवर, सल्ला मनवर, विशाल मनवर, चेतन मनवर, रोशनी मनवर, स्वीट बेबी प्रियांशी। और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून, डोंगराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा दानिश अंसारी, और सरीमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी, जेल रोड दिल्ली से बाबूलाल दीवाना और दिव्या भारती। सुनते हैं ये गीत।

आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म धर्मवीर का एक गाना, आवाज़ें हैं मुकेश और मोहम्मद रफ़ी की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और इस गाने को पसंद किया है दतरंगी। छत्तीसगढ़ से लिखने वाले हैं भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लक्षनपुर से विश्वनाथ साहू, चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू और उनके सदस्य, ग्राम राजोनिया जिला जालौन यूपी से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श चंसोलिया सार्थक और उनके परिवार के दूसरे सदस्य इसी गाने को पसंद किया है। कबाई बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, हेमलता श्रीवास्तव, हेमानी हर्षिता, अभिषेक श्रीवास्तव और उनके परिवार के दूसरे सदस्य।

0: इसी गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:58 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज धार जिले के पीथमपुर के सागौर में प्रताप समूह के एडवांस ऑप्टिकल फाइबर और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन और निरीक्षण किया। प्रदेश में किसानों को रबी सीजन के लिए खाद उपलब्ध कराने और कृषि योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए एग्रीस्टेक पंजीयन, पैक सदस्यता और अग्रिम खाद उठाव अभियान आज से शुरू हो गया है। यह अभियान 15 सितम्बर तक चलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत सती गेट से गोपाल मंदिर तक मार्ग चौड़ीकरण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कंठाल चौराहा और सती माता मंदिर द्वार के प्रस्तावित विकास कार्यों के डिजाइन भी देखी। सीहोर में प्रतिबंध के बावजूद एनालॉग पनीर पाए जाने का मामला सामने आया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने बुधवार देर रात पचामा गाँव स्थित एक डेयरी पर कार्रवाई कर करीब 25 क्विंटल एनालॉग पनीर जब्त किया है। और प्रदेश में मॉनसून लगातार सक्रिय है। अगले 24 घंटों में टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर और दमोह में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। आइए हम आपको बता दें शाम की सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। शाम 5:02 पर आप सुनेंगे युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युवाणी। आज की युवाणी आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति होगी। फिल्म संगीत का आनंद ले सकते हैं 5:33 पर। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम होगा 6:00 और 6:30 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत। 7:30 पर आप सुन सकते हैं किसान वाणी और 7:25 पर आप सुनेंगे बुंदेली समाचार। 8:00 के समय है कार्यक्रम सुर्खियों में और 8:15 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत। फिल्म संगीत 9:30 पर भी आप सुन सकते हैं और आपकी फरमाइश कार्यक्रम रात 10:00 होगा। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी में आज हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर प्रभा आत्रे का गाया ख्याल गायन, राग होगा मधुमती। समय है 10:30। ये थे आज की शाम की सभा में प्रसारित होने वाले आकाशवाणी मध्य प्रदेश और आकाशवाणी भोपाल के मुख्य कार्यक्रम।

अब हमारा मीडियम वेव पर प्रसारण कुछ देर के लिए बंद होता है। अब से कुछ ही देर बाद यानी शाम 5 बजे से आप मीडियम वेव पर प्रसारण पुनः सुन सकते हैं। इस बीच डीटीएच के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा।

0: हमारे सभी सुनने वालों को चंचल वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम सखी सहेली लेकर हम आ चुके हैं और आज मेरे साथ हैं इस मंच पर आरती श्रीवास्तव। आपको भी नमस्कार आरती।
1: चंचल जी, आपको और साथ ही सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: तो नमस्कार के बाद हम बताते हैं कि आज हम क्या बातें करने वाले हैं, मतलब किन विषयों पर बात करें।
1: तो आज हम लेकर आए हैं विषय विलुप्ति की ओर भाषाएं और बोलियां। जो भाषाएं कहते हैं ना, हमारा देश जो है वो विविधता से भरा हुआ है।
0: हाँ।
1: तो इसमें बहुत ही अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं, तो उनमें से कुछ भाषाएं ऐसी हैं जो अब विलुप्ति की कगार पर आ गई हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो
0: उनकी और संवाद के लिए भाषा का बहुत बड़ा महत्व होता है। सबका संवाद करने का अपना एक तरीका होता है, अपनी एक जरिया होता है, वो होता है भाषा।
1: बिल्कुल।
0: और कई बार जिनके पास भाषा नहीं होती, वहाँ इशारों में भी बातें होती हैं, लेकिन भाषा का अपना एक अलग महत्व है। बहुत सारी भाषाएं हम देखते हैं कि आज जिनका महत्व खत्म हो रहा है, विलुप्त हो रही हैं, उन्हीं के बारे में बात की जाएगी।
1: जी।
0: और आज क्योंकि गुरुवार का दिन है, तो एक ऐसी शख्सियत की हम बात करेंगे जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। तो आज वो कौन है?
1: वो हैं गोदावरी दत्त, जो कि एक चित्रकार हैं और बहुत ही संघर्षशील महिला हैं, तो उनके बारे में
0: और
1: बात करेंगे।
0: चित्रकार की बात आती है ना, तो चित्रकारी में बहुत सारी शैलियां होती है ना, अलग अलग तरह की चित्रकारी या रंग बिरंगी पेंटिंग्स हम बनाते हैं, तो
1: हाँ,
0: कुछ खास शैली इनकी है।
1: बिल्कुल।
0: उसके बारे में अगर आप नाम से वाकिफ हैं गोदावरी दत्त के, तो समझ गए होंगे, नहीं तो बस थोड़ी देर का इंतजार कीजिए जब हम बात करेंगे गोदावरी के बारे में। और मुझे कुछ कहना है, तो क्या कहना है?
1: मुझे कुछ मत कहो इस बारे में, क्योंकि हो सकता है ये चीज़ें मेरे लिए ही हो, क्योंकि इसमें लिखा है जीने के लिए खाना या खाने के लिए जीना। मुझे खाना बहुत पसंद है, जैसे
0: हाँ।
1: कि आप जानते हैं, और सारी सखियां, सब सखा, सब जानते हैं कि मुझे खाना बहुत पसंद है।
0: तो हम सब जीते हैं, जीने के लिए खाना वाकई में बहुत ज़रूरी है। अगर हमें एक सेहतमंद जीवन यापन करना है, तो उसके लिए खाना क्या होना चाहिए, इस बारे में सोचना ज़रूरी है। लेकिन जब हम खाने के लिए जीना शुरू करते हैं ना, तो अनाप शनाप या किसी भी समय कुछ भी खाते हैं, और खाने के जो बहुत शौकीन लोग होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, सिर्फ खाने के लिए ही जीते हैं, ऐसा लगने लगता
1: अलग
0: है।
1: अलग तरीके की चीज़ों का स्वाद लेना उन्हें अच्छा लगता है।
0: हाँ,
1: चटोरापन कह सकते हैं।
0: हाँ, चटोरेपन के बारे में हम पहले भी बातें कर चुके हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि खाने के लिए अगर जब आप जीना शुरू कर देते हैं, तो किस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ सकता है।
1: बिल्कुल।
0: तो जीने के लिए खाना या खाने के लिए जीना, इस पर हमारे श्रोताओं के क्या विचार हैं?
1: बिल्कुल, अपने विचार एकदम ईमानदारी से लिखिए आप।
0: हाँ।
1: कि आपको क्या लगता है कि आपको मतलब कभी कभी खाना चाहिए ये चीजें,
0: जी,
1: या फिर हमेशा ही इस तरह से कि आपको हर दूसरे दिन खाना है, ये चीजें आप
0: ये
1: बताइए।
0: सेगमेंट है मुझे कुछ कहना है, तो हमारे श्रोताओं का क्या कहना है इस बारे में वो जरूर कहिए। और कुछ उपयोगी टिप्स हम बताएंगे, जिसमें कपड़ों की उम्र किस तरह बड़ी की जा सकती है, इसके बारे में बात होगी। और आज क्योंकि 20 तारीख है, आज है सद्भावना दिवस।
1: बिल्कुल, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो क्योंकि देखिए, सद्भावना का मतलब क्या होता है? सद और भावना, यानी कि अच्छी भावना, अच्छी
0: और
1: भावना से किया हुआ कार्य।
0: 20 अगस्त यानी कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न राजीव गांधी जी की जयंती का ये खास मौका होता है, जिस दिन इस दिन को हम आयोजन करते हैं। और इसका उद्देश्य यही है कि पूरे देश में प्रेम हो, आपसी भाईचारा हो, शांति हो, एकता हो, और सौहार्द की भावना जो है वो बनी रहे।
1: बिल्कुल। और जैसे कि हमने पहले भी बताया कि विविधताओं का देश है भारत, यहाँ अलग अलग धर्म, भाषाएं, संस्कृतियाँ और परंपराएं रही हैं। यही विविधता हमारी ताकत भी है, और सद्भावना दिवस हमें याद दिलाता है कि हमें जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के भेदभाव से ऊपर उठकर एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए।
0: और इस अवसर पर बहुत सारे जो संस्थाएं हैं, वहां पर सद्भावना प्रतिज्ञा भी दिलाई जाती है। जो स्कूल्स हैं, विद्यालय हैं, वहाँ पर उन संस्थानों में भाषण, रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कई तरह की जागरूकता की गतिविधियाँ भी होती हैं। कुल मिला के सिर्फ यही संदेश दिया जाता है कि देश में एकता बनी रहे, सद्भावना बनी रहे।
1: बिल्कुल, शांति बनी रहे, जिससे कि सब एक दूसरे के लिए सोचें, अच्छी भावना से काम करें।
0: और ये खाली एक संदेश देने की बात नहीं है, संदेश देने का दिन नहीं है, लेकिन हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा होनी चाहिए ये बातें आरती। और हम सबको मिलकर ये चीज़ बड़ी दृढ़ता से संकल्प ले लेना चाहिए कि हम सब एक दूसरे के प्रति सम्मान रखेंगे, प्यार रखेंगे, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। और इसी तरह तो

0: मिलजुल कर देश एकता और अखंड रहेगा, मजबूत बनेगा।
1: बिल्कुल। और हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि जहाँ पर प्रेम है, सद्भावना है, वहीं पर शांति भी है और प्रगति भी है।
0: तो अब गाने में थोड़ा सा आगे बढ़े, प्रगति करें एक गीत के
1: एक गीत
0: साथ।
1: सुनते हैं।

0: तुम्हें ध्यान है जो गांवों में घर होते हैं वहां बहुत सारे चित्र बने होते हैं, तो जब ये मैं गाना सुन रही थी ना, बच के शिकारी शिकार करना, तो जानवरों के या किसी जानवर को उसके साथ खेलते हुए, उनका शिकार करते हुए, उनको पालन पोषण करते हुए, इस तरह के भी भित्ति चित्र बनाए जाते
1: हाँ,
0: हैं।
1: वो घर इतने सुंदर दिखते हैं ना, इतने सुंदर सुंदर रंग बिरंगे रंगों से जब वो उनको चित्र बने हुए होते हैं उसके
0: हाँ,
1: ऊपर, बहुत सुंदर लगते हैं।
0: और सबसे खास बात ये होती है आरती कि प्राकृतिक जो चीजें हुए उनका इस्तेमाल किया जाता
1: हाँ
0: है, किस तरह का, जैसे बहुत सारी पेंटिंग में हम ऑयल पेंट या इस तरह के पेंट देखते हैं ना कि उनका इस्तेमाल किया जाता है, कुछ केमिकल्स भी होते हैं, लेकिन ये जो गांव में भित्ति चित्र बनाए जाते हैं या जो वहां रंग रोगन किया जाता है वो सिर्फ प्राकृतिक रंगों से बनाया जाता है। और आज हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं वो हैं गोदावरी दत्त, जो ऐसे ही रंगों का इस्तेमाल करके अपनी कूची से बड़े खूबसूरत चित्र बनाती हैं, और मधुबनी जो शैली है चित्रकला की उसमें इन्हें महारत हासिल है।
1: बिल्कुल।
0: हमारे श्रोताओं से हमने कहा था कि वो पहचाने कि नहीं, लेकिन हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने यह अनुमान लगाया और इनके बारे में बहुत सारे संदेश भी हमें भेजे हैं गोदावरी दत्त के बारे में।
1: बिल्कुल। और जब भी मधुबनी शैली की चित्रकला का जिक्र होता है तो लोगों के जहन में गोदावरी दत्त का नाम शीर्ष पर आता है। और गोदावरी दत्त का जन्म हुआ था बिहार के दरभंगा जिले के बहादुरपुर गांव में 7 नवंबर 1930 को। उस समय मधुबनी पेंटिंग की कोई खास पहचान नहीं थी और ना ही उसको

0: लेकर लोगों में ज्यादा जिज्ञासा ही थी।
1: बिल्कुल ज्यादा जिज्ञासा नहीं थी, वो केवल जो शादी ब्याह के मौके होते थे, कोई खास त्योहार है, पर्व है, तो उस अवसर पर जो घर की महिलाएं होती थी बस
0: हाँ
1: वही ये पेंटिंग बना दिया करती थी। अलग से कोई कारीगर भी नहीं आते थे, घर की महिलाएं ही बड़ी होशियार हुआ करती थी, और पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो सिलसिला था वो चलता रहा। तो इसी तरह से महिलाएं जो घर की थी बड़ी लगन से चीजों को सीख लिया करती थी, अलग से कोई किसी क्लास में जाकर नहीं सीखती थी,
0: हाँ जैसे
1: अपने घर की
0: आज
1: जो बड़ी बूढ़ी महिलाएं होती हैं, जो अपने आगे जो वो जो लोग काम कर रहे थे उन्हीं को देखते देखते वो सीख जाती हैं, और होश संभालते बड़े होते माँ मौसी चाची दादी उनको देख कर घर की जो महिलाएं हैं वो भी चित्र बनाने लगी, और इसी तरह से ये उनकी पाठशाला हुआ करता था।
0: बिल्कुल, संयुक्त परिवार होते थे उस समय, तो सब साथ में होते थे, तो कोई कोई भी सिखा देता था, है
1: जी
0: ना, तो सब आपस में ही सीख लेते थे जब ये सब चीजें। तो गोदावरी दत्त जब बहुत ही छोटी थी तब उनके पिता रास बिहारी दास का निधन हो गया, और माँ सुभद्रा देवी मधुबनी पेंटिंग की दक्ष कलाकार थी।
1: क्या बात
0: उन्होंने
1: है।
0: पूरी लगन से अपनी बेटी को इस कला की बारीकियां सिखाई, और जल्द ही गोदावरी की उंगलियां ब्रश पकड़ने में सिद्धहस्त हो गई और वो दीवारों पर चित्र बनाने लगी।
1: और गोदावरी की औपचारिक शिक्षा जो है वो बहुत ही कम हुई, शायद 8वीं 9वीं तक ही हो पाई उनकी शिक्षा, और बहुत छोटी सी उम्र में उनकी शादी भी कर दी गई उपेंद्र दत्त के साथ में। लेकिन इनका जो वैवाहिक जीवन था वो बहुत अच्छा नहीं रहा। इनके तो जो पति थे उन्होंने इन्हें छोड़कर दूसरी शादी कर ली, लेकिन उस वक्त तक वो एक बेटे की माँ बन चुकी थी।
0: बिल्कुल, और वो इस संकट की घड़ी से घबराई नहीं, और अपनी माँ से बचपन में सीखी कला को ही उन्होंने अपनी जीविका बनाने का फैसला किया। इस विपरीत परिस्थिति में भी मधुबनी पेंटिंग गोदावरी दत्त के जीवन का सहारा बनी।
1: और जैसे कि हमने कहा ना बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई थी, तो छोटी उम्र में बचपना भी था उनके अंदर, तो उनके जो वो किस्से बताती हैं उन्होंने बताया कि एक बार उनके यहाँ बायोस्कोप दिखाने वाला आया और घर के सारे बच्चे बायोस्कोप देखने लगे, तो उनको भी लगा कि भाई बायोस्कोप देखना चाहिए, उन्होंने जिद की। लेकिन उनकी जो सास थी वो बड़ी अच्छी थी, उन्होंने इस बात को अन्यथा नहीं लिया और वहां से सारे पुरुषों को हटाया और भाई अपनी बहू को बायोस्कोप देखना है इसके लिए वो दिखाने ले गई। और बायोस्कोप में उन्होंने देखा कि माता यशोदा गाय को दूह रही हैं और जो कृष्ण छोटे से बालक हैं वो वहां बस एक गिलसिया लिए खड़े हैं दूध पीने के लिए अपना इंतजार करते हुए।
0: और वो बताती हैं, गोदावरी दत्त बताती हैं कि रात भर बायोस्कोप का वो चित्र उनके मन मस्तिष्क में घूमता रहा, उनसे रहा नहीं गया, और लकड़ी के संदूक में से एक कागज निकालकर उस पे उन चित्रों को उन्होंने जो देखा था वो उकेर दिए, फिर उसे छुपाकर वहीं रख दिया। कुछ दिन बाद उनके जो जेठ जी थे वो आए, वो जमीन से जुड़े एक दस्तावेज की तलाश कर रहे थे जो कहीं मिल नहीं रहा था, सब परेशान थे। गोदावरी से पूछा गया तो अचानक उन्हें याद आया, उन्होंने अपने संदूक से निकालकर उन्हें दिखाया तो वो वही कागज था,
1: बिल्कुल, जिस पर उन्होंने वो चित्र
0: हाँ
1: बना
0: चित्र
1: दिया था।
0: बना दिए थे।
1: और गोदावरी बहुत खुशी के साथ और मासूमियत में इसके साथ साथ इस बात को बताती हैं कि सब लोग जब उस दस्तावेज पर जो उन्होंने चित्रकारी की थी उसे देखकर बहुत खुश हुए, उनकी बहुत प्रशंसा भी की, और भूलवश गोदावरी ने उस जो दस्तावेज था उसे कोई सादा कागज समझकर उसके ऊपरी हिस्से पर वो पेंटिंग बना दी थी। और जब भी वो उस घटना को याद करती हैं तो आज भी जो कहते हैं ना कि एक हंसी मुस्कुराहट या प्रसन्नता वो उनके चेहरे पर आ जाती
0: बिल्कुल,
1: है।
0: तो वो बताती हैं कि उस समय गांव घर में जनेऊ शादी ब्याह और गृह प्रवेश के अवसर पर घर दरवाजों पर मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती थी। उन दिनों परिवारों में शादी ब्याह के अवसर पर दो कोहबर, एक कमलदह, एक दशावतार और बांस का चित्र बनाने की परंपरा थी।
1: तो भाई हमारे कार्यक्रम की परंपरा क्या है, हम बात करते करते
0: गीत
1: गाने भी
0: सुनवाते
1: सुनते
0: हैं।
1: हैं, तो सुन लें।
0: हाँ

0: तो हम बात कर रहे थे गोदावरी दत्त के बारे में। आरती, आपने बताया कि किस तरह के चित्र बनाने की परंपरा थी, क्या चित्र बनाए जाते थे शादी ब्याह के अवसर पर, और ये ऐसा दौर था जब मिथिलांचल में ग्रामीण परिवेश की महिलाओं को घर की दहलीज लांगने तो बहुत दूर की बात हो गई, पुरुषों से बात करने तक की इजाजत भी नहीं दी जाती थी। उस समय मधुबनी में वस्त्र मंत्रालय का एक कार्यालय खुला, तब ए ग्रेड की पेंटिंग के 10 रुपए और बी ग्रेड की पेंटिंग के 7 रुपए और सी ग्रेड की पेंटिंग के 5 रुपए मिला करते थे। इस तरह से पेंटिंगों को अलग अलग उनके स्तर के हिसाब से बांटा गया था, और गोदावरी जी जो थी वो पेंटिंग बनाने में जुट गई, तो उनके चित्र जो थे वो भी बिकने लगे। एक विदेशी कलाकार ने उनकी पेंटिंग के 25 रुपए दिए, मतलब इतने महंगे दाम में उस वक्त खरीदा, और उसके बाद जगह जगह उनके चित्रों की प्रदर्शनी लगने लगी। पटना, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, चित्तौड़, रांची, त्रिवेंद्रम, सूरजकुंड, दिल्ली हाट, यानी कहाँ कहाँ तक उनके जो चित्र बनाए गए थे उनकी प्रदर्शनियाँ लगने लगी, और खूब सराहना होती थी, खूब बिक्री भी होती थी उनके चित्रों की।
1: बिल्कुल, और उन्हें पारंपरिक और मिथकीय विषयों के साथ साथ प्रकृति को सहजता से मधुबनी पेंटिंग में उकेरने में दक्षता हासिल है। वो शुद्ध रूप से भारतीय लोक लोकाचार, संस्कृति और रीति रिवाज की कलाकार हैं, और अपने विषय पौराणिक आख्यानों एवं प्रकृति से प्राप्त करती हैं। वो प्रकृति के जो जुड़े हुए होते हैं उसमें वो अपने जो विषय होते हैं उनको लेती हैं। मधुबनी पेंटिंग की कचनी शैली के अनुसार उनमें धैर्य भी है, जिससे वो अपने चित्रों में उत्कृष्ट पूर्णता और इच्छित प्रभाव उत्पन्न करती हैं। उन गोदावरी दत्त की कला की विशेषता रेखाओं की स्पष्टता में है। रेखाएं एकदम से सही और एक दूसरे से आबद्ध होकर चित्रों में एक तिलिस्म सा पैदा करती हैं। जब बिल्कुल अच्छी तरीके से उन चीज़ों को उकेरा जाए तो वो कला में जादुई असर पैदा हो जाता है।
0: बिल्कुल सही।
1: बिल्कुल, अपनी सुस्पष्ट सोच और तल्लीनता से रेखाओं में वो मानो प्राण फूंक देती हैं। इनकी एक और विशेषता है कि वो अपने चित्रों में पर्याप्त विश्राम देकर जो प्रत्येक आकृति है उसको उभरने का पूरा मौका देती
0: तभी तो उन्हें इतनी अलग से पहचान मिली है।
1: बिल्कुल, ये रंगों का प्रयोग कम से कम करती हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर कागज या कपड़े पर खाका बनाकर उसके मध्य में बांस की सीख में बंधे कपड़े या धागे से अपेक्षित रंगों को भरने में भी इन्हें महारत हासिल है कि जहां पर बहुत जरूरी होता है वहीं पे ये रंगों का उपयोग करती हैं। और देश विदेश में गोदावरी दत्त के चित्रों की अब तक अनगिनत प्रदर्शनी लग चुकी है। इन्होंने अब तक हजारों महिलाओं को प्रशिक्षित किया है, उनकी सहायता भी की है, उनके कई शिष्यों को राष्ट्रीय सम्मान और पहचान मिल चुकी है। उन्होंने कागज के अलावा रेडीमेड वस्त्र, शॉल और कुशन कवर और साड़ी और जैकेट आदि पर, ये इतनी सारी जो चीजें, इन सब पर उन्होंने मधुबनी पेंटिंग के चित्र को बढ़ावा दिया है, बनाया है।
0: और बहुत सारे सम्मान भी इसके लिए वो पा चुकी हैं। देश विदेश में अलग अलग संस्थानों के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है। बिहार सरकार के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, शिल्प गुरु पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार और राज्य स्तर पर भी कई पुरस्कार उन्हें प्राप्त हो चुके हैं, और 2019 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। और बिल्कुल, ये जो मधुबनी पेंटिंग है सचमुच धरोहर है, जो उन्होंने बनाकर हमें सहेज कर दी है।
1: बिल्कुल,
0: और अब सुने एक गाना।
1: एक गीत।

0: तो भाई गीत के बाद में अब हम बात करेंगे उन भाषाओं की, उन बोलियों की जो कि अब विलुप्त हो रही हैं। और हमने शुरू में ही बताया था कि हमारा देश है वो विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ बहुत सारी भाषाएं, बोलियाँ, संस्कृति हैं यहाँ की, और जो सालों से चली आ रही हैं, और ये हमारे देश के समृद्ध इतिहास का परिचय भी करवाती हैं आरती,
1: बिल्कुल
0: और जीवंत समाज के बारे में बताती हैं। लेकिन बहुत अफसोस है इस बात का कि इनमें से बहुत सारी भाषाएं अब गायब हो रही हैं, और कुछ गिने चुने लोग हैं जो इन भाषाओं के बारे में जानते हैं या इन्हें बोलते हैं। और बताऊं आरती, तुम्हें जानकर ये हैरानी भी होगी कि 19,000 से ज़्यादा भाषाएं हैं जो भारत में बोली जाती हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। और जैसे हम अभी गीत सुन रहे थे, कितना प्यारा सा गीत था ना, तो ये भी भाषा के जरिए ना हम तक पहुंचा।
0: बिल्कुल
1: और हर भाषा का अपना अपना गीत है, संगीत है, पूरी एक समझ लीजिए पूरी सभ्यता ही है इसको लेके चलती है जो
0: कहते
1: भाषा।
0: तो हैं कि कोस कोस पे पानी बदले तीन कोस पे वानी।
1: इन जो 19,000 से बताया आपने जो भाषाएं हैं, उनमें से 121 ऐसी मातृभाषाएं हैं जिन्हें 10,000 से ज्यादा लोग बोलते हैं। और इन 121 भाषाओं में से 22 ऐसी हैं जिन्हें संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत भाषा का दर्जा भी दिया गया है, जो है असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी भाषा, ये संविधान में सूचीबद्ध
0: ये
1: हैं।
0: तो तुमने उन भाषाओं के नाम बताए जो सूचीबद्ध भाषाएं हैं, लेकिन बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं जिनको कोई सूचीबद्ध नहीं किया गया, उनकी अपनी कोई लिपि नहीं, कोई शैली नहीं, लेकिन फिर भी उन भाषाओं को सुरक्षित तरीके से रखने की ज़रूरत है ताकि लोग उनके बारे में जानें। और ये हो सकती हैं जैसे अंगिका, बंजारा, बाजिका, भोजपुरी, भोटी, भोटिया, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, कोड़वा, काकबुरा।

0: शोर सैनी, सिरकी, निकोबारी, पाली, राजस्थानी, नागपुरी, मुंदारी, मगही, तुलू, ऐसी बहुत सारी भाषाओं की ये भी एक लंबी लिस्ट है।
1: बिल्कुल, हो भाषा भी देखिए कितनी भाषा ऐसी है जो हमने कभी सुनी ही नहीं थी।
0: हाँ
1: हो भाषा है, कचाची है, कातमपुरी है, कारबी, खासी, कोडवा, कुकबरा,
0: कहते हैं
1: कुरुख,
0: नाम भी
1: कुरमाली,
0: शायद हमने
1: लेपचा।
0: सुने नहीं है, तभी तो हम कह रहे हैं कि
1: बिल्कुल,
0: विलुप्त हो रही हैं ये भाषाएं।
1: ये कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिनके बारे में शायद हमें इतना पता भी नहीं है। तो अगर कुछ ही बोलने वाले जो बचे हैं, तो अगर इनके हमने इनको संरक्षित नहीं किया तो फिर ये हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएंगी।
0: बिल्कुल, और ये बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो इस समय संकट में हैं, और ये जो विविधता का संसार है ना, ये छोटा हो रहा है, सिमट रहा है।
1: बिल्कुल।
0: भारत में भाषाओं के लुप्त होने का अंदाजा हम इस बात से भी लगा सकते हैं आरती, कि करीब 4-5 भाषाएं तो ऐसी हैं जो लुप्त हो रही हैं, या कुछ भाषाएं लुप्त हो गई हैं। भाषाओं में खासतौर पर उनकी भाषाओं को जल्दी विलुप्त होने को खतरा है जिनके पास अपनी कोई लिपि नहीं होती है।
1: जो
0: अगर
1: लिखित में
0: लिपि
1: नहीं
0: से
1: है।
0: हम उनको संरक्षित करके रख सकते हैं।
1: बिल्कुल, जैसे कि भारत में अरुणाचल प्रदेश की कोरो भाषा को बोलने वाले बस अब कुछ 100 लोग ही रह गए हैं। अंडमान द्वीप समूह की भाषा ग्रेट एंडमनीज, निकोबार द्वीप समूह की निकोबारी भाषा भी विलुप्त की ओर बढ़ रही है। सेंटिनलीज जो अंडमान निकोबार के उत्तरी सेंटिनल द्वीप में बोली जाती है, त्रिपुरा की है साइमार, और हिमाचल प्रदेश की माझी, तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में बोलने जाने वाली तोड़ा, इसी तरह निहालीस, दारमा, गांगते, सुमी, जाखरिंग, महासुई, ऐसी कई बोलियां हैं जिन्हें संजो कर रखने की कोशिश बहुत ज़रूरी है।
0: आज जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं, तो जिन भाषाओं के तुम नाम ले रही हो ना आरती, सच में कुछ भाषाओं के नाम तो मैंने भी नहीं सुने हैं, ये जिक्र ही पहली बार हुआ है। और तब आज कहीं ना कहीं मेरे जहन में भी ये बात आ रही है कि ऐसी भाषाओं की जिन्हें हमें नाम भी नहीं पता, तो ये अगर कहीं विलुप्त हो जाएंगी तो इनका जो अस्तित्व है वो ख़त्म हो जाएगा।
1: बिल्कुल,
0: इसी तरह से हमारे सुनने वाले भी इस बात से बिल्कुल ज़रूर वाकिफ़ होंगे या इत्तेफाक रखते होंगे कि इनको संरक्षित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ वर्ग विशेष होते हैं जिनकी पहचान है, कुछ क्षेत्र विशेष होते हैं
1: बिल्कुल
0: जिनकी पहचान होती है ये। और देखिए हमारे जो श्रोता हैं वो इस बारे में क्या लिख रहे हैं, वो लिखते हैं कि विलुप्त होती भाषण और बोलियां अगर काम हो रहा है तो शब्दों को खोना नहीं है, बल्कि उनके साथ हमारी संस्कृति, लोक कथाएं, गीत, परंपराएं, पुरानी पीढ़ियों का अनुभव, ये भी धीरे धीरे खो जाते हैं।
1: बिल्कुल
0: हमें घर में अपनी मातृभाषा बोलनी चाहिए और बच्चों को लिखना पढ़ना भी सिखाना चाहिए। बच्चों को उसके शब्द, उसके लोकगीत, ये सभी चीज़ें सिखानी चाहिए। भाषा तभी जीवित रहती है जब उसे बोलने वाले गर्व से उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। ये
1: बिल्कुल
0: बहुत सही बात है। कई बार हमें अपनी ही भाषा अगर बोलने में शर्म महसूस होती है, या हमें लगता है कि हम सभ्य समाज का हिस्सा नहीं बन पाते हैं, तो ये शर्मनाक बात होती है। अपनी भाषा को सम्मान हम नहीं देंगे तो फिर कौन देगा।
1: बिल्कुल, और बोलियों में लोक जीवन की जो अद्भुत संवेदना छुपी होती है ना, वो और कहीं से नहीं मिल सकती। किसी क्षेत्र में बोले जाने वाली वहाँ की मिट्टी की खुशबू, मौसम का मिजाज और रिश्तों की आत्मीयता और लोकमानस की सहजता दिखाई पड़ती है। जो अगर हम भाषाओं को अगर ख़त्म हो जाएंगे ये, तो उनके साथ में जुड़ी हुई उनकी परंपराएं जो हैं, जुड़ी हुई जो उनकी लोकगीत हैं, लोक संस्कृति है, वो भी सब खो जाएगी। इसे
0: एक
1: बहुत
0: संदेश
1: ज़रूरी
0: के
1: है।
0: माध्यम से हमारे श्रोता ने बताया है कि भाषाएं और बोलियों को सी डेक के GIST विभाग ने डिजिटल रूप से अच्छे से संजोया है। देश भर की विभिन्न भाषाओं और बोलियों को डिजिटल स्क्रिप्ट्स और डिजिटल टूल्स के जरिए बहुत आसान बनाया जा रहा है। और अब जब मेरी नज़र घड़ी पर पड़ी तो ये एक समय हो चला है कि हम एक छोटा सा अंतराल लें।

0: आरती, हम बात कर रहे थे विलुप्त होती हुई भाषाओं और बोलियों के बारे में।
1: बिल्कुल, एक संदेश भी है इसी को लेकर। एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि विलुप्त होती जो बोलियां हैं, भाषाएं हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं वो या बोलियां जो आजकल बहुत कम बोली जा रही हैं। हम अपनी मातृभाषा को बहुत कम बोल रहे हैं, ज़्यादातर हम इंग्लिश का ही उपयोग करते हैं।

0: या मतलब बाहर की भाषाओं का
1: जी
0: उपयोग
1: जी
0: करते हैं। आम बोलचाल में हम कहना चाहेंगे कि हमें अपनी मातृभाषा को सीखना चाहिए, समझना चाहिए और उसे उसमें पढ़ना लिखना आना चाहिए हमें, क्योंकि उसकी जो खूबसूरती है उसका पता हमें उसी से चल
1: बिल्कुल,
0: सकता
1: जितना
0: है।
1: महत्व विदेशी भाषाओं का है या अगर हम कहीं बाहर काम के लिए जाते हैं तो सही है कि अंग्रेजी जो भाषा है उसका बहुत हमें लगता है कि ये आनी ज़रूरी है। किसी अन्य देश में जाते हैं तो ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज की तरह हमारे
0: बिल्कुल
1: काम आती है, लेकिन
0: हाँ
1: जो हमारी मातृभाषाएं हैं या जो हमारी मिट्टी से जुड़ी बोली है
0: बिल्कुल,
1: उसका अपना अलग
0: और
1: महत्व
0: साथ
1: है।
0: ही हम जहाँ रह रहे हैं, जिस जगह पर रह रहे हैं, उस जगह की भाषा को अपनाना तो बहुत ज़रूरी है। उस जगह की भाषा का भी हमें ज्ञान अच्छी तरह से होना चाहिए।
1: और ऐसे ही कुछ गीत होते हैं भाषाओं से सजे हुए। फिलहाल जो हम गीत सुने हैं कोई लोकगीत नहीं है, लेकिन भाषाओं का बड़ा महत्व होता है, इसी के बारे में बात करेंगे। सुनते हैं ये गीत।

0: आज चंचल एक हमारी जो श्रोता हैं उन्होंने एक बहुत ही प्यारा सा एक बात लिखी है। वो लिखती हैं कि मतलब उस समय का जब समय था तो गांवों में विवाह समारोह में वृद्ध माताएं जो मीठे सुर में स्थानीय बोली में गीत गाती थीं तो चार चांद लग जाते थे। वो अब कहाँ हैं वो लोग, वो सुरीले गीत अब कहाँ हैं, वो जो हंसा देते थे कभी रुला देते थे, अब DJ का कान फाड़ू संगीत है बस। यानी कि जो भाषाएं जो बोलियाँ होती थी ना उन बोलियों में जो गीत संगीत होता था
1: हाँ
0: उसका एक अपना ही रस आता था।
1: बिल्कुल, उसमें भले ही कोई वाद्य यंत्र ना बज रहा हो लेकिन जब एक साथ सुर में समूह में महिलाएं या पुरुष उन लोकगीतों को गाते हैं, कई बार चौपाल पर बैठकर या कई बार काम करते हुए महिलाएं गाती हैं उन गीतों को, तो उनका एक रस एक आनंद अलग ही होता है। इसी तरह से अगर हम भोजन की भी बात करें तो कुछ बहुत लोकप्रिय भोजन होते हैं जो किसी प्रांत विशेष में बनाए जाते हैं, किसी जगह की खास पहचान होते हैं,
0: बिल्कुल
1: और कुछ भोजन ऐसे होते हैं जो हमारे जीने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। भोजन हमारे लिए सिर्फ खाने

0: खाना नहीं है, भोजन नहीं है। इस बात का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि खाना हमारी जिंदगी के लिए जरूरत है, जिंदगी का मकसद, लेकिन ये नहीं हो सकता। और बात केवल भोजन की नहीं, ये हमारी जीवन शैली की जो भी प्राथमिकताएं हैं उन पर भी विचार करने की बात है। हम बात कर रहे हैं कि मुझे क्या कहना है इस सेगमेंट की, जीने के लिए खाना या फिर खाने के लिए जीना, इस बारे में हम बात कर रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: और जीवन के लिए खाना का मतलब होता है कि भोजन हमारे जीवन को स्वस्थ, ऊर्जावान और सक्रिय रखने का साधन है। हम खाना खाते हैं ताकि शरीर को पोषण मिले, स्वस्थ रहें, ताकत मिले हमारे शरीर को, और बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकें, सारे काम कर सकें, घूम फिर सकें, अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताएं, जिंदगी को बहुत खुशहाली के साथ जी सकें, सारे काम करें जिसमें अपने सपने, रिश्ते, जिम्मेदारियां उन्हें भी अच्छे से निभा लें, और स्वाद के साथ संतुलन इनका बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। यानी खाना जीवन का हिस्सा है लेकिन जीवन का लक्ष्य नहीं
1: लक्ष्य
0: है।
1: नहीं है। और समस्या तब शुरू होती है जब भोजन जो है वो हमारी खुशी, दिनचर्या और जीवन का केंद्र बन जाता है। जब हर समय हम यही सोचते रहते हैं कि आज क्या खाऊं, कहाँ अच्छा खाना मिलेगा, कुछ मीठा हो जाए, और स्वाद के लिए बार बार हम अपनी सेहत, ज़रूरत और संतुलन को नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसी सोच रखने वाले धीरे धीरे जीवन के लिए खाने के बजाय खाने के लिए जीने लगते हैं, खाने को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देने लगते हैं। स्वादिष्ट खाना देखकर मन ललचा जाता है और हम ये भूल जाते हैं कि हमें कितना और क्या खाना चाहिए। फिर हमारा ध्यान स्वास्थ्य से ज़्यादा स्वाद पर आ जाता है।
0: इसीलिए देखिए हमारे श्रोताओं ने भी बड़े अच्छे संदेश भेजे हैं इस बात पर। इस श्रोता का कहना है कि खाने के लिए जीना और जीने के लिए खाना, इस फर्क में सोच है, ये फर्क का सोच है। जो खाने के लिए जीता है उसके लिए पेट ही भगवान है,
1: हाँ।
0: और पैसा, समय, ऊर्जा सब स्वाद के पीछे लग जाती है, और सेहत, अनुशासन, लक्ष्य सब पीछे छूट जाते हैं। वहीं जीने के लिए खाने वाला इंसान ईंधन समझता है, खाने को ईंधन समझता है और संतुलित खाता है ताकि शरीर स्वस्थ रहे, दिमाग तेज हो, और वो अपने परिवार, काम, पढ़ाई और समाज के लिए कुछ बड़ा कर सके। और खाना जिंदगी का साधन है, साध्य नहीं है। अगर साधन ही साध्य बन जाएगा तो हम स्वाद के गुलाम बन जाते हैं, और अगर साधन को सही इस्तेमाल करें तो हम स्वस्थ रहकर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बहुत
1: बहुत
0: बहुत
1: बहुत
0: अच्छी बात की
1: बिल्कुल
0: है
1: बहुत सही तरीके से उन्होंने समझाया है कि खाने के लिए जीना नहीं है
0: जी।
1: बल्कि जीने के लिए खाना होता है। तो हमारे एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि जीने के लिए खाएं, खाने के लिए ना जिएं। भोजन जीवन की ज़रूरत और खुशी दोनों है, लेकिन संतुलन बहुत ज़रूरी है। स्वाद का आनंद लें लेकिन भोजन की अति ना करें। अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए खाएं। जो आखिर खाना अच्छा वही है जो तन को ताकत और मन को संतोष दे। मतलब अगर कोई चीज़ आपको मन कर रहा है खाने का तो उसको थोड़ी मात्रा में आप ले सकते हैं, थोड़ी मात्रा में लीजिए। ज़रूरत नहीं कि उसको बहुत ज़्यादा आप खा लें।
0: बिल्कुल, ये संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है, और कार्यक्रम में संतुलन बनाए रखने के लिए हम बीच बीच में बातों के साथ
1: गीत सुनते हैं।

0: आरती, तुम्हें पता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब तन्हाई में होते हैं, यानी अकेलेपन में होते हैं, तो उस वक्त उन्हें कुछ सूझता नहीं सिर्फ खाने के सिवा। और इस तरह से अकेलेपन की वजह से या कोई काम ना होने की वजह से खा कर भी वो बहुत सारे सेहत पर नुकसान या विपरीत असर ले लेते
1: हाँ,
0: हैं।
1: कई लोग जब बहुत दुखी होते हैं तो भी खाते हैं, या
0: हाँ
1: बहुत खुश होते हैं तो भी खाते हैं, तो इस वजह से भी थोड़ा सा वजन पे भी असर पड़ता है।
0: तो खाने को अपनी जिंदगी का मकसद ना बनाएं, क्योंकि ये बहुत सारी सेहत से जुड़ी समस्याएं आपके लिए लेकर आ सकता है। जीने के लिए खाएं, खाने के लिए ना जिए।
1: बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि लगातार ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाने से शरीर में कैलोरी बढ़ जाती है, इससे मोटापा और गंभीर बीमारियां जैसे कि बहुत सारी डायबिटीज़ जैसी बीमारी हो जाती हैं, या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारी हो सकती है, और पेट फूलना, असहज महसूस होना, जी मिचलाना या भारीपन, सुस्ती, थकान रहना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, भूख से थोड़ा कम खाएं, खाने को धीरे धीरे चबा कर खाएं, और फाइबर से भरपूर सब्जियां लें, और रोज़ हल्का व्यायाम या सैर जरूर करें।
0: हम जो बात कर रहे हैं इसका ये मतलब कतई नहीं आरती कि स्वादिष्ट खाना खाना ही नहीं चाहिए। खाना जीवन की खुशियों में से भी एक हम कह सकते हैं कि है। भोजन केवल पेट भरने का साधन भी नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति में भोजन का संबंध प्यार, परिवार, उत्सव, भावनाएं, इन सब से भी है। परिवार के साथ एक साथ बैठकर खाना खाना, दोस्तों के साथ चाय पीना, त्योहारों पर मिठाई बनती है घरों में तो वो मिठाइयाँ खाना, बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े, कुछ ये छोटे छोटे से सुख होते हैं जो जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। लेकिन इन सुखों को अगर हम अपनी जरूरत बनाकर इन्हीं में ही डूबे रहेंगे, नुकसान तब हो
1: तब
0: जाता
1: होता है
0: है।
1: बिल्कुल, जब हम जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। और
0: बिल्कुल, तो
1: साथ ही
0: अंतर इतना है कि भोजन का आनंद लें, भोजन को अपनी जिंदगी पर हावी कभी ना होने दें। इसीलिए ये बात जो कही गई है वो बिल्कुल सही सटीक बैठती है कि भोजन का आनंद जरूर लीजिए, लेकिन भोजन को अपने जीवन का मालिक मत बनने दीजिए।
1: बिल्कुल, और जीवन की सुंदरता या असली संतुलन वो है जिसमें हम स्वास्थ्य अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए स्वाद का आनंद भी लें, और कभी कभार मनपसंद मिठाई खा लेना कोई गलत नहीं है, कभी दोस्तों के साथ बाहर खाना भी गलत नहीं है, लेकिन रोज़मर्रा ऐसे भोजन चुनना ही बेहतर है जो शरीर को पोषण दें और मन को संतुष्टि भी दें।
0: हमारे श्रोता का कहना है कि भोजन जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन स्वास्थ्य उस आनंद को लंबे समय तक बनाए रखने की कुंजी है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तरह तरह के व्यंजन, फास्ट फूड और बाहर का खाना हमारी आदतों का हिस्सा बनते जा रहे हैं। कभी कभार स्वाद के लिए खाना ठीक है, लेकिन यदि यही स्वाद हमारी सेहत पर हावी हो जाएगा तो परेशानी शुरू हो जाएगी। भोजन का आनंद लें, मगर भोजन को जीवन का केंद्र ना बनाएं। याद रखना है कि खाना जिंदगी का हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता भी हैं वो जो कहते हैं कि जिंदगी को जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए जिंदगी नहीं। खाना हमें ऊर्जा देता है, लेकिन असली स्वाद तो उन छोटी छोटी खुशियों में है जिन्हें हम जीते हैं। अपनों के साथ बैठना, हंसना, बातें करना और किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, थाली भरने के साथ साथ दिल भी खुशियों से भरा रहे, शायद यही खूबसूरत जिंदगी है। और साथ ही एक और श्रोता है जो कहते हैं कि कोई कोई खाने के इतने शौकीन होते हैं कि लगता है कि शायद ये खाने के लिए ही जीते हैं, बस जितना सही है उतना ही खाना चाहिए, स्वाद और लोभ में अधिक नहीं खाना चाहिए।
0: और इतना स्वस्थ हमें रहना है कि जीवन का हम आनंद ले सकें, सिर्फ खाने का नहीं लें। और इस बात को अगर हम एक पंक्ति में समझें आरती, तो खाना जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए है। जिंदगी खाने को बेहतर बनाने में अगर बीत जाएगी तो बहुत सारी मुश्किलें आ जाएंगी। और अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में इस गीत के साथ।

0: हाँ, तो अब हम बात करते हैं कुछ टिप्स की, है ना, जो हमारे काम आ सके। हमारे जो कपड़े हैं बढ़िया बढ़िया जो हम पहनना चाहते हैं, बहुत हमारे पसंद के कपड़े हैं, वो जल्दी खराब ना हो, उसे बचाने के लिए वो कौन
1: बिल्कुल,
0: सी
1: उनकी
0: टिप्स
1: जो
0: है?
1: लाइफ है यानी कि उनकी जो जिंदगी है
0: उम्र
1: वो
0: दराज हो।
1: बिल्कुल, अगर हम अपनी सेहत का
0: हाँ
1: ध्यान रखते हैं तो कपड़ों की सेहत का ध्यान रखना
0: बिल्कुल,
1: ही बहुत ज़रूरी है। हमारी सेहत के लिए हम अच्छी खुराक लेते हैं, लेकिन कपड़ों की सेहत के लिए कि उन्हें किस तरह के डिटर्जेंट में धोना चाहिए, तेज़ धूप में सुखाएं कि नहीं सुखाएं, रंग को कैसे सलामत रखें, यही सारी बातें शामिल होती है ना। तो
0: बिल्कुल।
1: ये बड़े अच्छे अच्छे टिप्स हमारे श्रोताओं ने हम तक पहुँचाए हैं।
0: तो एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि जिन कपड़ों का रंग निकलता है उसे अलग से धोना चाहिए, उन्हें या तो ड्राई क्लीन करवाइए या तुरंत भिगा के धोना चाहिए, बाकी कपड़ों से अलग रखना, और नाजुक कपड़ों को बहुत बार नहीं धोना, और बारिश के बाद कपड़ों को थोड़ी धूप लगाना, और जो कपड़े कभी भी पहनने में नहीं आ रहे हैं, मतलब बहुत जल्दी नहीं आते हैं पहनने में, तो उसे किसी ज़रूरतमंद को दे देना चाहिए ताकि वो पहन सके, वरना उसे रखे रखे कपड़े, उसमें भी ऐसा होता है कई बार, कुछ बार जो बारिश के दिन होते हैं, मैंने हमने भी निकाले हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि कुछ फफूंद जैसी जम जाती है, कपड़े खराब फटने लगते हैं जल्दी,
1: हाँ, ये जो
0: तो
1: आपने कहा ना,
0: बेहतर
1: कई
0: है।
1: बार अलमारी में सहेज कर रख देते कि भाई हमारी बहुत पसंदीदा कपड़े ना बहुत खास मौका आने पर पहनेंगे, और कुछ सालों बाद जब निकालते हैं तो हाथ में लेते हैं वो कपड़े से चिर जाता है, फट
0: हाँ
1: जाता है, तो वो रखे रखे भी कपड़े खराब होते
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: अगर आपके इतनी पसंद के कपड़े हैं तो आप किसी पसंद के इंसान को या किसी को जरूरतमंद को आप उन कपड़ों को दे दीजिए, जिसकी वो पहने उनके काम आए।
1: बिल्कुल, एक संदेश में कहा गया है कि कपड़ों की उम्र हमारी देखभाल पर निर्भर करती है, उन्हें सही तरीके से धोना, धूप में बहुत देर तक ना सुखाना, मौसम के हिसाब से साफ करके रखना, और पहनने के बाद उसे थोड़ी देर हवा में सुखाना, अच्छी तरह से तह करके रखना, ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो कपड़ों को लंबे समय तक नए जैसा बनाए रखती हैं।
0: बिल्कुल, और हमारे श्रोता जो है वो कहते हैं कि कपड़ों की उम्र भी थोड़ी हमारी देखभाल पर निर्भर करती है, जैसे कि उनको सही तरीके से धोना चाहिए, यानी कि अच्छे किसी साबुन में डिटर्जेंट में धोएं, और धूप में बहुत देर तक ना सुखाएं क्योंकि धूप के वजह से उनका रंग उड़ सकता है, और मौसम के हिसाब से उनको साफ रखना चाहिए, और पहनने के बाद उसे थोड़ी देर हवा में सुखाना चाहिए, अच्छी तरह से तह करके रखना चाहिए। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखने से कपड़े लंबे समय तक नए के नए बने रहते हैं।
1: तो और भी संदेश पढ़ेंगे, पहले गीत सुन लेते हैं।

0: देखो ना, बहुत अच्छे अच्छे संदेश आ रहे हैं
1: बिल्कुल, एक
0: आपके।
1: हमारे जो साथी वो कहती हैं कि सर्दियों के दिन में जब हम गर्म पानी से कपड़े धोते थे तो मेरी नानी मना करती थी और बोलती थी गर्म पानी से कपड़ा धोने से कपड़े कमजोर हो जाते हैं, यानी सही बात है, उनके रेशे कमजोर हो जाते हैं जिसकी वजह से कपड़े जल्दी खराब भी होते हैं। और साथ ही एक और साथी जो कहती हैं कि हमेशा कपड़ों को उल्टा करके ठंडे पानी से धोना चाहिए और उनको सीधे धूप में ना डालकर शेड में सुखाना चाहिए ताकि कपड़े का रंग हल्का ना हो।
0: एक श्रोता का कहना है कि अच्छे डिटर्जेंट का उपयोग करें, हल्के रंग के कपड़ों को अलग से धोएं, कॉटन और सिल्क के अनुसार ही आयरन का तापमान भी आप बराबर रखिए, अलमारी में नमी ना हो इस बात का भी ध्यान रखें। और अब हम ध्यान रखते हैं कि समय कह रहा है, कार्यक्रम का अंतिम गीत हम चलते चलते सुन लेते हैं।

0: आज के सखी सहेली कार्यक्रम से लेते हैं विदा चंचल वर्मा
1: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंजरी वर्मा, लेकर आई हूँ आपका हेलो फरमाइश कार्यक्रम। सुरों की महफिल सजी है, फरमाइशों का है इंतजार, आपके पसंद के गीतों से सजाएंगे आज का हेलो फरमाइश प्रोग्राम। दिल की धड़कन बंद कर हर नगमा आपके पास आएगा, कभी यादों की खुशबू, कभी जिंदगी के सफर की होंगी बातें, हर गीत के संग दिल से दिल की मुलाकात होगी। लीजिए बज उठी है फोन की घंटी, चलिए सुनते हैं कि आज कौन होगा पहला कॉलर। हेलो फरमाइश, आप कौन बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं?
1: जी मैम नमस्कार, मैं राम गोपाल बोल रहा था भोपाल से।
0: नमस्कार राम गोपाल जी, आप भोपाल से बोल रहे हैं तो क्या हाल चाल है वहाँ के?
1: भोपाल के तो अभी बारिश हो रही, लेकिन इतनी तेज बारिश नहीं है, मतलब सामान्य से इस बार बहुत कम है
0: जी। और बताइए राम गोपाल जी कि आप क्या करते हैं?
1: अपने ये मकान वकान बनाने का, ये से ठेका वेका ये लेते हैं मकान।

0: मकान बनाते हैं, मिस्त्री का काम भी है, सभी कर लेते हैं, किसी का भी ले लेते हैं।
1: अच्छा, यानी कि आप घर बनाते हैं, बहुत खूबसूरत घर बनाते हैं यानी कि।
0: हाँ जी हाँ जी।
1: बड़ा अच्छा लगा कि आप ये मेहनत वाला काम करते हैं। तो इस काम के बीच बीच में आप विविध भारती रेडियो स्टेशन सुनते रहते हैं?
0: जी जी, अभी भी साइट चलती है तो मैं तो साथ में अपने होम थिएटर वगैरह रखता हूँ, उससे कनेक्ट करके ऐप के माध्यम से पूरे दिन भर चलते रहते हैं।
1: तो आपको किस तरह के गाने अच्छे लगते हैं?
0: मुझे सब प्रकार के गाने अच्छे लगते हैं, जैसे 90 के दशक के जो गाने हैं ना, बहुत ही अच्छे लगते हैं वो।
1: क्या बात है, बहुत अच्छे दशक की आपने बात करी है। और विविध भारती रेडियो स्टेशन से जो भी प्रोग्राम प्रसारित होते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं और आपको कौन सा प्रोग्राम सबसे ज्यादा पसंद आता है?
0: दिन में फेसबुक पे आते हैं ना प्रोग्राम, सुवाना सफर वगैरह करके बहुत प्रोग्राम भी सुनते हैं, और सुबह चित्र पर संगीत उत्सव 90 के दशक के और नए गाने भी सुनने को मिलते हैं, और मन चाहेगी वो तो आप सुनाते हो तो अच्छे लगते हैं।
1: और ये बताइए कि भोपाल में हैं आप, तो भोपाल में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आप घूमने के लिए वहाँ पर आप बता सकते हैं?
0: जी बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा लगता है मैम, तालाब वगैरह भी है यहाँ, भोजपुर मंदिर भी है थोड़ा पास में, और बहुत अच्छे अच्छे संग्रहालय बने हुए हैं यहाँ पे घूमने के लिए आज।
1: जी, और ये बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: फिल्म राम जाने का टाइटल सॉन्ग, कहते हैं लोग मुझे राम जाने।
1: तो लीजिए आप सुनिए अपनी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो फरमाइश, आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैं चिड़ावत से बोल रहा हूँ, कंजर डेरे से, देवास जिले से, और संतोष जी हड़ा नाम है मेरा।
0: जी संतोष जी, बहुत अच्छा लगा आपने फोन लगाया। तो बताइए, अपने बारे में कुछ बताइए हमें।
1: हमारा गांव में एक बम्बई हसलन रोड पे है, हेवी रोड पे, और बड़ा अच्छा गांव है, सुंदर सुखी है।
0: तो देवास जो आपका जिला है, वहाँ की क्या क्या खास बातें हैं वो बताइए हमको।
1: हमारे इधर दाल बाटी का बड़ा शौकीन एरिया है ये।
0: अच्छा, और मिठाई में क्या वहाँ पर ज्यादा प्रसिद्ध है?
1: मिठाई में काजू कतली चलती है, बर्फी चलती है, मावा बाटी चलती है।
0: तो आपको इनमें से सबसे अच्छा क्या लगता है?
1: मिठाई में मोतीचूर का लड्डू और काजू कतली या बर्फी बहुत टेस्टी रहती है।
0: क्या बात है। और वहाँ के बारे में बताइए कि कैसा मौसम है इस समय?
1: जी अभी हमारे इधर से 5-7 दिन से पानी नहीं गिरा है, इसलिए हमारी फसल को बहुत अच्छी राहत मिली है और हमने दवाई दारू भी डाल दी है।
0: संतोष जी, आपने कौन सी फसल बोई है?
1: सोयाबीन की फसल लगाते हैं हम।
0: सोयाबीन तो बहुत फायदेमंद है, बहुत प्रोटीन से भरी हुई चीज है ये तो।
1: बिल्कुल, जो कुदरती डैम से आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो 4 साल से अभी 1 बीघा क्विंटल ही होती है। जो कुदरती डैम से अच्छी आ जाए, 3 से 4 बीघा का एक बीघे में निकाल लेते हैं हम।
0: क्या बात है। और जब आप खेती करते हैं तो फसल के लिए पानी का क्या प्रबंध करते हैं आप? कैसे पानी डालते हैं खेतों में?
1: जैसे बरसात में तो ऊपर वाला ही देता है, और जैसे गेहूं चना लगाते हैं तो फिर ट्यूबवेल बोर है, कुआ भी है,
0: तो उससे मेड़ के जरिए नाली बनाते हैं जो आप लोग उसके जरिए पानी लाते हैं।
1: आजकल तो मोटर से चलता है ना।
0: बहुत अच्छी बात है। और आप अपने खेत में कौन सी खाद इस्तेमाल करते हैं?
1: यूरिया और सुपर एमपी डीएमपी।
0: अच्छा, जैविक खाद या रासायनिक खाद यानी कि है?
1: जी जी।
0: अच्छा ये बताइए कि आज आप कौन से गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: जी हमने सावन चल रहा है तो गीतों में ढालूंगा, सावन को आने दो, उस फिल्म का गाना।
0: बहुत ही प्यारी सी पसंद है आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें फोन किया। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये सुरीला नगमा।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, मैं सुकीर्ति मोहित पांडे, भारत की जीवन रेखा, श्रद्धा और आस्था का केंद्र, माँ रेवा की नगरी नर्मदापुरम से बोल रही हूँ।
0: सुकीर्ति जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने फोन लगाया, तो अपने बारे में कुछ बताइए।
1: जी, मैं शिक्षक हूँ।
0: तो आप क्या विषय पढ़ाती हैं?
1: प्री प्राइमरी विद्यार्थियों को मैं पढ़ाती हूँ।
0: सारे विषय पढ़ाती होंगी आप?
1: जी।
0: तो कितने साल हो गए आपको पढ़ाते हुए?
1: 2003 से अभी तक पढ़ाते आ रही हूँ।
0: क्या बात है। तो ये आपने जो प्रोफेशन चुना है, ये बचपन से ही आपका शौक था? जब आपको लगा कि मुझे कोई क्षेत्र चुनना है, जॉब करनी है, तभी से आपने सोच लिया था कि आप शिक्षक बनना चाहती हैं?
1: इसका श्रेय मैं मेरी पैतृक विरासत को दूंगी कि मेरे पिताजी शिक्षक थे, तो उनके साथ जो एक गुड्डे गुड़िये के खेल जैसे खेला जाता है, वैसे मैं भी शिक्षक बनकर नाटक करती थी, लेकिन अब प्रतीत होता है कि वह नाटक नहीं है, वह वास्तविकता थी। जी,
0: क्या बात है। यानी कि परिवार से ही, बचपन से ही आपकी नींव पड़ गई थी, बहुत अच्छी बात है ये। तो और बताइए कि आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: अभी ये श्रावण मास चल रहा है, शिव और पार्वती के मिलन का समय चल रहा है, तो ऐसे ही हम भी मानव हैं, हमें भी शिव से और जीव का मिलन होना है, तो है तो फिल्म का गाना, लेकिन गाने में सार्थकता है। चांदनी फिल्म का गाना है, लगी आज सावन की सिर वो झड़ी है।
0: क्या बात है, बहुत प्यारा सा गीत आपने चुना है। तो सुकीर्ति जी, आपको आज सुनवाते हैं हेलो फरमाइश में आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैडम जी। प्रेम
0: नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: झील धनोरा जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। वी पूनम नायडू।
0: और बताइए कैसी हैं आप।
1: बस जम के इधर पूरे सवाब पे बारिश हो रही है, सावन बरस रही है मैडम जी, और हम सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे हैं और अपने अपने काम में व्यस्त हैं और मस्त भी हैं सभी लोग।
0: क्या बात है, यानी कि बारिश के रिमझिम फुहारे पड़ रही हैं, तो आपको भीगना पसंद है इस मौसम में।
1: जी लेकिन घर में डांट भी पड़ती है मैडम जी, भीगती तो हूँ मैं।
0: डांट पड़ती तो बड़ा मजा आता है कि कैसा लगता है।
1: बचपन की यादें जो है मैडम जी वो ताजा हो जाती हैं और मजा आता है। मुझसे बुरा नहीं मानती हूँ मैडम जी, क्योंकि घर के प्यार से ही डांटते हैं ना, जिसको प्यार करते हैं उन्हीं को तो डांटा जाता है ना।
0: हाँ बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल आपने सही कही। और बताइए अपने बारे में कि क्या करती हैं आप।
1: शिक्षिका हूँ मैडम जी, प्राइवेट स्कूल में छोटे बच्चों की, और प्लस हम लोग का यहाँ पे फार्म हाउस है, तो यहाँ पे ना 12 महीना कुछ ना कुछ सब्जी वाली फसल लगाते हैं, तो वो काम में भी सहयोग करती हूँ भाइयों के साथ।
0: क्या बात है, यानी आपको खेती करना पसंद है।
1: जी
0: आपने क्या क्या लगा रखा है अपने खेत में।
1: अभी सब्जी लगा रखी है मैडम जी, ये सेमी बोलते हैं, आपको पता है सेमी है, बरबट्टी है, करेले हैं।
0: जी, और क्या शौक हैं आपके।
1: मुझे तो बचपन से गाने सुनना बहुत अच्छा लगता है मैडम जी, और हमारे घर में सभी रेडियो के शौकीन हैं, मेरे नाना नानी भैया भाभी और जितने भी हैं, पहले से चला आ रहा लगभग सास पर सास से, और गाने बजाते हुए सभी काम करते हैं मैडम जी, और वो काम बढ़िया हो जाता है हम लोग का, और मूड भी फ्रेश रहता है सभी का।
0: अच्छा ये बताइए कि आपके जगदलपुर की क्या खास बातें हैं।
1: बस्तर एक बहुत ही हरा भरा क्षेत्र है मैडम जी, और बहुत ही देखने के काबिल है। जो भी आप देखेंगे यहाँ पर सब कुदरती सुंदरता इसमें बसी हुई है, जैसे चित्रकूट है और कुटुमसर है मैडम जी, और कैलाश गुफा है, और दंतेश्वरी का मंदिर प्रसिद्ध है, और दशहरा जो पर्व होता है अभी तो स्टार्ट हो गया है उसका, 75 दिन का होता है मैडम जी, जो खास प्रोग्राम है वो 15 दिन का होता है, अभी अगले महीना अक्टूबर में होगा मैडम जी ये।
0: क्या बात है, कौन सी नदी बहती है वहाँ पर।
1: इंद्रावती नदी बहती है मैडम जी,
0: क्या
1: प्रसिद्ध
0: बात
1: है
0: है,
1: ये।
0: और बताइए कि आज आप कौन से गाने की फरमाइश करना चाहती हैं।
1: फिल्म का नाम है साजन का घर, उसमें एक गीत है मैडम जी, थोड़ा मैं गुनगुना के बजा दूं क्या।
0: बताइए बिल्कुल।
1: सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले।
0: क्या बात है, आपने तो बहुत ही सुरीला सा गाया, और आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो फरमाइश, आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैं देवेंद्र सिंह राजपूत बोल रहा हूँ, रेहली जिला सागर मध्य प्रदेश से।
0: देवेंद्र जी, आज आपने हेलो फरमाइश में कॉल लगाई तो आपको कैसा लग रहा है?
1: बहुत खुशी हो रही है जी, बहुत देर से ट्राई कर रहे थे, हर हफ्ते करते हैं, लेकिन आज पहली बार नंबर लगा, पहली बार बात हो रही हमारी विद भारती में।
0: चलिए, आपका फोन लगा और पहली बार आपकी मेरे से बात हो रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। और बताइए अपने बारे में, आप क्या करते हैं?
1: जी मेरा एक इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप है छोटी सी, और कृषि का व्यवसाय भी है।
0: अच्छा, ये बताइए कि जो आपकी इलेक्ट्रिक की शॉप है तो उसमें आप क्या
1: जी
0: करते हैं?
1: जी शुरुआत तो मेरी रेडियो से हुई थी, जब रेडियो आया था तब हमारे पास रेडियो, तो रेडियो रिपेयरिंग से शुरुआत की थी मैंने। आजकल अब कंप्यूटर, LED TV वगैरह सब कुछ रिपेयर करता हूँ, सेल भी करता हूँ।
0: क्या बात है, यानी कि आप रेडियो के इंजीनियर हैं?
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, रेडियो के इंजीनियर, और इस रेडियो ही के बदौलत है विविध भारती से भी जुड़े, मेरा शौक है जी।
0: तो विविध भारती के प्रोग्राम आपको कौन कौन से अच्छे लगते हैं?
1: विविध भारती के हम सुबह 6 बजे से लेके रात के 11 बजे तक, आपकी फरमाइश, आज के फनकार, छाया गीत, ये सब ही हमारे फेवरेट प्रोग्राम है।
0: अच्छा ये बताइए, आपने बताया ना कि आप खेती भी करते हैं, तो
1: जी जी
0: आजकल आपने क्या खेत में बो रखा है?
1: इस समय खरीफ का सीजन चल रहा है जी, तो उसमें मक्का बोई है हमने पूरे खेत।
0: अच्छा, तो जो ये खरीफ का सीजन है ये कब से कब तक चलता है?
1: ये लगभग 15 जून जब मानसून आता है ना, तब से लेके 15 अक्टूबर तक का ये सीजन होता है खरीफ का।
0: अच्छा, तो इसमें आप कौन कौन सी फसलें बोते हैं?
1: इसमें हम लोग मक्का है, सोयाबीन है, जौ है, तिल है, उड़द है, मूंग है, इस वगैरह ये सब की फसलें उगाई जाती है खरीफ के सीजन में
0: जी
1: हम लोगों के क्षेत्र में। और धान, धान थोड़ा कम होता है हम लोगों के यहाँ।
0: और इसके बाद जो सीजन आएगा,
1: रबी फसल का सीजन होता है वो 15 अक्टूबर से 15 मार्च तक मान लीजिए उसका ये पीरियड रहता है।
0: और तो उसमें कौन कौन सी फसल बोते हैं फिर आप?
1: उसमें गेहूं है, चना है, मूंग है, मसूर है, मटर वगैरह, ये गन्ना नन्ना ये सब बोए जाते हैं उसमें।
0: तो ये बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मैं दस्तक फिल्म का गीत सुनना चाहता हूँ, मदन मोहन जी की आवाज में हो या मतलब लता जी की आवाज में, माई री मैं कासे कहूँ पीर अपने जिया की।
0: तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैडम
0: नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं, नाम बताइए अपना।
1: जी। मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ, साहिल डार।
0: साहिल जी, बहुत बहुत स्वागत है, आपने हेलो फरमाइश में फोन लगाया और बड़ी ही खूबसूरत जगह से आप फोन कर रहे हैं। अपने बारे में और भी कुछ बताइए हमें।
1: जी मैं कश्मीरी आर्ट के साथ कर रहा हूँ मैडम, जो कांच शॉल होते हैं मैं उसी के साथ कर उसी का बिजनेस करता हूँ मैम। मैं
0: और इसके बारे में और बारीकी से बताइए, जानकारी दीजिए हमें, जिससे हमारे सभी साथियों को भी मिल सके।
1: ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, इसमें पहले धागे लाने पड़ते हैं, फिर उनको कलर करना पड़ता है, फिर उसको ये बुनाई के लिए ठीक करना होता है, तो फिर उसको बुनते हैं।
0: ये धागे कैसे होते हैं, रेशमी या सूती?
1: ये सूती होते हैं मैडम
0: अच्छा, और इनसे आप
1: जी।
0: क्या क्या चीजें बनाते हैं?
1: इसमें डिजाइन आते हैं मैडम,
0: अच्छा
1: डिजाइन होते हैं, तो फिर उसी की उसी जो डिजाइन होगा
0: जी,
1: वैसा ही फिर उसका ये नक्शा बनेगा।
0: उस नक्शे से आप कढ़ाई करते हैं, सांचे में करके करते हैं क्या?
1: जी जी बिल्कुल।
0: अच्छा, तो क्या क्या चीज बन जाती है इससे?
1: शॉल बनते हैं मैडम
0: बड़े चटक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है ना?
1: जी बिल्कुल।
0: और बताइए।
1: श्रीनगर और कश्मीर कितनी खूबसूरत जगह है, यहाँ के जो पहाड़ वो कितने मानो के आसमान से बातें करते हुए
0: क्या
1: नजर
0: बात है।
1: आते हैं, और जीली डल का नजारा तो शाम के वक्त बहुत ही खूबसूरत लगता है कि उनमें जो लाइटें होती है
0: जी,
1: जब पूरा अंधेरा होता है तो लोग चलते हैं अपनी गाड़ियों में तो खूब नजारा लेते हैं उन लाइटों का, जो जीली डल में जो हाउस बोट होते हैं
0: हाँ जी हाँ जी,
1: जो उनमें लाइटें होती है तो उनका खूब नजारा लिया जाता है शाम को
0: क्या
1: जीली डल
0: बात है।
1: के।
0: और बताइए, श्रीनगर में आजकल किस तरह की खेती की जा रही है, फल कौन से हो रहे हैं इस समय?
1: जी इस वक्त एक तो है सेबों का सीजन और एक धान का सीजन अब आने वाला है, अगले महीने से उसकी कटाई शुरू होगी।
0: अच्छा, तो
1: जी
0: रेडियो
1: बिल्कुल।
0: सुनते हुए आपको कितना समय हो गया है?
1: रेडियो सुनते शुरू मैंने किया है 2002 में मैडम।
0: तो आपको किस तरह के
1: जी
0: गाने पसंद
1: बिल्कुल
0: आते हैं?
1: जी, सभी गाने अच्छे होते हैं, लेकिन आप इंसान को आप कहते हैं ना कि पसंद अपनी अपनी, ख्याल
0: जी
1: अपना अपना।
0: बिल्कुल, तो बताइए हेलो फरमाइश में आज आप कौन से गीत की फरमाइश करने वाले हैं?
1: जी एक फिल्म आई है एक दूजे के लिए, बहुत ही प्यारा नगमा है, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम,
0: क्या बात है,
1: प्यार तेरी पहली नजर को सलाम।
0: तो आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, बताइए आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: राम कटारी एड़ी जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से मैं राम नरेश संजर बोल रहा हूँ मैम।
0: राम नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने हेलो फरमाइश में फोन लगाया। अपने बारे में कुछ हमें बताइए।
1: मैं एक कृषक हूँ, खेती बाड़ी का काम करता हूँ और इन दिनों हमारे क्षेत्र में जो खेतों में है सोयाबीन की फसल लगाई हुई है और ये अगले माह तक ये तैयार हो जाएगी।
0: जी अच्छा, कितनी लगभग हो जाती होगी आपके खेत में सोयाबीन की फसल?
1: देखिए, मध्य प्रदेश की राज्य फसल जो है वो सोयाबीन ही है। मध्य प्रदेश में अधिकाधिक मात्रा में सोयाबीन ही लगाई जाती है। खरीफ के मौसम में जो बारिश में जो फसलें लगाई जाती है उसमें ज्यादा मात्रा में पूरे मध्य प्रदेश में सोयाबीन ज्यादा लगाई जाती है।
0: अच्छा, जो सोयाबीन की जो खेती होती है उसकी मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए?
1: किसी भी प्रकार की मिट्टी हो, काली मिट्टी हो, भूरी मिट्टी हो, लाल मिट्टी हो, कंक्रीट जगह हो, पथरीली जगह हो, सब प्रकार की जमीन में हो जाती है।
0: अच्छा, तो जो आपका ये खेत है इसके साथ साथ कुछ और भी लगाते हैं कि सिर्फ सोयाबीन ही लगी है?
1: ये बारिश के मौसम में सोयाबीन, मक्का, ज्वार, उड़द, मूंग, मूंगफली, तिल जो होती है तिल्ली खाते हैं वो लगाई जाती है। ये मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्र है, जो क्लाइमेट जो है प्रदेश का, उसमें सब प्रकार की फसलें हो जाती हैं। भौगोलिक दृष्टि से ये हमारे मध्य प्रदेश की धरती जो मौसम है वो इतना अनुकूल है कि किसी भी प्रकार का अनाज इसमें लगाओ तो हो जाता है।
0: क्या बात है, यानी गर्मी भी होती तो बहुत गर्मी होती है, सर्दी भी तो सर्दी भी बहुत पड़ेगी, और बारिश कैसी रहती है वहाँ पे?
1: बारिश बहुत अच्छी होती है, हर वर्ष बढ़िया 800 मिलीमीटर, 900 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर बारिश हो जाती है हमारे यहाँ।
0: बहुत अच्छी सी जानकारी आपने दी राम नरेश जी। ये बताइए कि जो फसल की सुरक्षा के बारे में आप पशु पक्षियों से कैसे उनका ध्यान रखते हैं कि आपकी फसल खेत में लगी है वो सुरक्षित रहे?
1: देखिए, उसमें तो ऐसा है कि बहुत सारे हमारे जो किसान भाई हैं वो जो कांटे वाली तार रहती है का प्रबंधन करते हैं, खेत के चारों तरफ जाली भी लगा देते हैं 4 फीट 5 फीट ऊंची।
0: हाँ सही बात है, इस तरह की चीजें तो खेती करते समय बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो बताइए, आज आपको हम हेलो फरमाइश प्रोग्राम में कौन सा गीत सुनाएं?
1: आज के इस कार्यक्रम में आंटी नंबर 1 फिल्म का गीत है, उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज है, कुछ कुछ तो मेरे दिल में हो रहा है, ये गाने के बोल है।
0: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: सर नमस्कार।
0: नमस्कार, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: मैं ग्राम गुनौरे जिला सतारा महाराष्ट्र से तनुश्री सुर्वे बात कर रही हूँ।
0: तनुश्री सुर्वे जी, आपने हेलो फरमाइश में फोन लगाया, कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत प्रयास करने के बाद लगाई, पर लगा ही ना तो आज बहुत बहुत बहुत खुश हो रही है।
0: देखिए, जब प्रयास किया जाता है, कोशिश की जाती है ना, तो सफलता मिलती ही मिलती है। तो तनुश्री जी बताइए, आप क्या करती हैं?
1: मैम मैं शास्त्रीय संगीत सीखती हूँ।
0: क्या बात है, क्या उम्र है आपकी?
1: मैम 19 साल की हूँ।
0: शास्त्रीय संगीत सीखती हैं, तो इसमें क्या क्या चीज सीख रही हैं?
1: मैम गायन भी सीख रही हूँ और हारमोनियम पर प्ले करना भी सीख रही हूँ।
0: यानी वादन गायन दोनों आप सीख रही हैं। हारमोनियम पे आप कितने तरह के गाने निकाल लेती हैं?
1: मैम गाने तो नहीं, पर राग, मतलब मैं एग्जाम देकर सीख रही हूँ ना, रागों की संपूर्ण माहिती आती है उसमें, फिर रागों का मतलब बंदिश, छोटा ख्याल, डुमरी, ऐसा आता है ना सब, वो सीख
0: जी,
1: रही हूँ अभी मैं।
0: क्या बात है, बहुत सारी आप रागे सीख रही हैं, तो कुछ सुना सकती हैं आप हमें गा के?
1: जी मैम, एक बिहार राग के वे एक छोटा सा थाई और उसमें दो तान गुनगुनाना चाहती हूँ।
0: बिल्कुल, गुनगुनाइए आप।
1: जाना जाना मोरी बाजे संजनिया, नि सा ग म प म ग म ग म।

तनुषी जी से बहुत सारी प्यारी सी बातें चल रही थी और वो जो शास्त्रीय संगीत का एक प्यारा सा गीत गुनगुना रही थी, लेकिन अचानक ही उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। अब हम उनको विविध भारती की तरफ से अपनी पसंद का ये गीत सुनाते हैं, लुटेरा फिल्म का सवार लूं।

0: हेलो फरमाइश, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए।
1: भोपाल विश्वकर्मा जिला गुना से।
0: बहुत अच्छा लगा आपने हेलो फरमाइश में फोन लगाया। अपने बारे में हमें कुछ बताइए कि आप क्या करते हैं।
1: खेती करते हैं, मक्का की फसल लगा रखी है।
0: देखिए, खेती करना जो कहते हैं ना, वो अपने आप में बहुत बड़ा काम है, बहुत मेहनत का काम है। तो जो अनाज होता है ना, वो हम तक पहुंचता है। जब आप लोग खेती करते हैं ना, तो पूरी दुनिया में सब जगह अनाज जाता है, तो सबका पेट भरता है कहना चाहिए। तो आप बहुत ही नेक और पुण्य का काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत का काम कर रहे हैं। तो खेत में आपने क्या बोया?
1: मक्का की फसल लगा रखी है और आपके कार्यक्रम विविध भारती चलता रहता है हमारा।
0: जी, तो तकरीबन कितना मक्का निकल आता है?
1: जी निकलता है, 1 बीघा में निकल जाता है 4-5 क्विंटल का।
0: तो इसको आप बाजार में बेच देते होंगे जाकर के, फिर है ना, कुछ अपने लिए रख लेते होंगे?
1: गुना में बेचते हैं, मंडी पास में।
0: अच्छा अच्छा और आपने कहा कि आप रेडियो सुनते हैं।
1: भारतीय कार्यक्रम हेलो फरमाइश सखी सहेली, और वो आप से इतना 4 बजे आता है, त्रिवेणी क्षेत्र लोग सभी सुनते हैं, वो चलता रहता है हमारा।
0: क्या बात है। और बताइए अपने गुना के बारे में बताइए कि वहाँ पर क्या क्या खास चीजें हैं, कुछ घूमने की जगह है, वहाँ पर नदी कौन सी है?
1: नदी भी है और जो धार्मिक स्थल भी है।

मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, आरंभ होती है हमारी आज की दूसरी सभा। कुछ ही पलों में आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।

भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने, मेक इन इंडिया के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और रणनीतिक विश्वास बढ़ाने पर चर्चा हुई। भारत कल पुणे में 12वें ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन, ICT। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज उज्जैन में 134.97 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन कार्य नवीन प्रशासनिक संकुल भवन का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण पूरा करने और भवन में आवश्यक प्रशासनिक सुविधाओं का समुचित प्रावधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने धार्मिक उत्सव समितियों और बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे गणेश उत्सव के दौरान धार्मिक पंडालों, झांकियों में बिजली साज सज्जा नियमानुसार ऑनलाइन अस्थायी कनेक्शन लेकर ही करें। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 में उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों को प्रवेश का एक और अवसर प्रदान किया गया है। CLC चरण की अवधि 21 से 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए सुनिए युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है।

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के युवाणी कार्यक्रम में। और हम हैं आपके रेडियो दोस्त अलक श्रीवास्तव
1: और डिम्पी रावते आपके साथ। दोस्तों, आज युवाणी कार्यक्रम में आप सुनेंगे चर्चा के साथ गैर फिल्मी गीत और गजलों का कार्यक्रम।
0: आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के दो प्रश्नों के साथ। इनके उत्तर हम आपको देंगे कार्यक्रम के अंत में। पहला प्रश्न है, भारत में युवाओं के लिए आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा?
1: दोस्तों, आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, 2026 में युवाओं को नशा मुक्ति अभियान से जोड़ने के लिए शुरू किए गए राष्ट्रीय अभियान का नाम क्या है? आइए अब हम आपको ले चलते हैं गैर फिल्मी गीतों और गजलों की दुनिया में और सुनवाते हैं पॉप नगमा लकी अली की आवाज में।

0: और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम एक ऐसे विषय पर पहुंच रहे हैं जो हर समाज की नींव है। आज हम बात कर रहे हैं सामाजिक सद्भाव और युवा की।
1: दोस्तों, सामाजिक सद्भाव का अर्थ है कि समाज में हर व्यक्ति को समान अवसर और सम्मान मिले। यह केवल शांति बनाए रखने की बात नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है कि विविधता के बीच भी एकता बनी रहे।
0: और यही जगह युवाओं की सबसे बड़ी भूमिका है। युवा केवल भविष्य नहीं है, वे वर्तमान की धड़कन भी हैं। उनकी ऊर्जा और उनकी संवेदनशीलता समाज को दिशा देती है। जब युवा भेदभाव को चुनौती देते हैं और संवाद को प्राथमिकता देते हैं, तो समाज में विश्वास और सहयोग की नींव रखते हैं। वे परंपराओं का सम्मान करते हैं और उन चीज़ों पर सवाल उठाते हैं और उन्हें समय के अनुसार ढालने की कोशिश करते हैं।
1: सही कहा अलक। उदाहरण के तौर पर, जब युवा अपने कॉलेज या मोहल्ले में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं जहां हर समुदाय के लोग शामिल होते हैं, तो यह केवल मनोरंजन नहीं होता, यह एक प्रतीक है कि अनेकता में भी एकता संभव है।
0: अब सवाल ये है कि सामाजिक सद्भाव बनाए रखने में युवाओं के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौतियां हैं सामाजिक भेदभाव और आर्थिक असमानता, क्योंकि जाति, धर्म और भाषा की सामाजिक असमानता युवाओं को निरर्थक झगड़ों में उलझाकर आगे नहीं बढ़ने देती, तथा आर्थिक असमानता बुनियादी ज़रूरतों के साधनों की कमी से वे एक दूसरे के प्रति आक्रोशित होते हैं, जिसके कारण उनमें आपसी टकराव होता है।
1: इसलिए साथियों, समाज को संचालित करने वाले प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी है और वह इसे पूरा करने में निरंतर लगा भी रहता है कि वह सामाजिक एवं आर्थिक समानता सुनिश्चित करे और युवाओं को बेमतलब के आक्रोश और टकराव को समाप्त करके उन्हें आगे बढ़ने के सुअवसर दे। तो वह दिन दूर नहीं जब सामाजिक सद्भाव और युवा एक सुंदर, शांति प्रिय एवं विकसित समाज की पहचान होंगे।
0: दोस्तों, इसी के साथ आइए चलते हैं गैर फिल्मी गीतों और गजलों की दुनिया में। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, बारिश में भी कुछ छुपा रहे हो, भीगी पलकों के पीछे क्या राज है, किस दर्द को हंसकर भुला रहे हो।

0: दोस्तों, संगीत हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। यह केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं, संवेदनाओं और यादों को व्यक्त करने का एक सुंदर जरिया भी है। जब शब्द भावनाओं को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पाते, तब संगीत उन्हें सुरों और धुनों के माध्यम से हमारे दिल तक पहुंचा देते हैं।
1: साथियों, फिल्मी गीतों से अलग गैर फिल्मी गीतों की अपनी एक विशेष पहचान और मिठास होती है। इनमें भावनाओं की सादगी, शब्दों की गहराई और संगीत की आत्मीयता देखने को मिलती है। आज की संगीतमय संध्या में हम भी आपके लिए एक ऐसा ही मधुर गैर फिल्मी गीत लेकर आ रहे हैं, जिसे आवाज दी है दर्शन रावल और नेहा कक्कड़ ने।

0: डिम्पी, अगर हमें भारत को विकसित और सशक्त राष्ट्र बनाना है तो सबसे पहले किस शक्ति को पहचानना होगा? युवाओं की ऊर्जा को या समाज के हर वर्ग की समान भागीदारी को?
1: अलख, मेरा मानना है दोनों को, क्योंकि युवा देश की ऊर्जा है और समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी उसकी वास्तविक शक्ति। जब ऊर्जा और समान अवसर साथ आते हैं तभी विकास की गति तेज होती है।
0: दोस्तों, अल्पसंख्यक कल्याण शब्द सुनते ही मन में एक सवाल उठता है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है?
1: साथियों, इसका अर्थ है अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को शिक्षा, कौशल, रोजगार, आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति के लिए आवश्यक अवसर और सहयोग उपलब्ध कराना।
0: डिम्पी, तो क्या इसे किसी विशेष समुदाय को विशेषाधिकार देना समझना नहीं होगा? क्या इसका उद्देश्य दूसरों से अलग अवसर देना या उन क्षेत्रों में अवसर देना जहां कुछ लोग अब भी पीछे रह गए हैं?
1: नहीं अलग, इसे विशेषाधिकार कहना उचित नहीं होगा। इसका उद्देश्य किसी को आगे बढ़ाना नहीं बल्कि पीछे छूटे व्यक्ति को आगे लाने का समान अवसर देना है। जब हर व्यक्ति को अपनी प्रतिभा को पहचानने, उसे निखारने और अपने सपनों को साकार करने का मौका मिलता है तभी विकास वास्तव में समावेशी बनता है।
0: साथियों, हम युवाओं को भेदभाव से ऊपर उठकर हर व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करना होगा, हमारी विविधता को स्वीकार करना होगा और यह समझना होगा कि अलग अलग पहचानें भारत को कमजोर नहीं बल्कि उसकी सांस्कृतिक समृद्धि को और गहरा बनाती हैं।
1: तो आइए हम केवल विकसित भारत का सपना ना देखें
0: बल्कि ऐसा भारत गढ़ने का संकल्प लें जहां हर युवा की उड़ान को अवसर के पंख मिले और हर हाथ राष्ट्र निर्माण की शक्ति बने।
1: साथियों, जहां भिन्नताओं से दूरी नहीं संवाद हो,
0: जहां सपनों को संकोच नहीं साहस मिले
1: और जहां सफलता केवल कुछ चेहरों की नहीं पूरे समाज की कहानी बने।
0: दोस्तों, क्योंकि राष्ट्र तब महान नहीं बनता जब कुछ लोग ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं।
1: राष्ट्र तब महान बनता है जब उसकी प्रगति की रोशनी आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक भी पहुँचती है। इसी के साथ आइए वापस चलते हैं गीतों और गजलों की दुनिया में। बारिश की बूंदों में भी एक अलग सी रवानी है, युवा दिलों में आज भी कुछ कर गुजरने की कहानी है। चेहरे पर मुस्कान है, आंखों में हजारों ख्वाब, ये उम्र ही ऐसी है, हर बारिश में भी एक नई जिंदगानी है।
0: आइए इसी के साथ सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और जसवंत सिंह की आवाज में यह गजल।

0: दोस्तों, अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है शुरुआत में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने का। पहला प्रश्न था, भारत में युवाओं के लिए आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? इसका उत्तर है तेलंगाना।
1: दोस्तों, आज का हमारा दूसरा प्रश्न था, 2026 में युवाओं को नशा मुक्ति अभियान से जोड़ने के लिए शुरू किए गए राष्ट्रीय अभियान का नाम क्या है, जिसका उत्तर है नशा मुक्ति। आशा करते हैं आपको आज का हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। हम फिर लौटेंगे एक नए विषय, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवावाणी। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी की जबलपुर केंद्र की प्रस्तुति था।
1: ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 374.5 मीटर यानी 801 किलो हर्ट्ज पर।

जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:33 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत अरिजीत सिंह की आवाज में, बोल हैं कुमार के और संगीत हिमेश रेशमिया का। फिल्म का नाम जीनियस।

अगला गीत फिल्म सिंग इज किंग से। इस गीत को गाया है राहत फतेह अली खान ने, शब्द रचना मयूर पुरी की और धुन तैयार की प्रीतम ने।

0: स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए देव नेगी की आवाज़ में ये गीत, गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य, संगीत अमित त्रिवेदी का और फिल्म का नाम केदारनाथ।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: लीजिए सुनिए फिल्म भाग मिल्खा भाग का गीत।

श्रोताओं, इस गीत को लिखा है प्रसून जोशी ने, आवाज़ें हैं श्रेया घोषाल और जावेद बशीर की, और संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आज रात 9:15 पर स्पॉटलाइट कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे 6:00। 6:30 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे अन्नपूर्णा शर्मा के गाए लोकगीत। 6:45 पर सुगम संगीत, आज के कलाकार हैं प्रकाश तिवारी। शाम 7:21 पर सुनिए सद्भावना दिवस और विश्व मच्छर उन्मूलन दिवस पर चर्चा। प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी का वक्त है 7:30। हंसना मना है इस धारावाहिक की अगली कड़ी का प्रसारण किया जाएगा रात 9:30 पर। रात 10:00 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज सुनिए उस्ताद विलायत खां का सितार वादन और उस्ताद बिस्मिल्ला खां का शहनाई पर बजाया राग नंद कल्याण। आइए अब आपको कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। कल सुबह 6:05 पर वंदना, सुबह 6:35 पर सुनिए रामचरित मानस गान, सुबह 6:45 पर कृषि सामिकी का प्रसारण किया जाएगा। गुड मॉर्निंग जबलपुर आप सुनेंगे 7:20 पर। लोक रसधार सुबह 9:00 और फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सारंगा 10:20 पर। श्रोताओं ये थे आज के शेष और कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। न्यूज़ हेडलाइंस अब हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को एक लेख को साझा करते हुए कहा है कि ब्रिक्स की अध्यक्षता में भारत जन केंद्रित जलवायु कार्रवाई के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा दे रहा है। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज राज्य सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसके तहत झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC द्वारा आयोजित कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल स्थित संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क में आयोजित आरंभ परिचय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। राज्य वित्त आयोग की आधिकारिक वेबसाइट का आज भोपाल में लोकार्पण किया गया। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की उपस्थिति में आयोग के अध्यक्ष शैभान सिंह पवैया ने वल्लभ भवन में वेबसाइट का लोकार्पण किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत युवा संगम फेज 7 के लिए राज्यों की जोड़ी तय की है। इसके तहत मध्यप्रदेश को कर्नाटक के साथ जोड़ा गया है जिसमें मध्यप्रदेश के लिए PSPA भोपाल और कर्नाटक के लिए यूनिवर्सिटी कर्नाटक को जिम्मेदारी दी गई है। और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 में स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए अतिरिक्त कॉलेज लेवल काउंसलिंग CLC चरण की अवधि 21 से 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: मीडियम वेव 374.5 मीटर यानी 801 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजे हैं। प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: बदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का प्यार भरा नमस्कार
3: और अजीत का भी जोहार और नमस्कार। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: सूर्य बिना कुछ मांगे हमें प्रकाश देता है, नदी बिना भेदभाव जल देती है, वृक्ष पत्थर खाने पर भी फल देते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमने दिया, वे बस देते हैं क्योंकि देना ही उनका स्वभाव है।
3: बड़ी खूबसूरत पंक्ति है, वे बस देते हैं क्योंकि देना ही उनका स्वभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओ, इसी प्रकार प्रकृति भी हमें बस देती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का,
2: शेरी वर्नेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर,
3: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, कुटकुटिया नायक, शुभम नायक और सत्यजीत नायक,
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिमबाई मानिकपुरी जी ने लिखा है।
3: उन्होंने लिखा है, धैर्य रखें, कठिन समय भी सरल हो जाएगा।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन और ईशांत देवांगन।
3: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, सच में आप हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। स्वागत एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला में हम लेकर आते हैं ज्ञान विज्ञान साहित्य भूगोल इतिहास और अनेकों ज्ञान की शाखाओं की मनोरंजक जानकारियाँ।
3: तो विमलेश जी, आज हमारी बातचीत का विषय क्या रहेगा?
2: अजीत जी, मैं सोच रही थी जानकारियां तो हम इस श्रृंखला में देते ही रहते हैं, लेकिन पिछले सप्ताह प्राप्त संदेशों से पता चलता है कि हमारे श्रोता प्रेरक प्रसंग भी बहुत पसंद करते हैं।
3: जी हाँ, ये तो है।
2: तो क्यों ना आज और कल कुछ प्रेरक प्रसंग प्रस्तुत किए जाएं?
3: नेकी और पूछ, विमलेश जी आपने बिल्कुल सही कहा, जीवन में प्रेरक प्रसंगों से भी हमें बहुत सहायता और संबल मिलता है। तो बताइए जरा श्रोताओं को कि हमारा आज का प्रेरक प्रसंग क्या रहेगा?
2: अजीत जी, आज बात करते हैं एक तितली के संघर्ष की।
3: वाह क्या बात है, एक तितली के संघर्ष की।
2: श्रोताओं, आज हम आपको एक छोटी सी तितली की कहानी

0: सुनाने जा रहे हैं।
1: जी हाँ श्रोताओं, ये कहानी लंदन की प्रसिद्ध बाल पत्रिका किड्स वर्ल्ड में छपी थी। शीर्षक था द बटरफ्लाई एंड द कुकून। ये कहानी केवल एक कीट की नहीं बल्कि हम सबके जीवन की कहानी है।
0: जी
1: श्रोताओं, कहानी कुछ इस प्रकार से है।
0: एक दिन एक व्यक्ति अपने बगीचे में टहल रहा था। उसकी नजर एक पेड़ की टहनी पर लटके एक छोटे से कुकून पर पड़ी, यानी रेशम के कोए पर पड़ी। उसने देखा कि कुकून के भीतर एक प्यूपानुमा तितली बाहर निकलने का प्रयास कर रही थी।
1: श्रोता, वो व्यक्ति बड़ी उत्सुकता से उसे देखने लगा।
0: जी,
1: उसने देखा कि वो तितली एक बहुत छोटे से छेद से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। वो बार बार जोर लगाती और फिर रुक जाती। कुछ देर के बाद फिर पूरी ताकत से प्रयास करती। ये संघर्ष कई घंटों तक चलता रहा। विमलेश जी, आगे क्या हुआ?
0: जी जी जी, जो हुआ वो बहुत ही अजीब हुआ। उस व्यक्ति ने सोचा कि तितली थक गई है, वो बेचारी अब बाहर निकल ही नहीं पाएगी। उस व्यक्ति का हृदय दया से भर गया। उसने सोचा, बेचारी तितली कितना संघर्ष कर रही है, यदि मैं इसकी थोड़ी सी मदद कर दूं तो इसका कष्ट समाप्त हो जाएगा।
1: श्रोताओं, ऐसा सोचता हुआ वो अपने घर गया, एक छोटी सी कैंची लाया और बहुत सावधानी से कुकून का छेद थोड़ा सा बड़ा कर दिया।
0: जी,
1: अब वो तितली बिना किसी कठिनाई के बाहर निकल आई। लेकिन जैसे ही वो बाहर आई, उस व्यक्ति ने देखा उसका शरीर फूला हुआ था और उसके पंख छोटे और सिकुड़े हुए और बहुत ही कमजोर थे।
0: उसे लगा कि बस कुछ देर की ही तो बात है, कुछ ही देर में पंख फैल जाएंगे और तितली उड़ जाएगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। तितली जमीन पर ही रेंगती रही, वो कभी उड़ न सकी और कुछ ही दिनों में उसकी जीवन लीला भी समाप्त हो गई।
1: जी हाँ श्रोताओं, उस व्यक्ति को बहुत दुख हुआ। कुछ दिनों के बाद उसने एक और कुकून देखा जिससे तितली निकलने का प्रयास कर रही थी। वो बहुत मेहनत कर रही थी।
0: जी,
1: बार बार प्रयास करती पर थक कर रुक जाती। अब की बार इस व्यक्ति ने सोच लिया था कि वो तितली की कोई मदद नहीं करेगा।
0: कई घंटों के बाद जब वो तितली बाहर आई तो उस व्यक्ति ने देखा कि वो शानदार रंगों वाली एक बेहद सुंदर तितली थी। वो थोड़ी देर रेंगी, फिर पंख फैलाकर उड़ गई।
1: श्रोताओं, उस व्यक्ति ने अपनी कहानी में लिखा, मुझे अध्ययन करने के बाद ये पता चला कि प्रकृति ने तितली के लिए यह संघर्ष जानबूझकर रखा था।
0: जी,
1: जब तितली उस छोटे से छेद से बाहर निकलने का प्रयास करती है, तब मेहनत के कारण तो उसके शरीर का द्रव उसके सिकुड़े हुए पंखों में पहुंचता है। इस द्रव को हीमोलिम्फ कहते हैं
0: और यही द्रव पंखों को मजबूत और उड़ने योग्य बनाता है। यदि तितली संघर्ष न करे तो उसके पंख कभी विकसित ही नहीं हो सकते।
1: तो विमलेश जी, इस घटना का सारांश क्या बनता है?
0: अजीत जी, जिस दया को उस व्यक्ति ने सहायता समझा था, वही तितली के जीवन की सबसे बड़ी बाधा बन गई। एक विद्यार्थी जब परीक्षा की तैयारी करता है तो रातों की मेहनत, असफलताओं का डर और लगातार अभ्यास, यही संघर्ष उसे सफल बनाता है।
1: और ठीक इसी प्रकार विमलेश जी, जब एक खिलाड़ी रोज घंटों पसीना बहाता है तो वही संघर्ष, वही अभ्यास उसे विजेता बनाता है।
0: एक किसान तपती धूप में खेत जोतता है तभी उसकी फसल लहलाती है। जी हाँ श्रोताओ, खासकर अपने विद्यार्थी मित्रों, प्रकृति का नियम है, बिना संघर्ष के न शक्ति मिलती है न सफलता। इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने कठिनाइयों का सामना किया है वही महान बने हैं।
1: श्रोताओ, अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में जानते हैं। उन्होंने गरीबी देखी, संघर्ष किया लेकिन हार नहीं मानी।
0: जी,
1: हेलन केलर ने जीवन भर दिव्यांगता का सामना किया लेकिन संघर्ष के कारण वो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई।
0: हम सभी नेल्सन मंडेला के बारे में जानते हैं। उन्होंने 27 वर्ष जेल में बिताए लेकिन उनका संघर्ष दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक बन गया।
1: जी हाँ विद्यार्थी मित्रों, यदि इन लोगों के जीवन से संघर्ष निकाल दिया जाए तो शायद दुनिया इन्हें कभी याद भी न रखे।
0: जी,
1: तो प्रिय मित्रों, यदि आज आपके जीवन में कोई कठिनाई है, यदि आपको लगता है कि परिस्थितियां आपके विरुद्ध हैं, यदि लगता है कि बार बार असफलता मिल रही है,
0: तो निराश मत होइए। हो सकता है शायद जीवन आपको उड़ने के लिए तैयार कर रहा हो। याद रखिए, कोयला दबाव सहकर ही हीरा बनता है, सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है और तितली संघर्ष करके ही उड़ना सीखती है।
1: तो मित्रों, ये थी हमारी आज की प्रेरक कहानी। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। श्रोताओं, हमारा आज का प्रश्न है, कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं?
1: आप अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ईमेल पर यानी audio@cie.ca

0: www.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो जरूर करें। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप करें NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
0: और इन्हीं पुस्तकों को यदि आप ऑडियो प्रारूप में यानी ऑडियो बुक के रूप में सुनना चाहते हैं तो जाइए NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल पर, और इसी ऑफिशियल चैनल पर आप हमारी पाठ्य पुस्तकों को सुन सकते हैं। श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम पानी रे पानी, जल चक्र की कहानी।
1: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में पारंपरिक भारतीय नट और नटी के तुकांत नाट्य प्रारूप में जल चक्र की कहानी को कविता और ताल वाद्य की मजेदार संगत से बताया गया है और बच्चों को जल संरक्षण की प्रेरणा दी गई है।
0: पानी रे पानी, जल चक्र पर कविता।

0: सोनी जल्दी उठ जा बेटी, भीड़ हो जाएगी।
1: मम्मी सोने दो ना, ये भी कोई समय है उठने का? अभी तो सुबह के 3:30 ही बजे हैं।
0: अरे बेटी, 2 दिनों से पानी नहीं आया है। हमारे सामुदायिक रेडियो पर मैसेज आया था कि मोहल्ले में आज सुबह 4 बजे टैंकर से पानी दिया जाएगा। चल तैयार हो जा, मैं भी बाल्टी ले लेती हूँ।
1: माँ भैया को भी ले चलते हैं ना।
0: अरे उसे सोने दे, भैया थका हुआ है। इन दिनों स्कूल में फुटबॉल मैच चल रहे हैं ना, कसरत करने भी तो जाता है कितनी।
1: माँ मैं भी तो स्कूल जाती हूँ और आपके साथ साथ घर का सारा काम भी कराती हूँ, क्या भैया ही थकता है बस।
0: ओहो अब चल भी, बहस मत कर।
2: नहीं माँ, इस बार मेरी बारी, अगली बार भैया की बारी, ठीक है?
0: ठीक है बाबा, ठीक है, अब चल भी, बहस मत कर।
1: ठीक है चलो।
0: अरे तू कहाँ से आ गई? हट हट, मेरी बारी है।